अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल के गाए भक्ति गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को

सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

के हरी स्थिति में ही हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा भी होती है। मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधे की बढ़वार के कारण आवश्यक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। इनकी क्षतिपूर्ति हेतु एवं मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। बिना गले सड़े हरे पौधे जैसे दलहनी और अन्य फसलों अथवा उनके भाग को जब मृदा की नेत्रजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। हरी खाद के उपयोग से न सिर्फ नेत्रजन भूमि में उपलब्ध होता है बल्कि मृदा की भौतिक रासायनिक और जैविक दशा में भी सुधार होता है। भूमि प्रदूषण की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। लागत घटने से किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। भूमि में सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति होती है, साथ ही मृदा की उर्वरा शक्ति भी बेहतर हो जाती है। किसान भाइयों, हरी खाद केवल नेत्रजन और कार्बनिक पदार्थों का ही साधन नहीं है बल्कि इससे मिट्टी में कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। हरी खाद के प्रयोग से मृदा भुरभुरी, वायु संचार में अच्छी, जल धारण क्षमता में वृद्धि, अम्लीयता और क्षारीयता में सुधार और मृदा क्षरण में भी कमी होती है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता बढ़ती है। मृदा जनित रोगों में भी कमी आती है। हरी खाद के प्रयोग से खर पतवार का नियंत्रण होता है, क्षारीय और लवणीय भूमियों का सुधार होता है। इसके प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों में कमी करके भी टिकाऊ खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, हरी खाद के लिए उगाई जाने वाली फसलों में सनई मुख्य है। अच्छी जल निकास वाली बलुई अथवा दोमट मृदाओं के लिए यह उत्तम हरी खाद की फसल है। इसकी बुआई वर्षा प्रारंभ होने पर अथवा सिंचाई करके की जा सकती है। यह तेज वृद्धि और मूसल जड़ वाली फसल है जो खर पतवार को दबाने में समर्थ है। बुआई के 40 से 50 दिन बाद इसको खेत में पलट देते हैं। सनई की फसल से 20 से 30 टन हरा पदार्थ और 85 से 125 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मृदा को प्राप्त होता है। ग्रामीण भाइयों, हरी खाद के लिए हम ग्वार की खेती भी करते हैं। यह खरीफ में बोई जाने वाली दलहनी और मूसला जड़ वाली फसल है। कम

विभीषण ने नीति की दुहाई देते हुए रावण को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की। माल्यवान ने भी, जो रावण के नाना और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री थे, विभीषण की नीतिवत्ता की अनुशंसा करते हुए रावण को सद्बुद्धि का उपदेश दिया, किंतु रावण ने उन दोनों को मूर्ख बताकर अपनी राजसभा से निकल जाने पर विवश कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानसगण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं चिंतन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा निर्मला तिवारी से।

युग युगांतर से प्रचलित सेवा परमो धर्म को आत्मसात कर जीवन में उतारने वाले ही महामानव कहलाते हैं। सेवा के कई स्वरूप हैं, या हम ये कह सकते हैं कि व्यापक स्वरूप हैं। माता पिता, जीव जंतु, प्रकृति, राष्ट्र, मानव की सेवा किसी न किसी रूप में की जा सकती है। जिनका जीवन परमार्थ में लग जाता है, सही अर्थों में मानव जीवन की सार्थकता है। सेवा का अर्थ दिखावा नहीं है, यह तो आत्मसंतुष्टि के लिए है। जो सही मायने में परोपकारी होते हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का उपकार सेवा करते रहते हैं। हमारे सामने कई ऐसे महापुरुषों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। सेवा को परम धर्म मानकर तन मन धन सब कुछ जग कल्याण के लिए समर्पित करने या और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने को हम पलटते हैं तो कई महापुरुषों के नाम मिलेंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। सेवा करने वाले कभी यह नहीं सोचते कि कौन सा काम उन्हें करना है, वो तो परिस्थितिवश दूसरों के कल्याण में हमेशा लगे रहते हैं। सेवा करने से मानसिक शांति, संवेदनशीलता, आत्मानुशासन, समर्पण के मानवीय भावों का विकास होता है, आत्मबल बढ़ता है, श्रद्धा विश्वास रूपी शक्तियों में वृद्धि होती है। सेवा के लिए विशेष प्रायोजन की जरूरत नहीं होती है, हम छोटे छोटे कार्यों से भी सेवा धर्म पूर्ण कर सकते हैं। घर पर माता पिता, बड़े बुजुर्ग, आसपास के लोग जिन्हें मदद की आवश्यकता है उनकी मदद करके। सेवा शारीरिक, आर्थिक किसी भी रूप में की जा सकती है। मानव के साथ साथ जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्यावरण संरक्षण करके भी हम सेवा भाव को दर्शा सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो रात दिन प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं। पेड़ लगाना, जंगल बचाना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, और ये सब काम करके उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। साथ ही धरा स्वच्छ स्वस्थ रहे ताकि यहाँ रहने वाले प्राणी भी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, ये भावना उनके अंदर होती है और वो बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे रहते हैं। सेवा भाव से भरा हुआ व्यक्ति किसी भी रूप में सेवा करता ही है, उसे यह फर्क नहीं पड़ता है कि काम छोटा है या बड़ा। और इस दिशा में जब वह कार्य करता है तो फिर बस लगन से काम करता ही रहता है। सेवा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। आज के समय में दिखावे और मान सम्मान पाने के लिए लोग इस दिशा में बढ़ते हैं और थोड़ा करके ज़्यादा प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, जो उचित नहीं है बल्कि यह चिंतनीय है। ऐसा करके सही मायने में हम उन लोगों तक मदद नहीं पहुंचा पाते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। परंतु कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना जताए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं। उनके अंदर नाम मान सम्मान पाने की ललक नहीं होती है बल्कि कुछ अच्छा करने की ललक होती है और जो उन्हें आत्मसंतुष्टि देती है। घर, समाज, राष्ट्र के लिए कर्तव्य की भावना से भरे लोग इस दिशा में कार्य करते ही रहते हैं और यही भावना सेवा परमो धर्म को चरितार्थ करती है। तो आइए हम भी इस दिशा में अपने कर्तव्यों का पालन करें, जो हमसे बन सके, जितना बन सके, परमार्थ परोपकार।

अभी आप सुन रहे थे आराधना हरिओम शरण की आवाज़ में। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आई सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता। खुश रहना भी एक कला है। भेंट वार्ता कारण डॉक्टर प्रणव कुमार वर्णवाल रांची से, और इनसे बातचीत करें संजीव कुमार लाल।

0: कि लाइफस्टाइल में खुश रहना भी एक कला है। हम खुश कैसे रहें और साथ साथ जो हम एक तनाव के वातावरण में जो ज़िंदगी जी रहे हैं उस तनाव को कैसे कम करें, और जो लोगों में एक संवादहीनता और एक अकेलापन का एहसास होने लग गया है, इन सब चीज़ों से कैसे हम बाहर आएं, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज आमंत्रित हैं रांची के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार बरनवाल। डॉक्टर बरनवाल, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब। खुश रहना भी एक कला है, एक आर्ट है, कैसे लोग अपने अंदर डेवलप करें?
1: आज जो खुश है वो सफल है, यानी आज इस चीज़ की लोगों में बड़ा ही कमी है। लोग इस चीज़ के लिए लोग ढूंढते रहते हैं कि कैसे मुझे खुशी मिले, कैसे हम खुश रहें, कैसे अपनी ज़िंदगी को खुश रखें, कैसे हम परिवार को खुश रखें, समाज में बेहतर कर सकें। और अगर हम खुश रहते हैं तो मानसिक प्रॉब्लम से दूर रहते हैं, यानी मानसिक बीमारी कम से कम होती है। और अगर मन की बीमारी कम होती है तो निश्चित तौर पर हमारी शारीरिक स्थिति पर भी एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत सा शारीरिक बीमारी बहुत कम होती है। खुश रहना एक कला है, और जो आदमी इस कला को सीख लिया या अपनी ज़िंदगी में डाल लिया, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल सकता है और बहुत संतुष्ट रह सकता है। इसकी शुरुआत अगर हम करें तो पहली चीज़ें हैं कि इसकी शुरुआत हमारी घर से होती है, यानी जिस फैमिली में सारे लोग खुश हैं, माता पिता खुश हैं, पूरे इन्वायरमेंट खुश है, उनके सगे संबंधी खुश हैं, यानी उनके दोस्तों लोग खुश हैं, तो डेफिनेटली उसका असर उस पर पड़ता है। यानी अगर फैमिली में सारे लोग अगर खुश हैं तो उसका इफेक्ट उस व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है। कोई भी आदमी खुश तभी रहेगा जब वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट से करेगा, चाहे फैमिली हो, सोसाइटी हो, या जहाँ काम कर रहा हो उस प्लेस हो या पढ़ाई का प्लेस हो। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो लोग खुश नहीं हैं, अगर वो अपनी दिनचर्या को देखें तो उनको ये समझ में आएगा कि खुश नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण होगा कि वो अपनी दिनचर्या में कुछ गड़बड़ कर दिया है, कमी कर दिया है, यानी उनकी दिनचर्या ठीक से नहीं चल रही है। जैसे दिनचर्या की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत हमारी होती है खान पान से, मतलब हम क्या खाते हैं, किस तरह से सोते हैं, कितना पानी पीते हैं, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं या नहीं करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जैसे कि खुश रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने दोस्तों को, परिवार वाले को, अपने सगे संबंधियों को समय दें। इसके साथ साथ हमारे जो जिस धर्म के हैं, हम पूजा पाठ पर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हमारा टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार का है, मतलब टाइम मैनेजमेंट हमारा किस तरह का है। यदि ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान दें, साथ ही अगर नशा जैसी चीज़ों को भी अगर हम अपने ज़िंदगी पर बिल्कुल हावी नहीं होने दें, उससे अगर दूर रखें, तो हम बहुत हद तक अपने आप को खुश रह सकते हैं और दूसरे को भी खुश रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
0: खुशी तो आपके अंदर समाहित है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता है। खुश रहने के लिए आपके आसपास का वातावरण भी बहुत जिम्मेदार हो जाता है, जैसा आपने बताया। डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग तनाव के वातावरण से जी रहे हैं
1: जी।
0: हमारे रोजमर्रा की जो जीवन शैली है वो बड़ी अव्यवस्थित सी हो गई है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, और जब हम बहुत कुछ नहीं पाते हैं तो फिर तनाव हो जाता है, और यही तनाव दुख में बदलता है, आप अवसादित हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे मन में लालसा क्यों होती है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस पाने की चाह लोगों में लगी रहती है।
1: एक्चुअली व्यक्ति को, हमारे समाज के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारा सेटिस्फेक्शन का एक लिमिटेशन कहाँ तक है, यानी हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम ये कंपेयर करते हैं कि उसके पास इतनी धन है, इतनी दौलत है, वो इस पोस्ट पर है, उसकी इतनी वैल्यू है, इतनी चीज़ें उसके पास है। जब हम दूसरे से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ कमी है, और उस कमी को पाने के लिए हम, जो हमारे दिमाग नहीं कहता है, लेकिन दिमाग का एक पार्ट नहीं कहता है, लेकिन दूसरे पार्ट उस पर इतनी हावी हो जाती है कि हम नहीं चाहते हुए भी उस चीज़ की ललक हमारे में बढ़ती है, और बढ़ने के कारण से कुछ इस तरह से अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं जिसके कारण से हमें खुशी मिल नहीं पाती है। और भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपनी जितनी भी रूटीन वर्क है, जो भी हमारी क्रिया है, सबको खराब कर लेते हैं। इसके कारण से हम शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार भी पड़ जाते हैं।
0: लोगों में अकेलापन घिरता जा रहा है, लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं
1: जी।
0: और एक लोगों में जो बातचीत था वो कहने के खत्म सा होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गजट से लोगों से संपर्क कर लेते हैं, लेकिन सामने मिलकर उनसे बातें कर अच्छी अच्छी बातें करके ये इस चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये संवादहीनता क्यों हो गई है, लोग अपने आप को अकेला क्यों महसूस करने लग गए हैं?
1: पिछले कुछ वर्षों से जैसे ही कि डिजिटलाइजेशन हमारे कंट्री और विश्व में आया है, तब से जो संवादहीनता की प्रवृत्ति लोगों में, संवादहीनता जैसी चीज़ें हमारे लगभग सारे लोगों में आया है। कुछ लोग ये चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं जो इससे डिजिटल से दूर रहते हैं। अभी के समय में जो डिजिटलाइजेशन हो गई है, इसमें हम ज़्यादातर समय अपने गैजेट्स में, मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, और उससे रिलेटेड इवन हमारे जो कमाई का साधन है वो भी उसी से रिलेटेड चीज़ों में हम ढूंढते रहते हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर बड़ा ही बुरा पड़ता है और हमारे शरीर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं, उसे तरह तरह का बॉडी में चेंजेज आने लगती है। तो ये तो होगा ही, इसलिए होगा क्योंकि आप एक जगह एक रूम में बैठकर आपने आप को एक सेंट्रलाइज कर लिए हैं, आप किसी से बातें नहीं कर पाते हैं। जब किसी से बातें नहीं करेंगे तो जो ब्रेन जो का जो रासायनिक पदार्थ है, जिसे सीरोटोनिन जो कहते हैं, उसका सिक्रीशन तो होगा ही नहीं। जब वो सिक्रीशन ही नहीं होगा सीरोटोनिन का, सीरोटोनिन प्लेजर हार्मोन, खुश देने वाला हार्मोन है, खुश देने वाला केमिकल्स है, तो जो हमारे ब्रेन में वो सिक्रीट ही नहीं करेगा तो हम तो खुश नहीं रह पाएंगे। इवन जितनी भी खुशी की चीज़ें हैं सब में यही हार्मोन सिक्रीट होता है ब्रेन में। आज के ज़माने में जो हम अकेले सारे काम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, और इसके कारण से संवादहीनता बन जाती है, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, और इसका बड़ा ही इफेक्ट, बुरा इफेक्ट हमारे ब्रेन पर, हमारे बॉडी पर पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे फैमिली पर, हमारे सोसाइटी पर, इवन जो हमारे दोस्तों करीब पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है, और इस चीज़ से हम लोग को बचना चाहिए।
0: लोग के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होती जा रही है, कैसे लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं, खुलकर हंसें, ठहाके लगाएं?
1: हम अपने आप को कैसे खुश रख पाएं, मुस्कुराहट ला पाएं, और जब हम खुश रहेंगे, मुस्कुराहट लाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम संतुष्ट रहेंगे, मुझे की बीमारियों से दूर रहेगी, चाहे वो मानसिक बीमारी हो,

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रणव कुमार वर्णवाल को, खुश रहना भी एक कला है। इनसे बातचीत कर रहे थे संजय कुमार लाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

0: ताजा रहता है। तो इस पर विशेष ध्यान दें, प्रचुर मात्रा में पानी लें और ये सारी
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर विधानसभासनयोः भाजपेति दलेन बृहत्मत व्याप्त्या विजयः समधिगतः। तथैव असम राज्यस्य सामरिक दृष्ट्या महत्वपूर्णे नगांव लोकसभासने भाजपा प्रत्याशी देवाशीष शर्मा विजयी जातः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री कशगम टीवीके इति दलेन धारापुरम तथा मधुरांतकम इति द्वे अपि विधानसभासने विजित्य नूतनः कीर्तिमानः स्थापितः। अपरञ्च पुदुचेरी राज्यस्य थट्टनचावडी आसने एआईएनआरसी दलं स्वकीयम् आसनं सुरक्षितं कृतवत्। उपनिर्वाचन परिणामेषु भाजपा एनडीए गठबंधनस्य प्रचण्डं विजयं प्रशंसयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् एषः जनादेशः सुशासन नीतौ देशवासीनां अगाध विश्वासं प्रकटीकरोति। अस्मिन् निर्वाचन चक्रे पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर आसनयोः असमस्य नगांव संसदीय क्षेत्रे च भाजपा दलेन, तमिलनाडु राज्ये तमिल अगवेत्री कशगम दलेन च ऐतिहासिकः विजयः प्राप्तः। लोक सुरक्षा चिन्तनात् पूर्व नियम निषेधात् च दिल्ली आरक्षी संस्थया जंतर मंतर क्षेत्रे प्रस्तावितस्य प्रदर्शनस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। महानगर्यां दिल्ल्यां सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तं कठोरा वर्तते। पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि च पिहितानि सन्ति। राष्ट्रीय राजधान्यां शान्ति व्यवस्थायाः रक्षार्थं दिल्ली आरक्षी प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विहितानां समयानाम् अभावात् जंतर मंतर क्षेत्रे प्रदर्शनस्य अनुमतिः प्रदातुं न शक्यते। क्षेत्रे अस्मिन् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितायाः 63-100 नियमानुसारं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता वर्तते। सुरक्षा कारणात् दिल्ली मेट्रो रेल विभागेन राजीव चौक केन्द्रीय सचिवालयं समेत्य 45 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि। यातायात नियंत्रण विभागेनापि मार्ग परिवर्तनस्य मार्गदर्शिका प्रकाशिता अस्ति। प्रशासनेन नागरिकान् प्रति सुगम गमनाय अग्रिम मार्ग निर्धारणस्य परामर्शः प्रकल्पितः। नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास मंत्रालयस्य राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे भाषणं कुर्वन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किशोरीनां स्वास्थ्याय पोषणाय सर्वांगीण विकासाय च विशेष ध्यानं दातुं समाहूतवान्। जन सहभागिता भावनावर्धनाय प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् आंगनवाड़ी केन्द्राणि केवलं प्रशासनिक संस्थाः न भूत्वा सामाजिक सहयोगस्य जीवंत केन्द्राणि भवेयुः। साक्षात्कारात् परं वार्ताहरान् संबोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोक्तवान् यत् विपक्ष नेतारः विशेष गहन संशोधन एसआईआर इत्यस्य प्रक्रियायाः कथित विसंगतीनां विषये राष्ट्रपति महोदयां ज्ञापितवन्तः। तैरपि निर्वाचन यंत्राणां ईवीएम प्रयोगं समाप्य मतपत्रैः एव निर्वाचन संपादनस्य याचना विहिता। मतदात्री सूच्यां सामूहिक अपत्तीनां रोधनाय निर्वाचन आयोगेन प्रपत्र सप्त आवेदनस्य सीमा निर्धारिता। निर्वाचन आयोगेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः प्रति प्रेषित पत्रे स्पष्टीकृतम् यत् प्रस्तावित आपत्ति अवधौ एकेन मतदात्रा अधिकमतेन 10 प्रपत्राणि एव प्रस्तौतुं शक्यन्ते। तथैव सतत नवीनीकरण काले प्रतिमासं केवलं 5 आवेदनानि स्वीक्रियन्ते। रांची नगरे द्वितीय T20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 6 कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला 1-1 इति समाकृता। तृतीया स्पर्धा श्वः इन्दौर नगरे भविष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
3: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
2: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई ओडिशा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र के कथित लीक होने के संबंध में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मामला पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुआ था। बाद में ये मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधान सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट अपने पास बरकरार रखी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम के नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए कल मतगणना हुई। इन 6 सीटों पर उपचुनाव मंगलवार को हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है।

0: this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है 103 मेगाहर्ट्ज पे। आइए आपको बता दें, प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब से कुछ ही पलों में यानी सात बजकर पंद्रह मिनट पर आप सुनेंगे राग रंग, शास्त्रीय संगीत गायन, राग ठुमरी, बंदिश और डॉक्टर अनिता सेन से। कानून की बातें का समय हुआ 7:45 पर, जो रांची से प्रसारित होंगे। 8 बजे का समय हुआ दिल्ली से समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन, जो हर पलामो का समय होगा 9 बजे। 9:30 पर आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी, भेंट वार्ता का डॉक्टर सुनील कुमार, निदानिक मनोचिकित्सक मैदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार, संयोजक एवं प्रस्तुति होगा प्रशांत गौरव का। 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। 10:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती में गीतों भरी कहानियाँ। 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग। 12 बजे यादों की महफिल। 1 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। 1:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती में सुरीला सफर।

2 बजे आप सुनेंगे दिल्ली या मुंबई से अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली या मुंबई से हिंदी में समाचार, दोपहर की सभा में 2:30 पर आप सुनेंगे मुंबई से वेद भारती में सदाबहार नग में, 2:55 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार, 3 बजे का समय होगा मुंबई से वेद भारती में मन चाहे गीत, 3:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में नाट्य तरंग, 4 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। शाम 4 बजे आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में बॉम्बे टाकीज, 5 बजे सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार, 5:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में छाया गीत मुंबई से, 5:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी, 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, 6:02 पर आप सुनेंगे रांची से प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, 6:30 पर आप सुनेंगे खेती वाणी, 6:55 पर आप सुनेंगे रांची से विज्ञापन, 7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल रांची से स्वरांजलि गीत गश्लू का कार्यक्रम मेहंदी हसन की आवाज़ में आप सुनेंगे 7:15 पर, 7:45 पर आप सुनेंगे विज्ञान जगत, 8 बजे का समय होगा चित्रपट संगीत का, 8:30 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के तहत हुई क्षेत्रीय फिल्म संगीत, 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9 बजे, 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार दिल्ली से, 9:30 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में आज के फनकार, 10 बजे का समय होगा रजनीगंधा का, 10:30 पर आप सुनेंगे एक रंग, 11 बजे का समय होगा हिंदी में समाचार का दिल्ली से, और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से। हम अपने सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। तो ये थी हमारी आज के सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं राग रंग।

अभी आप सुन रहे थे राग रंग शास्त्रीय संगीत, राग ठुमरी बंदिशा, डॉक्टर अनीता सेन से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं रांची के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कानून की बातें अब से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार। गार्जियनशिप से जुड़े कानूनी प्रावधानों, माता पिता के अधिकारों और न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में आम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, शायद इसकी जरूरत भी महसूस लोग नहीं करते। तो इन्हीं पहलुओं को समझने के लिए आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं झालसा के उप सचिव निर्मल कुमार भारती जी। भारती जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये गार्डियनशिप लॉ है क्या, और एक और शब्द आता है गार्डियनशिप के अतिरिक्त कस्टोडियनशिप, इन दोनों में क्या फर्क?
1: देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि गार्जियनशिप क्या है और कस्टोडियनशिप क्या है। प्रत्येक बच्चा जो कि नाबालिग है वो किसी न किसी बड़े के ऊपर डिपेंड होता है, तो जब कोई बच्चे का संरक्षण करता है तो उसे गार्जियन कहा जाता है। गार्जियन माता पिता हो सकते हैं जो कि प्राकृतिक गार्जियन होते हैं। माता पिता के नहीं रहने पर अलग अलग कानूनी प्रावधानों के हिसाब से उनके गार्जियन को निर्धारित किया जाता है। और कस्टोडियनशिप वैसे मामले में आता है जबकि संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला हो और वहाँ पर बच्चे के हित में उसके संपत्ति के देखभाल को कौन करेगा और उसका नियमन कौन करेगा, वो कस्टोडियन माना जाता है।
0: यानी कि अगर कोई बच्चा है और माइनर है तो वैसी स्थिति में उसके संपत्ति की देखभाल करने के लिए एक कस्टोडियन का तय किया जाता है।
1: और कस्टोडियन हमेशा न्यायालय से तय किया जाता है।
0: जी, तो हमारा दूसरा प्रश्न यही होगा कि भारत में ये गार्डियनशिप जो है, अभिभावकत्व, इससे संबंधित जो मुख्य मुख्य नियम है उनके बारे में आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं, और ये भी बताएं क्या ये नियम धर्मों के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है कि गार्जियनशिप से संबंधित मुख्य कानून क्या है, तो कई तरह के कानून है, जैसे कि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इसके अलावा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन, अलग अलग पर्सनल लॉ में गार्जियनशिप से संबंधित अलग अलग कानून है। जैसा कि आपका प्रश्न था कि अलग अलग धर्म में क्या क्या कानून है, इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में भी गार्जियनशिप से संबंधित कुछ बातें लिखी गई है, और एडॉप्शन से संबंधित भी विधिक प्रावधान है। क्योंकि जब कोई बच्चा बिल्कुल माता पिता विहीन होता है, उसका कोई गार्जियन नहीं होता है, वह कोई अनाथ आश्रम में पल रहा होता है, तो वहां से अगर उसे गोद लिया जाए तो उसका गार्जियनशिप वहां से तय होना शुरू होता है। तो लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि बच्चे का गार्जियन जो है वो इन सभी कानूनों को अगर कॉमन ढंग से अध्ययन लिया जाए तो बच्चे का गार्जियन सबसे पहला उसका होता है पेरेंट्स, यानी कि पिता और माता। पिता और माता शब्द का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि किसी भी बच्चे का नेचुरल गार्जियन पहले उसका पिता होता है, फिर माँ होती है। अगर दोनों हैं तो पेरेंट्स ही उसके गार्जियन होते हैं, और अगर पिता नहीं है तो माँ होंगी गार्जियन, माँ नहीं है तो पिता तो गार्जियन है ही। इसके बाद कानूनी प्रावधानों के हिसाब से, जैसे गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में एक पूरा का पूरा श्रृंखला दिया हुआ है, और अलग अलग माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपने निर्णयों में भी यह स्पष्ट किया है कि गार्जियन कौन होंगे, उनका क्रम कैसे निर्धारित होगा। जैसे पिता के बाद माँ गार्जियन होंगी, माँ और पिता दोनों के नहीं रहने पर कौन गार्जियन होंगे, क्या चाचा या नाना या मामा ये गार्जियन हो सकते हैं कि नहीं, और किन्हीं परिस्थितियों में अगर माता पिता हैं भी या माता और पिता में से एक हैं भी तो किन परिस्थितियों में उसका गार्जियन कोई और हो सकता है।
0: बिल्कुल, और यही मेरा अगला प्रश्न भी है कि किन किन परिस्थितियों में गार्जियनशिप तय होता है। एक तो जो आप नेचुरल आपने बताया कि अगर माता पिता दोनों नहीं है तो वैसी स्थिति में फिर क्या हो?
1: देखिए, अगर माता पिता दोनों नहीं है और यह मामला न्यायालय के समक्ष जाता है कि बच्चे का गार्जियन कौन होगा, तो न्यायालय यहां पर सबसे पहले बच्चे के सर्वोत्तम हित के आधार पर निर्णय करती है कि उसका गार्जियन कौन होगा। जैसे कि अगर सपोज करें कि बच्चे के माता पिता नहीं है, प्रॉपर्टी है और उसके प्रॉपर्टी पर कुछ लोगों का नजर भी है, तो न्यायालय यहाँ पर जो है रिसीवर नियुक्त कर सकती है या उसका गार्जियन किसी को निर्धारित कर सकती है। जैसे माता पिता के नहीं रहने पर अगर बच्चे के दादा दादी हैं तो वो गार्जियन हो सकते हैं, चाचा हैं तो वो हो सकते हैं, या बड़े भाई या बड़ी बहन भी कई बार गार्जियन हो जाते हैं। लेकिन आपके प्रश्न में एक और छोटा छिपा हुआ प्रश्न हो सकता था कि किन परिस्थितियों में माता पिता

0: के रहने के बावजूद भी किसी को गार्जियन नियुक्त किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी प्रश्न है कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि माता पिता उस लायक ना हो, किसी कारण से अक्षम हो, तो वैसी स्थिति में फिर क्या?
0: जैसे कि देखिए कि माता पिता दोनों हैं, आर्थिक दृष्टि से दोनों सक्षम हैं, लेकिन एक हाइपोथेसिस को, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मान लिया जाए कि माता पिता को न्यायालय से सजा हो गया है और वो जेल में है, वैसे में बच्चे को तो जेल में रखा नहीं जा सकता है, तो इन परिस्थितियों में गार्जियन कौन होगा? तो यहाँ पर फैमिली लॉ के हिसाब से गार्जियन का निर्धारण किया जा सकता है कि माता पिता के बाद उसके चाचा या बड़े भाई बहन बच्चे के गार्जियन हो सकते हैं, या फिर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के हिसाब से उसका गार्जियन निर्धारित किया जा सकता है।
1: इसमें एक और प्रश्न जब मैं जोड़ रहा हूँ कि क्या कोई योग्यता होनी चाहिए उनके लिए, जैसे गार्जियनशिप के लिए कोई सामान्य तौर पर कानूनी तौर पर क्या योग्यता होनी चाहिए एक गार्जियनशिप के लिए? और इसके अलावा एक और इसमें प्रश्न है कि रिश्तेदार के अतिरिक्त कोई और भी हो सकता है क्या अभिभावक?
0: बिल्कुल, देखिए गार्जियन होने के लिए निर्धारित योग्यता वैसे तो कहीं किसी कानून में नहीं दिया गया है
1: जी,
0: लेकिन माननीय न्यायालयों ने इस बात को पर बार बार निर्धारित किया है कि जब भी बच्चे के गार्जियन को निर्धारित किया जाएगा तो बच्चे के सर्वोत्तम हित को निर्धारित किया जाएगा,
1: मतलब उसको प्रायोरिटी सामने रखकर तय किया जाता है।
0: जैसे कि सपोज करें कि बच्चे का गार्जियनशिप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे दिया जाएगा जो कि अपराधी हो, या जिसके संगत में बच्चे का भविष्य खराब हो सकता हो, जो कि शराबी हो, या सोसाइटी में उसे अच्छा नहीं माना जा सकता है, तो ऐसे में प्रायोरिटी रहने के बावजूद भी न्यायालय चाहे तो सेकंड प्रायोरिटी पर विचार कर सकती है। अब आपका दूसरा प्रश्न कि जिसका कोई नहीं है उसका कौन गार्जियन? उसका जिसका कोई नहीं है उसके लिए, जैसा कि मैंने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में गार्जियनशिप से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं, तो जिसका कि कोई नहीं है वहां पर स्टेट गार्जियन होता है, माने राज्य सरकार गार्जियन है।
1: अच्छा।
0: और सरकार का यह दायित्व तो है कि प्रत्येक बच्चे के सर्वोत्तम हित को निर्धारित करते हुए गार्जियनशिप तय करे। अगर यहाँ पर संपत्ति का मामला आता है तो न्यायालय चाहे तो उस बच्चे के प्रॉपर्टी को कोई रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए, जिसको कि सामान्य भाषा में गार्जियन नहीं बल्कि कस्टोडियन कहते हैं। वहां पर जो है वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो है उसके रिसीवर के पास रहेगा, कस्टोडियन के रूप में रहेगा, और न्यायालय के संरक्षण में आकर उस प्रॉपर्टी का समय समय पर विनियमन किया जाएगा।
1: हम बात कर रहे हैं अब बच्चे के बारे में कि अगर बच्चे की शिक्षा है, उसकी सुरक्षा है, उसका स्वास्थ्य है, संपत्ति है, तो इन सब के बारे में अगर हम इन सबको नजर में रखें तो एक अभिभावक की क्या भूमिका होती होगी?
0: जैसा कि मैंने कहा कि एक अभिभावक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि बच्चे के नेचुरल विकास को वो बाधित ना होने दे। यानी कि एक बच्चा है, बच्चे को इस ढंग से परवरिश किया जाए कि वह बच्चा आगे चलकर अच्छा नागरिक बने, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है गार्जियन का। तो जब गार्जियनशिप निर्धारित किया जाता है तो बच्चे के हित के हिसाब से ही निर्धारित किया जाता है। अगर प्रॉपर्टी पर्याप्त मात्रे में है तो रिसीवर को यह दायित्व कोर्ट दे सकती है कि इस बच्चे के खर्च को चलाने के लिए एक खास रकम जो है महीने के अंतराल पर या कोई खास अंतराल पर उस व्यक्ति को दिया जाए जो उस बच्चे के पढ़ाई लिखाई और दूसरे चीजों को देख रहा है।
1: जी, यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, चूंकि आपने बताया कि अगर बच्चे के पास संपत्ति है उसके माँ पिता का या
0: कहीं से भी
1: इनहेरिटेड है, तो उस स्थिति में क्या अभिभावक उसकी संपत्ति को बेच सकता है या उसको कोई और इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में कितना अधिकार है गार्जियन को?
0: गार्जियन को किसी भी बच्चे के संपत्ति को बेचने का कोई अधिकार नहीं है, तब तक जब तक कि उस संपत्ति को बेचना उस बच्चे के हित में जरूरी ना हो। और इसके लिए अगर न्यायालय किसी को गार्जियन या रिसीवर नियुक्त किया है तो उस न्यायालय के परमिशन की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज करें कि वह बच्चा ही किसी असाध्य रोग से बाधित हो गया और उसको इलाज कराने के लिए एक बड़े रकम की जरूरत है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी तो बेचना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी न्यायालय के परमिशन का जरूरत पड़ेगा।
1: और अगर कोई गार्डियन, अगर कोई अभिभावक जो नियुक्त होता है वो अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहा है बल्कि बच्चे के हित के विरुद्ध अगर कार्य कर रहा है, तो वैसे में क्या प्रावधान है?
0: देखिए, वैसे में प्रावधान यह है कि न्यायालय जब चाहे गार्जियन अभिभावक को चेंज कर सकता है, लेकिन सवाल है कि इस मामले को न्यायालय के समक्ष लेकर कौन जाएगा, क्योंकि जिस बच्चे का शोषण हो रहा है या जिसके जिसका पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जा रहा है वह तो नाबालिग है, वह तो नासमझ है। तो यहाँ पर जो कानूनी प्रावधान है कि बच्चे के हित को

0: ध्यान में रखते हुए कोई भी थर्ड पर्सन आदमी वो न्यायालय को सूचना दे सकता है और इसका मांग कर सकता है कि इसके गार्जियन को चेंज किया जा सके। यानी कि बच्चे के हित में समाज के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह जो है गार्जियन चेंज करने का मांग कर सकता है।
1: अच्छा, कोई व्यक्ति अगर चाहे अपने लाइफ टाइम में ही कि अपने वसीयत लिखकर अगर बच्चे के लिए कुछ करें, कोई अभिभावक नियुक्त कर दें बाद के लिए, तो क्या इस तरह का कोई प्रावधान है?
0: देखिए, सबसे पहली बात है कि वसीयत जो होता है वसीयत प्रॉपर्टी के लिए होता है।
1: ओके।
0: उसमें बच्चे के गार्जियनशिप को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की यह मनसा रही है कि कोई कौन सा व्यक्ति उसके बाद उसके बच्चे का गार्जियन होगा, तो वैसे में न्यायालय इस बात पर विचार कर सकती है कि हम इस व्यक्ति को गार्जियन बना सकते हैं, क्योंकि ये इसके नेचुरल गार्जियन का ये दिमाग में था कि इस मेरे बाद ये गार्जियन हो। तो यहाँ न्यायालय उस पर विचार कर सकती है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि वही व्यक्ति गार्जियन बनेगा जिसे कि उसके माता पिता ने वसीयत में लिख के गया है।
1: एक और प्रश्न है कि यदि माता पिता में से कोई एक बच्चे की अभिरक्षा मिलने के बाद दूसरे अभिभावक को बच्चे से मिलने नहीं देता, तो प्रभावित पक्ष के पास क्या कानूनी प्रावधान उपलब्ध है?
0: कई बार क्या होता है कि समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आ गई कि पति पत्नी के बीच आपस में बना नहीं,
1: बिल्कुल,
0: और बच्चा जो है पति या पत्नी में से किसी एक के पास रह गया। तो जिस समय की कोर्ट गार्जियनशिप तय करता है माता पिता के दोनों के रहते हुए, तो आम तौर पर कोर्ट इस बात का व्यवस्था अपने आदेश में ही कर देता है कि उस बच्चे से मिलने जुलने का राइट है कि नहीं दूसरे को।
1: अच्छा, वो उस समय तय हो जाता
0: है। लेकिन अगर कोर्ट ने तय नहीं किया है तो वैसे में जो दूसरा पक्ष है वह न्यायालय से इस बात का मांग कर सकता है कि मुझे विजिटिंग राइट कहते हैं कि मुझे बच्चे से मिलने जुलने दिया जाए। यहाँ पर कोर्ट इस बात का ध्यान रखती है कि विजिटिंग राइट उसी व्यक्ति को दिया जाए के बारे में न्यायालय का यह परसेप्शन है, सामने ऐसा तथ्य है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध बहुत सारे क्रिमिनल केस पेंडिंग है, शराबी है, जुआरी है, ड्रग्स लेता है, तो ऐसे लोगों से बच्चे के मिलने पर बच्चे के मेंटल हेल्थ पर असर पड़ सकता है, तो ऐसे में कोर्ट इसको बाधित कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को ने अपने आप को सुधार लिया है, कानून की नज़र में बरी हो गया है, तो फिर वह कोर्ट से यह मांग कर सकता है कि अब मुझे विजिटिंग राइट दिया जा सके।
1: यानी कुल मिलाकर हम इस तरह इसे समझ सकते हैं कि बच्चे के हित में जो भी चीजें होंगी सामान्य तौर पर कोर्ट उसी को नजर में रख
0: प्रिवेल करेगा,
1: प्रिवेल करता है।
0: और एक बात मैं यहाँ यह क्लियर कर दूं कि बच्चे का गार्जियनशिप किसे दिया जाता है, विजिटिंग राइट किसे दिया जाता है, इससे बच्चे के अधिकारों पर असर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए कि अगर पिता को विजिटिंग राइट नहीं भी दिया गया है, बच्चे का पूरा कस्टडी उसकी माँ के पास है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस बच्चे का राइट पिता के प्रॉपर्टी पर नहीं रह गया।
1: ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण
0: विषय है। हाँ, क्योंकि बच्चे का जो कानूनी अधिकार है ये कभी भी चोक नहीं किया जा सकेगा।
1: जी, और एक अंतिम प्रश्न, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे श्रोताओं को, कि एक कई बार होता है बच्चे को गोद लिया जाता है, तो इसे मतलब अगर अंग्रेजी में एडॉप्शन साइड कहते हैं, तो एडॉप्शन और गार्डियनशिप इसमें क्या कोई फर्क है कि दोनों मिलाजुलाकर एक ही बात?
0: दोनों मिलाजुलाकर एक ही बात है। बच्चे का गोद लिया जाना वैसे ही है जैसे कि एक पौधे को उखाड़कर किसी दूसरे जमीन पर रोप देना। तो जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो कहने का मतलब है कि बच्चा एक फैमिली से निकलकर दूसरे फैमिली में चला जाता है। ऐसे में उस बच्चे को जिस परिवार में कि वह पैदा हुआ था वहां के प्रॉपर्टी पर उसका राइट खत्म होता है, लेकिन जब नए जगह पर गया तो जिस जो नए माता पिता उनके बने गोद लेने के बाद, उसके प्रॉपर्टी पर उसका पूरा अधिकार वैसे ही हो जाएगा जैसे कि उसी फैमिली में वह बच्चा पैदा हुआ हो। साथ में उन माता पिता को उस बच्चे पर एज ए गार्जियन वे सारे अधिकार मिलेंगे जो कि उनको तब मिलते जबकि वह बच्चा उसका नेचुरल बॉर्न होता, यानी कि उसी के पैदा हुआ होता।
1: जी, तो श्रोताओं, आपने देखा कि गार्डियनशिप लॉ के बारे में, अभिभावक कानून के बारे में हमने आपको निर्मल कुमार भारती जी के माध्यम से बातचीत करके आपको जानकारी दी, और मैं समझता हूँ कि आप जरूर इससे गार्डियनशिप के संबंध में आप जागरूक होंगे और बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी। सर, आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: कानून की बात में सुन रहे थे भेंटवार्ता, नो गार्जियनशिप लॉ, वो कैन बी गार्जियन अंडर इंडियन लॉ। भेंटवार्ता का अर्थ है श्री निर्मल कुमार भारती, भेंटकर्ता प्रभु शरण।

0: प्रस्तुति प्रसारण के ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
4: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल

0: डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
1: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन,
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।

0: मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
1: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
2: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
1: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जनसेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
3: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना जान का जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
1: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
5: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
6: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
5: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
6: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
5: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi

0: The United States has temporarily lifted sanctions on the sale and import of Russian origin diesel fuel until the 7th of April 2027, following a conversation between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. Speaking to media persons outside the White House, President Trump said Russia will immediately supply more than 3 lakh tons of diesel, followed by 5 lakh tons in November, 1 million tons thereafter, and an additional 3 million tons depending on the condition of Russian refineries.
1: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So,
0: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said India-Ethiopia bilateral cooperation has gained significant momentum in recent years, reflecting shared developmental aspirations and South-South solidarity. Addressing a gathering at the Adwa Memorial Museum in Addis Ababa, Dr. Jayashankar also called on Indian African countries to work together to amplify the concerns of the Global South. He said the impact of global crisis on developing nations needed to be articulated forcefully and could not be ignored by the international community. Referring to what he described as the 4F crisis of fuel, food, fertilizers and finance, the External Affairs Minister said conflicts in different parts of the world along with the COVID-19 pandemic in previous years had set back the development prospects of the Global South. India's Putul Sonowal has created history by shoring the country of its first ever medal at the World Bowls Champion of Champions in Barham, Australia. The 43-year-old from Assam achieved the milestone by reaching the semi-final of the men's singles event. In men's cricket, West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20 international in Ranchi last night, levelling the 5-match series 1-1. Chasing a target of 250 runs, West Indies overall the score posting 252 runs for the loss of 4 wickets in 18.3 overs, winning the match with 9 balls to spare. Captain Shai Hope led from the front with a magnificent 102 of 45 balls, while Sherfane Rutherford's 84 of 87 set the chase alight. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
2: Thank you, Pramod. By polls boost, BJP wins both Bengal seats, Assam Lok Sabha seat, headlines the Statesman via the Tribune, headlines ruling parties win by poll battles across four states, Union Territory. The Asian Age headlines Delhi turns into fortress to halt CJP protest today. The papers add that 40,000 plus security personnel deployed, 45 metro stations shut and mobile internet suspended in areas near protest site and diversions in most routes. Another prominent story covered in all newspapers is the Indian origin jurist Navanatham Navi Pillai winning the Nobel Peace Prize. The Hindu says international jurist Navi Pillai wins Nobel Peace Prize. The paper adds that she was born in Durban in Tamil origin parents, grew up under apartheid and studied law at Harvard. And finally, a story in the Indian Express says seized from Thane 2 years ago, infant orangutan sets to return to Indonesia. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar. Today, tightened security across national capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at the World Bowls Champion of Champions after reaching the semi-finals in Australia. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार बस थोड़ी ही देर में।
4: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ
5: बहु पेट से है ना,
4: तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
5: ये तो खुशी की बात है,
4: घर में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे इसके लिए समय समय पर बहु की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
5: मैंने बहु का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जाँच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
6: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जाँच कराएं।
4: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य लें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। We'll be right back. माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं?
8: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
9: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
8: लो अब जनरेटर को क्या हुआ?
9: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
8: अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या? वो भी तो 2 जान संभाल रही है। बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना है।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीक को अपनाने पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का झारखंड दौरा आज। एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह और बीबीएमटी अस्पताल में आयोजित सैन्य संपर्क मेले में होंगे शामिल। झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर आज लगेगा विशेष मेगा हेल्प डेस्क। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार और विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। महालया आज देवी दुर्गा का किया जा रहा आवाहन। रांची समेत राज्यभर में कई जगहों पर होंगे कार्यक्रम। कल से शारदीय नवरात्र की होगी शुरुआत। और रांची में खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से की बराबरी। श्रृंखला का तीसरा मैच कल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही।
12: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
11: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड के देवघर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति देवघर के बीबीएमटी अस्पताल में आयोजित सैन्य संपर्क मेले का भी दौरा करेंगे। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 1 दिवसीय विशेष मेगा हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है। शिविर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मेगा हेल्प डेस्क में एसआईआर से संबंधित लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा।
13: 10 अक्टूबर सभी पोलिंग स्टेशन मेगा हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है, ताकि किसी भी वोटर का ग्रीवेंसेस है उसका अभ्यास कराने, कुछ स्टेक होल्डर्स है इस तरह से वोटर के पास ग्रीवेंसेस करके बोला जा रहा है, तो उस कराने के लिए हम लोग को टाइम आयोजन कर रहा है। येलो बी रेटो का भी बैठक हो, पोलिंग एरिया में वोटर का क्या समस्या है उसका भी सुनाया जाएगा।
11: सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय बालिकाओं की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने पलामू जिले के पंडवा प्रखंड में धान खरीद के बकाया भुगतान मामले में 104 किसानों को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि इन 104 किसानों पर धान खरीद में अनियमितता का कोई आरोप नहीं है। अदालत ने कहा कि किसानों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 2 महीने के अंदर उच्च न्यायालय में राशि जमा कराई जाए। रांची के सदर अस्पताल में आज दोपहर 3:30 बजे सांसद संजय सेठ नमो जीवन रक्षक बाइक एम्बुलेंस का लोकार्पण करेंगे। डीआरडीओ द्वारा विकसित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह एम्बुलेंस सुदूरवर्ती गांवों और शहर की सकरी गलियों में आपातकालीन चिकित्सा सहायता पहुंचाने में मददगार

0: साबित होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज महालया है, इसके साथ आज देवी दुर्गा का आवाहन किया जा रहा है। महालया के अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्यभर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। रांची के दुर्गाबाड़ी में आज शाम महिषासुर मर्दिनी नाटक का मंचन किया जाएगा। वहीं कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। राजधानी रांची समेत राज्यभर में दुर्गा पूजा की तैयारी तेजी से चल रही है। जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जमशेदपुर में पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया।
1: सुरक्षा को भी इसमें बहुत प्राथमिकता देना चाहिए, सुरक्षित माहौल में इसको करने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पूजा पंडाल तो पूरे जिले में 325 के करीब यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अभी तो सब में काम चल रहा है, तब लोगों को बता रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर का तो वो प्रॉपर केयर करें कि जो कनेक्शन वगैरह हो वो कहीं पे लूज नहीं हो।
0: हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश प्रथम तरुण कुमार की अदालत ने इचाक में हुए दोहरे हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए सभी 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र में सेल सिटी में झारखंड के पूर्व सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी के बंद घर में चोरी की घटना हुई है। चोर करीब 1.5 लाख रुपए नकद, 20 से 25 लाख रुपए के जेवरात, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। आज राज्यभर में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। क्रिकेट। रांची में खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाकर मैच जीत लिया। एक भारतीय फैन ने कहा, यह रोमांचक और हाई स्कोरिंग मैच था।
2: रांची होम ग्राउंड है ईशान किशन का। सभी रांची के क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि रांची में जीत मिलेगी इंडिया को, तो उस लिहाज से थोड़ा सा दुख तो हो रहा है, लेकिन मैच काफी अच्छा था, रोमांचक मैच था, हाई स्कोरिंग मैच था, दोनों तरफ से बढ़िया स्कोरिंग हुई, छक्के चौकों की बरसात हुई, मजा आया।
0: इस श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने T20 क्रिकेट और 4 राज्यों के उपचुनाव परिणाम की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत, असम की लोकसभा सीट पर भी कब्जा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर में भाजपा की बड़ी जीत। दैनिक भास्कर ने T20 मैच की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, जिसका शीर्षक है, वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराया। और दैनिक जागरण ने झारखंड उच्च न्यायालय में जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा मामले की सुनवाई की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। जेपीएससी के हवाले से लिखा है, शुचिता तथा संस्था की पवित्रता के लिए रद्द की गई परीक्षाएं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीक अपनाने पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का झारखंड दौरा आज, एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह और बीबीएमटी अस्पताल में आयोजित सैन्य संपर्क मेले में होंगे शामिल। झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर आज लगेगा विशेष मेगा हेल्प डेस्क। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार और विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। महालया आज, देवी दुर्गा का किया जा रहा आवाहन। रांची समेत राज्यभर में कई जगहों पर होंगे कार्यक्रम। कल से शारदीय नवरात्र की होगी शुरुआत। और रांची में

0: गए दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से की बराबरी। श्रृंखला का तीसरा मैच कल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे रंथू बेटा, अपनी गाड़ी हमेशा तैयार रखना। अब तुम्हारी भाभी के बच्चा होने का समय निकट आ गया है। इस बार उसे स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाऊंगी।
2: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
1: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
2: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
1: गर्भ के दौरान बराबर जाँच कराते रहें।
2: हमेशा सही और ANM से संपर्क में रहें।
1: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार BPL परिवार को
2: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
5: नक्शा तो ठीक है, पर इसमें शौचालय कहाँ है?
4: अरे उसकी क्या जरूरत, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
5: क्या कहा? खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म तेरी कसम का ये गाना। अमित कुमार गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत आर डी बर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का ये गाना अनुराधा पौडवाला उदित नारायण की आवाज़ में। श्रोताओं आप सुन रहे हैं गीत गुंजन। आई सुनते हैं फिल्म साजन का ये गाना एसपी बाला सुप्रियम की आवाज़ में।

और इसी गीत के साथ गीत गुंजन से हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, पुराने फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।

जोहार प्रभु सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार से। हमारे आज के सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है उससे कई ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। जी हाँ, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हमें उसे लड़ना होगा, तभी जाकर हम आगे का कार्य कर सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हम हमारा आज का दैनिक कार्यक्रम जो हर पलामू, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं आज का इतिहास। दस अक्टूबर का इतिहास देश और दुनिया की कई प्रमुख घटनाओं से जुड़ा है। 1846 को ब्रिटिश खगोलविद विलियम लॉरेंसेन ने नेचुरल ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह ट्रिटन की खोज की थी। 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 10 अक्टूबर 1964 को टोक्यो में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की पहली बार दूरदर्शन और उपग्रह के जरिए सीधा प्रसारण किया गया था। 10 अक्टूबर 1970 को फिजी देश को ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्रता मिली थी। 10 अक्टूबर 1978 को रोहिणी खालिदकर राष्ट्रीय चेस शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। 10 अक्टूबर 1992 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जो कि आज के दिन है। 10 अक्टूबर 1910 को नीदरलैंड एंटेलेज देश का औपचारिक रूप से विघटन हुआ था। 10 अक्टूबर 1906 को आर.के. नारायण भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक मालगुड़ी डेज के रचयिता का जन्म हुआ था। 10 सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रेखा का जन्म 10 अक्टूबर को ही हुआ था। जगदीश सिंह भारत के प्रसिद्ध गजल गायक जगदीश सिंह का निधन 10 अक्टूबर 2011 को हुआ था। तो ये थी हमारी आज की इतिहास की बातें। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करते हैं अपनी सेहत के प्रति किस प्रकार से सचेत रहेंगे। हम अगर सेहत के प्रति सचेत हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और हमारा शरीर, दिमाग, शरीर के हर अंग स्वस्थ हैं। मगर ये सब स्वस्थ तभी होंगे जब हम अपने खान पान आहार में विटामिन सी, ए, बी और बीटा कैरोटीन लेते हैं, और ये सब मिलता है हमको गाजर में। जी हाँ, गाजर खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कहते हैं कि आँखों की जो सुंदरता है, आँखों को सजाइए काजल से नहीं बल्कि गाजर से। जी हाँ, आँखों की रोशनी को अगर हमें बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाजर का खाना। आँखों के लिए काफ़ी लाभकारी है, इससे मौजूद बीटा कैरोटीन और विटामिन ए हम आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है। रात के अंधेरे में कम दिखाई देती है जिसे रतौंधी कहते हैं, इसकी समस्या से हमें बचाती है। पाचन तंत्र मजबूत बनाए रखते हैं। गाजर में भरपूर फाइबर होते हैं जिससे कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे पेट की समस्याओं को दूर करने में ये काफ़ी दुरुस्त करते हैं और अच्छे रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं और बार बार होने वाले संक्रमण से हमें बचाते हैं। ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखना। जी हाँ, गाजर में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होती है जो कि एक रक्त वाहिकाओं को आराम देकर उच्च ताप को नियंत्रित करने में सहायक होती है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी अगर हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो इनके सेवन से, लगातार सेवन से हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल में आती है। उसके साथ हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा, इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल को के स्तर को कम करने में मदद करती है और हमें हृदय रोग से बचाती है। त्वचा की चमक। विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं जिसमें चेहरे पर प्राकृतिक निखार आते हैं। अगर हम बातें करें अपने शरीर के मोटापे का तो इसका भी समस्या का समाधान हमारे गाजर करते हैं क्योंकि गाजर में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है जिससे खाने से लंबे समय तक आपका पेट भरा रहता है और आपको बार बार भूख नहीं लगती है। तो हम कह सकते हैं कि इससे हमारे वजन जो है शरीर के कम होते हैं। हड्डियाँ भी हमारी मजबूत बनाते हैं। इसमें विटामिन के और कैल्शियम होते हैं जो विटामिन को मजबूती प्रदान करती है और हमें स्वस्थ रखती है। तो आइए चलते हैं बाज़ार, और आज इस मौसम में बाज़ार में ढेर सारी सब्जियाँ, ढेर सारे फल फूल, और उसी फल फूल में हमारे गाजर ही मौजूद है। आप इसका सेवन हलवा के रूप में, सलाद के रूप में, जूस के रूप में, और अगर मन करे तो नमक के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। अब खाइए, स्वस्थ रहिए और आँख को भी सुंदर बनाइए। हम बातें और भी करेंगे मगर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

और इसी के साथ जो हर पल उस समय आगे दीजिए, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर्था पिंकी कुमारिका और संयोजक थे श्री प्रशांत गौरव। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं भेंट वार्ता विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी। भेंट वार्ता कार हैं डॉक्टर सुनील कुमार, नैदान्तिक मनोचिकित्सक मैदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। संयोजक एवं प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

0: कि लाइफस्टाइल में खुश रहना भी एक कला है। हम खुश कैसे रहें और साथ साथ जो हमें एक तनाव के वातावरण में।
1: संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी हाँ श्रोता मित्रों, प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। समाज में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियां जैसे तनाव, चिंता और अवसाद के प्रति एक समझ विकसित करना है, ये उद्देश्य है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का। आज इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हमारे समाज में क्या चल रहा है, कैसे उसका निदान करें, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के मेदनी राय मेडिकल कॉलेज के साइकेट्रिक विभाग के नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार
2: जी। नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे श्रोता भाइयों को ये बताया जाए कि ये जो हम प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो मनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है?
2: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित विचार है, धारणाएं हैं या मानसिक बीमारी से संबंधित जो भी परेशानियां, उनके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना मुख्य उद्देश्य है
1: जी।
2: लोगों को जागरूक करना है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1992 में मानसिक स्वास्थ्य संगठन संघ के द्वारा मनाया जाना शुरू किया गया। और इसके जो मुख्य जो शुरुआतकर्ता थे वो रिचर्ड हंटर, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने शुरुआत किया 1992 में।
1: अच्छा।
2: उसके बाद प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को इसकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जिसका अलग अलग विषय रहता है, अलग अलग थीम रहता है, और उस थीम के अनुसार लोगों को जानकारियां दी जाती हैं, अवेयरनेस फैलाया जाता है
1: जी। इस वर्ष का थीम क्या होगा?
2: इस वर्ष का थीम है कि लोगों से बातचीत करें और अब हिचक और ये को कम करें, बताएं लोगों को।
1: अच्छा, विशेष रूप से मानसिक बीमारी के बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहें?
2: मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण की एक स्थिति होती है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास करने, जीवन के सामान्य तनाव से निपटने, अच्छी तरह से कम काम करने और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम बनाती है
1: जी।
2: इसका सामूहिक रूप से अगर कहा जाए कि जिस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग बात करते हैं वह हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य का होना भी बहुत जरूरी है,
1: क्योंकि संतुलन यहीं से चलता है।
2: बिल्कुल। मानसिक, हम लोग शुरू से ही शारीरिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और यह शुरू से एक नेग्लेक्टेड एरिया रहा है, और इसके कारण से यह जितनी रफ्तार में बीमारियां बढ़ रही उतनी रफ्तार में इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। तो आज ज़रूरत है मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जोड़ के मानसिक स्वास्थ्य को भी देखना जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो मेरा मन स्वस्थ होता है, और मन स्वस्थ होता है तो मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, यानी एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, दो पहलू हैं। इसलिए हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का होना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इस पर भी हम लोग को जागरूकता फैलाना है, प्रत्येक वर्ष फैलाते जाते हैं और हर हमेशा यह कार्य होते रहता है।
1: आधुनिक समाज में मानसिक बीमारियां एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई चुनौती बन गई है, सर क्या कहेंगे?
2: अभी की स्थिति में देखा जाए तो हमारी जैसी जितनी जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है और उसी के अनुसार मानसिक रोग की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है, मानसिक बीमारी भी बढ़ती जा रही है। अभी 11 से लगभग 14% व्यक्ति हमारे किसी न किसी रूप से मानसिक बीमारी से ग्रसित है, चाहे वह अवसाद डिप्रेशन हो या फिर चिंता की हुई हो या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर और भी कोई साइकोसिस प्रॉब्लम हो, यानी मेंटल, मेजर मेंटल डिसऑर्डर या कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक बीमारी से सफ़र कर रहा है। तो आज जैसी हमारी वर्तमान परिस्थिति जीवन शैली बदल रही है, काम का बढ़ता दबाव, आर्थिक चुनौतियां और सामाजिक जो मीडिया है उसका प्रभाव, व्यक्तिगत तनाव और जीवन तनाव जैसी कई वजहों से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ रही है। और आने वाले दिन जैसी स्थिति बनते जा रही है, आने वाले दिन मानसिक बीमारियां, मानसिक रोगियों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो इस पे हम लोग को सचेत रहना है और अपनी मानसिक स्वास्थ्य पे ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत है।
1: आपने सही कहा, आज की भाग दौड़ की जिंदगी में सामाजिक दबाव, बदलती जीवन शैली के कारण बड़ी संख्या में हमारे प्रभावित हो रहे हैं, विशेषकर युवा वर्ग इसकी चपेट में।
2: बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा युवा वर्ग आज अपने आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जैसे हम लोग कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन और सब्सटेंस, ये सब भी आता है। आजकल बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा कोई नशा का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, तो उनकी भी व्यवहार और उनकी भी जीवन शैली में बहुत सारा परिवर्तन आया है। वो भी अपने जीवन को, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, पर बहुत शॉर्ट टर्म में वो लोग अप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं कि हर चीज़ का हमें फ़ायदा मिले और लाभ मिले, जिसकी वजह से वह अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं। तो इस तनाव को कम करने के लिए बहुत सारी उपाय हैं, मैं वो बतलाऊँगा आगे, पर अभी कम से कम लोग ये से ग्रसित ना हो जाए कि जीवन जैसे बढ़ रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, उस तेजी से चलने की ज़रूरत है, किंतु संभलते हुए चलने की ज़रूरत है। और लोग वही क्या करते हैं कि अंधाधुंध देख, किसी को देखते हुए, उसकी नकल करते हुए, मीडिया को देखते हुए

0: और उसी के साथ फॉलो करने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वह असफल हो जाते हैं उस प्रयास में, तो कहीं वो कोई ना कोई मानसिक बीमारी का वो शिकार हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो आज के दिन में दौड़ जरूरी है, पर दौड़ में ये देखना जरूरी है कि यह दौड़ हमें लाभ कितना पहुंचाएगा, या इसका फायदा ये है। अंधाधुंध दौड़ की जरूरत नहीं
1: जी
0: है।
1: अपनी काबिलियत आप देखिए।
0: अपनी
1: हाँ
0: अपनी क्षमता को पहचानिए,
1: जी
0: अपनी एबिलिटी को देखिए, उसके अनुसार कार्य कीजिए, है ना, और एक सही दिशा निर्धारित कीजिए कि हमें क्या करना है, एक उद्देश्य अपना लेके चलिए। आजकल बच्चे इधर भी हाथ मारते, उधर भी हाथ मारते, ये भी काम में हाथ लगा लेते, वो भी काम लगा, और बहुत ज़्यादा वो लोग प्रयास करते हैं, और बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपनी जो दिवा स्वप्न वो बनाए रखते हैं, और देखते हैं कि ऐसा है जैसा फिल्म स्टाइल में दिखला रहा है, जैसा सब लाइफ हो रहा है वैसे ही हमारा भी लाइफ होगा। ये
1: जी
0: संभव होगा, पर ऐसा नहीं है कि ये भाग दौड़ में आज तक आप जीवन जी के अपनी जीवन शैली को बर्बाद कर रहे हैं, और उसकी दौड़ में आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हताशा आपको हाथ लगेगी,
1: जी
0: और जब हताशा हाथ लगेगी तो आप कहीं ना कहीं कोई परेशानी में घिरेंगे, और
1: जी
0: जब परेशानी में घिरेंगे तो आपकी शारीरिक स्थिति भी खराब होगी और मानसिक स्थिति भी खराब होगी।
1: जी अब
0: तो
1: यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अवसाद केवल सामान्य उदासीन नहीं है,
0: जी
1: बल्कि
0: बिल्कुल।
1: एक गंभीर मानसिक स्थिति है। इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है?
0: पहली बात है कि अवसाद जो होता है, यह मन उदास होना यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है, और ऐसा है कि कभी एक दिन, दो दिन, एक घंटा, दो घंटा, 4 घंटा के लिए मन उदास हो जाना एक आम बात है।
1: अच्छा
0: और किसी के साथ आज घर में किसी बात को लेके, परिवार से कोई बात हो गई, मम्मी पापा से कोई बात हो गई, पति पत्नी के बीच में कोई बात हो गई, पर कुछ देर के बाद वो सब ठीक हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है, सब बातें ठीक हो जाती है। तो यह इसे हम अवसाद या डिप्रेशन नहीं कहेंगे। अवसाद और डिप्रेशन होने के लिए कम से कम कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे हमेशा लो मूड बना रहता है, मन उदास रहता है, और कोई काम करने का मन नहीं लगता, भूख, नींद, चिड़चिड़ापन, ये सब बना हुआ रहता है, नींद की कमी होती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, और जिसमें नकारात्मकता की सोच बहुत ज़्यादा आने लगती है।
1: अच्छा
0: अगर ये लगातार 15 दिन से 20 दिन के तक रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, अगर यह स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण उसकी दैनिक दिनचर्या जो होती है, रोज प्रत्येक दिन डेली एक्टिविटीज होती है, अगर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, नहीं कर पाते, परफॉर्मेंस पुअर होने लगता है, तो वह कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें पहले तो काउंसलिंग के लिए या अपना परेशानी को बताने के लिए उन्हें चाहिए था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास मिलना चाहिए,
1: अच्छा
0: साइकेट्रिस्ट के पास मिलना चाहिए, और उसकी गंभीरता को देखते हुए उसके अनुसार उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: जी
0: तो कम से कम इतनी ज़रूर है कि अवसाद तुरंत का उत्पन्न हुआ कोई चीज़ नहीं है, यह धीरे धीरे बढ़ते जाता है और गंभीर होते जाता है, तो इसको समझने की, पहचानने की ज़रूरत है।
1: जी इसमें अकेलापन भी लोग महसूस
0: जी
1: करते हैं।
0: बिल्कुल, इसमें अकेलापन महसूस करता है, और हमेशा उसके मन में नकारात्मकता आने लगती है कि मैं कोई काम को कर नहीं सकता हूँ, मैं इस काम मेरे लायक नहीं है, या मैं इसको करने में असमर्थ हूँ, और या इसी वजह से, या कभी कभी ऐसे हो जाता है कि किसी किसी को एग्ज़ाम वगैरह होता है, परीक्षा वगैरह होता है, उस परीक्षा में अच्छी तरह से वह प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वह अपीयर होते हैं और उनकी मार्क्स कम आती है, इसकी वजह से भी एक तनाव बना रहता है, एग्जामिनेशन में जाने का एक तनाव बना रहता है, और एग्जामिनेशन हो जाने के बाद भी अगर तनाव बना हुआ रहता है, तो बहुत सारे बच्चे इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, मेरे साथ में ऐसी घटनाएं हो गई, तो तभी उनमें नकारात्मकता आती है और वह कहीं ना कहीं कोई गलत आत्महत्या करने की स्थिति तक भी आ जाती है। तो इसमें लोगों को अपनी समस्याओं को समझने की ज़रूरत है, अपनी परेशानी को समझने की ज़रूरत है, और ऐसी स्थिति में जब गंभीरता बढ़ती जाती है तो लोगों को चाहिए कि वह अपने से दूसरे से बात करे, जो पर इससे गुजर रहे हैं उससे, उन लोग से बात करे, अकेला ना छोड़े उनको, और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय एक्सपेंड करे दूसरों के साथ, जिससे कि उनका तनाव कम हो और अकेलापन से दूरी हटे उनका।
1: तो बात चूंकि मानसिक स्वास्थ्य की आ रही है, तो जिस तरह की बातें आपके द्वारा बताई जा रही हैं,
0: जी
1: तो ये तो शरीर पर बहुत विपरीत प्रभाव छोड़ सकता है।
0: अगर हम नकारात्मकता मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, अगर मानसिक स्वास्थ्य खराब रहती है तो हमारा
1: अनेक बीमारियां।
0: अनेक बीमारियां होती है। पहला, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले अगर कोई तनाव या किसी तरह की कोई बातें, स्ट्रेस वगैरह हो जाती, चिंता वगैरह हो जाती है, ऐसे हमारा नींद गड़बड़ा जाएगा। नींद गड़बड़ा, जो स्लीप हाइजीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, है ना, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो यह क्या होगा, यह धीरे धीरे हमें, अगर नींद गड़बड़ा रही है तो जाहिर सी बात है मेरा आने वाले समय में मेरा जो हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम, बीपी का
1: वो और बढ़
0: प्रॉब्लम है
1: जाएगा,
0: वो बढ़ने लगेगा। डायबिटिक है तो डायबिटिक, डायबिटिक या नहीं है तो भी
1: हो
0: डायबिटीज
1: जाएगा,
0: होने लगेगा, है ना। नहीं खा रहे हैं तो उसके कारण माने ये होता है
1: कई
0: आपका
1: तरह की बीमारियां
0: एनेमिक,
1: पकड़ेंगी।
0: हाँ, हो जाएंगे, कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी ले रहे हैं तो किडनी वगैरह में भी इफेक्ट हो सकता है। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये तनाव मात्र होने से सिर्फ इतना नहीं कि आप तनाव से ग्रसित है, आपकी बहुत सारी शारीरिक परेशानियां उसके साथ साथ जुड़ जाएंगी।
1: जी, आज बहुत सारे चिकित्सक भी कहते हैं कि
0: हाँ
1: आप तनाव को कम करिए और शुगर को दूर भगाइए।
0: जी बिल्कुल, आज ज़रूरत है कि अपने, जब समझ में आ गई कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं, कहीं ना कहीं तनाव में हैं, तो उस तनाव को कम करने की ज़रूरत है, उस स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। आज स्ट्रेस कहाँ नहीं है, हर जगह है। स्ट्रेस
1: बिल्कुल।
0: अच्छे भी होते हैं, स्ट्रेस खराब भी होते हैं। तो अगर धनात्मक पॉजिटिव स्ट्रेस होते हैं तो कोई काम, मान लीजिए कि एक एग्जाम, बच्चे को एग्जाम देना है तो उसके अंदर एक स्ट्रेस बनना, एक तनाव बनता है। अगर उस तनाव नहीं बनता है तो बच्चे अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करते। अगर तनाव बनता है तो उसका सॉल्यूशन होता है कि वो तैयारी बढ़िया से कर रहा है। अगर
1: जी
0: बढ़िया से करता है तो उसका, जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा उसका तनाव भी खत्म हो जाएगा। किंतु वही तनाव अगर लगातार एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद भी बना हुआ रह गया और वो लंबी दिनों तक रह गया, जिससे उसकी डेली एक्टिविटी रूटीन है वो गड़बड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सीवियर स्ट्रेस में है और वो नकारात्मक तनाव में, स्ट्रेस में है, नेगेटिव स्ट्रेस में है। तो ऐसे में वह अपने लिए भी हार्मफुल है और दूसरे के लिए भी हार्मफुल हो सकता है।
1: जी, श्रोता मित्रों, हम आपको पुनः आगाह कर दें, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी विस्तृत बातें हम साझा कर रहे हैं पलामू जिला के मेदनी राय मेडिकल कॉलेज के साइकेट्रिक विभाग के नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार जी से। बात चूंकि युवा की भी चल रही है तो हम ये जानना चाहेंगे कि शैक्षणिक दबाव जो है वो कहाँ तक मानसिक बीमारियों के शिकार हमारे श्रोता बनते हैं।
0: देखिए, अगर देखा जाए तो मैं तो एक फिलोसफर के जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे लोग, बच्चे क्लास प्रमोट करते हैं, दूसरे क्लास में जाते हैं, तो एक गाइडलाइन बनता है और
1: जी
0: एक सिलेबस का एक लेसन प्लान बनता है। अगर लेसन प्लान के अनुसार बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, करते हैं, शुरू से ही करना शुरू करते हैं, तो उनमें तनाव कम होगा। कारण क्या है कि वह धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कर पाता है,
1: उस अनुसार ढल जाते
0: ढल
1: हैं।
0: जाते हैं और
1: जी
0: धीरे धीरे उसको तनाव भी कम होते जाएगा। किंतु क्या करते हैं बच्चे, आजकल बहुत सारे बच्चे जो अगर ओपन स्कूल में हैं, आना जाना, और दिन भर वो घर पे रहते हैं, घर पे रहें या स्कूल गए, उसके बाद आके दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया और चैटिंग फैटिंग, ये सब में अपना समय व्यतीत करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। और सिलेबस जब पूरा नहीं हो पाता है तब वो लास्ट समय में जाके स्ट्रेस और तनाव में आ जाते हैं। और
1: जी
0: कहीं ऐसे समय स्थिति में उनको, कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे हम लोग के पास आते हैं, चूंकि इसीलिए हम लोग बता पाते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन फोबिया हो जाता है, इतनी ज़्यादा एग्जामिनेशन फोबिया हो जाता है कि उनको पैनिक अटैक आने लगता है ना, चिंता इतना बढ़ जाता है, एंजाइटी इतना बढ़ जाता है कि वो फेंट होके, बेहोश होके गिर जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि उनको दवा चलाना पड़ता है और वो एग्जाम भी नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को पहले से ही, या जिसको ये आ जाए कि बच्चे शुरुआत से ही पढ़ाई अच्छे से करें, ताकि उनका जो लास्ट टाइम में जो 12 आवर में जो तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन से पहले,
1: जी
0: उस वो स्ट्रेस से वो बच जाएंगे। अगर वह शुरुआत अच्छा होता है, वेल बिगेन इज हाफ डन, कोई भी शुरुआत अगर अच्छे से करेंगे तो उसकी अंत भी अच्छी होगी।
1: मतलब किसी भी कार्य को सीरियस लेकर हमारे युवा ना चले,
0: नहीं, उसको शुरू से ही एक अपना रूटीन वर्क बना के चले और एक टारगेट अपना फिक्स करके चले कि मुझे ये करना है, और करना है तो हमको इसको करना है ना, और उसको कल के ऊपर ना नहीं टाले। देखा जाता अक्सर यही, तो कर लूँगा ना कल, अभी अभी मेरे पास एग्ज़ाम का इतना दिन है, इतना समय है मेरे पास, कभी नहीं, है ना, तो कल कभी नहीं आता, ये हमेशा सोचना पड़ता है। तो इसलिए आज की मुझे जो मिला हुआ है उसको आज मैं पूरा करूं, कल के लिए ना छोड़ूं। ठीक है, थोड़ी बहुत कम बेसी हो सकती है, पर कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि आज पढ़ाई करें। और अभी के दिन में

0: सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसित हो रहे हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज कर रहे
1: जी
0: हैं। जनरली देखा गया है, स्टडी में पाया गया है ऐसा इंडिया में, कि लगभग 7 से 9 घंटे बच्चे मोबाइल में एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने टाइम बिता रहे हैं। और टाइम सिर्फ, अगर वो मोबाइल खराब चीज़ नहीं है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, पर मोबाइल का उपयोग और सदुपयोग, दुरुपयोग,
1: ये निर्भर करता है।
0: ये निर्भर करता है कि आप मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल में क्या देख रहे हैं और क्या आप उससे प्राप्त कर रहे हैं। अगर बच्चे उसको एक प्रोडक्टिव ये में ले रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी है। अगर वही बच्चे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, रात को लेके बैठे हुए हैं, 2 बजे 3 बजे रात तक
1: रील देख
0: बैठे हुए
1: रहे हैं।
0: हैं, रील देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो यह अपने आप में बहुत ही नुकसानदेह है। बच्चे इतना ही नहीं, अपने आप को अंधेरे में ढकेल रहे हैं। तो मैं तो
1: जी
0: बच्चे लोग को यही कहूँगा, गार्जियंस को भी यही कहूँगा कि मोबाइल का उपयोग करें, किंतु संभल के उपयोग करें। मोबाइल आज के दिन में ज़रूरी है, अभिन्न अंग बन चुका है हमारा, उसे हम नकार नहीं सकते हैं, किंतु जब भी उसका उपयोग करें समझदारी से करें। और गार्जियन को भी ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे मोबाइल यूज करें तो मोबाइल में वो क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं।
1: जी
0: इसलिए गार्जियन को भी बीच में टाइम टू टाइम उनका बच्चों को मॉनिटरिंग करना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे एक हेल्दी डिस्कशन होगा तो कभी भी बच्चे में ये डाउट्स नहीं रहेंगे कि पापा हमें रोक रहे हैं या मम्मी हमें रोक रही है।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में अगर सब कुछ फ्रेंडशिप जैसा अच्छा खुलापन रहेगा, तो बच्चे भी अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, बच्चे भी अच्छे ही मिले। हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए,
1: जी।
0: तो आज के दिन में बहुत ज़रूरी है।
1: इन सारी बीमारियों का घरेलू उपचार क्या हो सकता है?
0: इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद उस उपचार की पद्धति पे आऊँगा।
1: जी
0: अभी के ये में मोबाइल तो एक एडिक्शन हो ही गया, और अभी देख रहे हैं युवा वर्ग बहुत ज़्यादा नशे की ओर बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ
0: जो मानसिक स्वास्थ्य का ये मतलब नहीं है कि आप को नींद अच्छी आ रही है, भूख अच्छी आ रही है तो आप स्वस्थ हैं, पर आपकी सोच क्या है,
1: जी
0: ये भी आप कहीं सोच तो आपका बीमार नहीं कर रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच को भी सही बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने के लिए ज़रूरी है कि नशे की से दूर रहे।
1: जी
0: नशे का लत लगना आम बात हो जाता है, और बच्चे लोग सीखते कैसे हैं कि ये अपने बड़ों के, अरे ग्रुप, पीयर ग्रुप में सीखते हैं, अपने दोस्ती यारी में सीखते हैं। अरे यार थोड़ा सा ले लो ना, कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा सा जो होता है ना, उसको एक आदत डाल देता है, और आदत डाल देता है, और धीरे धीरे वही उसकी मजबूरी बन जाती है
1: जी
0: और लोग उसकी नशा की आदत जाते हैं। अब रही बात उपचार की, तो अगर हम मानसिक रोग की बात करें तो मानसिक रोग की अवस्थाएं होती हैं। अगर देखा जाए कि सीवियर मेंटल डिसऑर्डर तो
1: बात
0: ये
1: की
0: है,
1: बात
0: बात की
1: है।
0: बात है। अगर जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह होता है,
1: शुरू में ही
0: तो में ही अगर,
1: अभिभावक को देखना होगा।
0: हाँ बिल्कुल, देख रहे हैं कि बच्चे बिना समय का सो रहा है, बिना समय का खा रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट कोई चीज़ में नहीं लग रहा
1: वहीं
0: है,
1: जागरूक होइए।
0: लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, अकेलापन में रहना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में गार्जियन को देखना चाहिए कि वह कैसे क्या कर रहा है। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसका है कि माइल्ड में, मॉडरेट और सीवियर, ये लेवल होता है।
1: जी अच्छा
0: माइल्ड में हल्का कोई परेशानी आ रहा है तो इसमें बातचीत करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उसकी कोई कोई परेशानी में उलझ गया है, उसको निकाल देते हैं तो परेशानी अपने आप ख़त्म हो जाती है। किंतु मॉडरेट लेवल में थोड़ी सी उससे सिवियरिटी बढ़ जाती है, इसमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर एंजाइटी डिप्रेशन में है तो काउंसलिंग है। लाइफ स्टाइल थोड़े बहुत चेंज कर देते हैं, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, अच्छे डाइट्स लेना, खाना पीना अच्छा रहना, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, और लोगों के बीच बातचीत करना, अगर ये सारी जीवन शैली में सुधार लाता है तो निश्चित तौर पे वो अवस्था आ नहीं पाएगा जो नहीं करने से आ जाएगा,
1: जी
0: गंभीर हो जाएगा। तो गंभीर होने से बचने के लिए अगर वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करता है तो उनमें बहुत सारी चेंजेज आएगी
1: जी
0: और वो ठीक भी रहेगा।
1: और जब गंभीर अवस्था
0: और
1: हो
0: जब
1: जाए तो
0: गंभीर अवस्था हो जाती है तब दवा की स्थिति आती है, तब दवा के साथ साथ काउंसलिंग, साइकोथेरेपी वगैरह चलता है, पर उस कंडीशन थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो अवस्था मैं आने ही क्यों दूँ, अगर पहले जान जा गया कि मुझे ये परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी को अभी से मैं ख़त्म करने का प्रयास क्यों नहीं करूँ, कल क्यों देखूँ,
1: जी
0: या सीवियर होने का इंतज़ार क्यों करूँ। अगर मुझे कोई

0: परेशानी हो रही तो उसको तुरंत ही समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी, अगर देखा जाए सिर्फ आपको एक संतुलन बना करके आपस में एक तालमेल बैठाने की आवश्यकता है।
0: आप मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इसमें मानसिक स्वास्थ्य की हम करें, मानसिक बीमारी और स्वास्थ्य दोनों दो चीज़ें हो जाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य जो होता है कि हमको अपने आप को फिट रखना है और सोशली हर काम को करना है
1: जी,
0: है ना, और सोशली एक्सेप्टेंस है, उस कार्य को हम कर सकते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रख सकते हैं, हमारा बिहेवियर में कोई चेंजेज नहीं आता है। किंतु यही जब रोग बन जाता है, डिसऑर्डर बन जाता है, तब ये सारी चीज़ें परिवर्तन हो जाती है। इसमें होता है लोगों के साथ उठना बैठना, मेल मिलाप, बातचीत करना, ये सारी बदल जाती है, लोगों से दूर रहने लगते हैं लोग, बातचीत करना कम कर देते हैं, और इतना ही नहीं कभी कभी लड़ाई झगड़े भी करने लग जाते हैं, है ना, और तो यह गंभीर स्थिति आती है। तो ये दोनों स्थिति को समझने की ज़रूरत है। और रही बात है कि ये सारी चीज़ें को उस अवस्था में ना पहुंचने दें, इसके लिए हमें खुद प्रयास करना चाहिए। और प्रयास, हमको पता चल गया कि हमको परेशानी है तो उसको निदान करने का, हल करने का खुद कोशिश,
1: बस आपस में बैठ करके
0: बस बातचीत करें, गप करें,
1: बस अकेला यहीं से ये बीमारी दूर हो जाती है।
0: आधी बीमारी वहीं से आपकी हो जाती है जब आप शेयर करना शुरू करते हैं, किसी से बात करना शुरू करते हैं।
1: और विशेषकर बुजुर्ग जब अपेक्षित होते हैं तो वो ज्यादा मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, बुजुर्गों के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। एक तो उम्र है, उम्र के कारण वह शारीरिक रूप से थोड़ा सा निर्बल होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, साथ ही साथ शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी वो कमजोर होते जाते हैं। अब यहाँ पर रही हमें उनकी सपोर्ट करने की और सहानुभूति के साथ उनको मदद करने की जरूरत है। अब मदद करने की जरूरत क्या है कि अभी के समय में क्या हो रहा है कि पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे, आज न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, माँ पिताजी और उनके एक दो बच्चे और उनके भी एक नाती पोता एक दो, ऐसे ही आज चलते जा रहे हैं। सारे लोग बच्चे पढ़ाई लिखाई में अपने लगे हुए हैं और उनके जो बच्चे हैं वो अपना लाइफ में कैसे कमाना है, कैसे ही करना है, लाइफ चलाने के लिए हुए हैं। अब बुजुर्ग लोग के साथ क्या हो रहा है कि कोई उठने बैठने वाले नहीं है, एकाकीपन महसूस कर रहे हैं
1: जी।
0: है ना, उनके साथ कोई बोलने वाला नहीं है, पोता के साथ बैठ नहीं पाते क्योंकि पोता के पास या पोती के पास या नाती के पास उन लोग के पास समय नहीं है क्योंकि उनको पढ़ाई करना है। दूसरी बात है बच्चों के साथ, उनके बेटे बहू के साथ वो लोग भी आजकल वर्क कर रहे हैं तो वो लोग भी दिन भर बाहर रह रहे हैं, तो आखिर करे तो करे किसके साथ शेयर करे। अगर उसमें भी कि पति पत्नी में किसी कोई एक रह जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, खास करके मेल के लिए
1: जी।
0: फीमेल तो होती है कि वो एडजस्ट अपने दायरा बना लेती है कि अपनी बहू से अगल बगल वाले से ही कर लेते हैं, पर मेल के साथ क्या होता है कि उनका बहुत लिमिटेशन हो जाता है, बहुत लिमिट रहने लग जाते हैं और वह अपनी परेशानियाँ को शेयर नहीं करते। तो ऐसे में चाहिए उन लोगों को कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं तो उनमें धार्मिक चेतनाएं थोड़ा सा लाना चाहिए,
1: अच्छा।
0: है ना, आध्यात्मिक की ओर उन्हें जोड़ना चाहिए, पूजा पाठ की ओर जोड़िए, अपने नित्य कर्म जो करते हैं पूजा पाठ में वो सब करें,
1: और समाज लोगों के साथ लेके चलिए,
0: समाज के लोगों के दुख सुख में खड़ा होने के लिए उनको जोड़िए, उनके साथ जुड़िए, हर समय उनको शेयर कीजिए, लेके जाइए, डिस्कस कीजिए। और कभी कभी हम लोग देखते हैं शाम का समय मंदिर में भजन कीर्तन होता है बहुत जगह, एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कारण क्या है कि जो रिटायर्ड पर्सन हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए समय पास पार करना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए वह एक समय बोलिए तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे वह बैठ के एक घंटा दो घंटा भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, भगवान भक्ति भावना में भी अपने मन लगा सकते हैं, धार्मिक ई में भी कोई भी धर्म से जुड़े हुए हों वो अपने जरूर जाएँ। उस जाने के बाद अपनी वहाँ पे जो वेंटिलेशन होता है, तनाव से मुक्ति मिलता है ना, हंसना, मॉर्निंग वॉक में जाएं, है ना, लोगों के साथ ग्रुप बनाएं, ग्रुप बना के रहेंगी तो उनकी परेशानियाँ अपने आप कम होने।
1: और वैसी कोई बात है जो छूट रही है?
0: अभी बच्चों के लिए दो तीन बातें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अभी क्या हो रहे हैं कि किताब से भाग रहे हैं दूर, बच्चे की पढ़ाई में रुचि कम होती जा रही है, और बच्चे आजकल एआई का जमाना आ गया है तो एआई के कारण वो लोग तुरंत हर चीज़ का आंसर मिल जाता है उनको, और वह आंसर देख के लिख लेते हैं और

0: उसके बाद वो समझ जाते हैं कि मैं पूरा पढ़ लिया। नहीं, यहाँ आपका सोच भी लिमिट हो जाएगा और आपकी जानकारी भी लिमिट हो जाएगी। बच्चे को चाहिए बुक से ही पढ़े, बुक का कोशिश करें वो कंटिन्यू पढ़ते रहें, उनको अपना एक आदत डालें, लगातार पढ़ें। क्यों ना हो, पेपर ही हो, न्यूज़पेपर ही हो या मैगजीन ही हो, पर पढ़ाई की ये बनाए रखें, वो बहुत ज़रूरी है। अभी एक प्रोग्राम हुआ था ओलंपीडियाड करके, हिंदुस्तान ओलंपियाड, उसमें टीचर्स लोग से व्यू लिया गया था, तो उसमें देखा गया था कि ज़्यादातर बच्चे चैट जीपीटी और एआई के द्वारा उन लोग को होमवर्क मिलता है तो सब बना के ले आते हैं। अगर एक क्लास में होमवर्क मिला दिया गया तो सारे बच्चे का आंसर ऑलमोस्ट सेम होते, एक ही होते हैं। और पर जब उनको वास्तविक में जब एग्ज़ाम देना पड़ता है तो लिखने की उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, वो लिख नहीं पाते हैं। तो दोनों चीज़ें अंतर, दोनों में अंतर। एआई आपका फ़ायदा भी दे रहा है और एआई के कारण आपको नुकसान भी हो रहा है। एआई का उपयोग कीजिए, मोबाइल का उपयोग कीजिए, पर एक लिमिट पढ़ाई के लिए कीजिए और एक लिमिट समय तक कीजिए। जितनी जानकारी लेना है वो लीजिए, जब आपको समझ में नहीं आए तब जाइए। जब आप पढ़ पा रहे, किताब में इंटरेस्ट लग रहा है तो आप किताब को पढ़िए, और तब तक पढ़िए जब तक आपको लग रहा है कि आप उबाऊ, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब तो आगे देखिए।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, हम समझते हैं हमारे श्रोताओं को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी। दोबारा जब भी ज़रूरत पड़ी हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमारे श्रोता सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मेदनी राय मेडिकल कॉलेज के साइकेट्रिक विभाग के नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार से की गई बातचीत। विषय था मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता जरूरी। कार्यक्रम में बातें हो रही थी संतोष कुमार की। कार्यक्रम संयोजन एवं प्रस्तुतकर्ता थे प्रशांत गौरव।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी। भेंट वार्ता डॉक्टर सुनील कुमार, नैदान्तिक मनोचिकित्सक, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू से, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार, संयोजक एवं प्रस्तुति स्वरता प्रशांत गौरव का। अब आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन नहीं करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे

0: की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखा और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के डीसीपी बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं।
1: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत अमरीका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति साथ ही हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अमरीका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में मदद करेगा। अमेरिका के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर को सम्मानित किया। इस बीच इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन स्मिथ को उनके कार्यों के सम्मान में इसराइल का नागरिक वीरता राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाए। कप्तान शाई होप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना आरकेल। The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said, applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Mr. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that Delhi Police will take appropriate legal action against anyone found violating the law. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit at 45 metro stations will remain closed today till 6 p.m. These include Janpath, Patel Chowk, Central Secretariat, Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, New Delhi's

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं वहां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में

लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको, लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी, बेटी कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा, हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर है ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला, वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना, यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता, दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली। आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर, पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों की झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूपती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब सी खिली थी, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे। सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सर्पीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों निपोर रही थी तू, हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोड़ते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर रह गई।

पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। इस घर में ये वक्त लड़कियों के लिए बाहर से लौटने का नहीं है। छोटे भाई सोनू ने दरवाजा खोला और अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में वो मशगूल हो गया। चाचा हाथ में रिमोट लिए टीवी के चैनल बदल रहे थे। टीवी बंद करते हुए उन्होंने दिव्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराध करके लौटी हो। कॉरिडोर पार करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चौल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था। लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि

दिव्या तीन भाई बहन मिलाकर पांच लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर तीन लोग। मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहां पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं। हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेली इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोंचे लगी थी। मालशेज घाट में देखे फूल मुरझा गए थे, बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही। इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निस्संग पाया। डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैला नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था। बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीटहार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूँ मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओ अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा, पूछ तो सही, कौन है? पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है? प्रणव सर। अनमनी सी दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? चल ना, चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा के स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी? और एक रीडिंग बहुत जरूरी है, अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है। आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये। फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं? अगर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है? आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहां से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहां से आएगी ये रकम? दिव्या

का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर अंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? और किसके साथ रहोगी हैं? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से

कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे, वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी, अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज, एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी, और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा? कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराए शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो उहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई, खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थीं। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
3: हाँ जी।
2: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
3: हाँ जी हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना? बोलो, बोलो।
2: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: करो वादा।
5: हाँ जी वादा।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने।
6: विविध भारती के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वेलनेस गुरु यानी फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर राज अशोक शेट्टी जी को। राज अशोक शेट्टी जी, विविध भारती के स्टूडियो में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
7: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
6: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
7: बहुत बढ़िया, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, कोई मुझे दिखते नहीं थे, लेकिन अंदर बहुत सारे काम चल रहा है। फैंटास्टिक, आई एम फीलिंग वेरी गुड। थैंक यू
6: जी। डॉक्टर राज, हमें बताइए कि आज हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपनी सेहत से, और उसे किसी न किसी दवा की जरूरत पड़ती है। और हमने जो आपके बारे में जाना है वो ये कि आप लोगों को फिट रखने के बहुत सारे गुर बताते हैं, बहुत सारे नुस्खे बताते हैं।

0: आते हैं कि वो बिना दवा के अपने को फिट रख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है 4+1=100, जबकि 4 और 1 का जोड़ तो 5 होता है। तो ये फॉर्मूला क्या है और इसके बारे में बताइए, और किस तरह से इसे दिनचर्या में शामिल करें?
1: ये आजकल ना बहुत पहले से ही चलते आ रहा है कि भाई लोग परेशान है हेल्थ को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में नहीं बात करके सबको इसके बारे में जानते ही है। और 4+1=100 इसको मैजिक ऑन बॉडी फार्मूला बोलते हैं। तो ये मैजिक करता है, कैसा करता है कि हर एक इंसान को ये फॉर्मूला लागू पड़ता है
0: जी।
1: ये हम ऐसा सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, हमको तो अच्छा है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक को तकलीफ जिंदगी में होता ही होता है। तो 4+1=100 ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी है, मेरा वाइफ के लिए भी है, मेरे बच्चे के लिए भी है, और मेरी माँ बाप के लिए भी है। तो मैटर ये बनता है, व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100, ये फॉर्मूला क्यों बनी है, इसी में मैंने पीएचडी किया हुआ है।
0: अच्छा।
1: तो इट इज अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो थीसिस का नाम है 4+1=100 ओबेसिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है
0: जी।
1: तो पंच तत्व से अगर शरीर आया है तो पंच तत्व में ही विलीन होने वाला है
0: जी जी।
1: तो पंच तत्व से आए हुए शरीर को आपको 5 पावर्स देना होता है। तो पंच तत्व अगर हम बात करते हैं तो हमारा, अगर आप हम अतेली देखेंगे तो अतेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1, ये अग्नि तत्व है
0: जी।
1: फिर आता है उसके बगल का 4, ये 4 उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व
0: जी,
1: 4 उंगली को अगर हम गिनते हैं तो। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है। तो ये फॉर्मूला मेरा नहीं है, ये कुदरत का फॉर्मूला है, हर एक को इसे अपनाना बहुत जरूरी होता है
0: जी।
1: तो ये कुदरत से आए हुए फॉर्मूला से अगर हमारा शरीर बनी हुई है तो इसे 5 पावर देना जरूरी है
0: जी।
1: वो क्या 5 पावर है? वो 5 पावर होता है, सबसे पहला होता है अग्नि तत्व, दैट इज अ परिश्रम देना जरूरी है। फिर आता है वायु तत्व, तो वायु तत्व यानी कि आपको श्वास कैसा लेना है, कैसा छोड़ना है और कैसा रिटेन करना है
0: जी।
1: फिर आता है स्लीप यानी कि नींद कैसा लेना है
0: जी।
1: फिर आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट यानी कि आप खाना कैसे खा रहे हो, कितना न्यूट्रिशन बॉडी को देना है, कैसा देना है, उसके बारे में बातें होती है, सुनना जरूरी होता है। फिर आता है जल तत्व, पानी का महत्व, शरीर में कितना पानी देना है, ये बस इतना ही है। ये 4+1=100 अगर एक इंसान समझ लेता है तो उनको पूरा जिंदगी भर वो खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ परेशानी नहीं होगा और दवाई से तो दूर ही रहेंगे
0: जी।
1: तो ये रियलिटी है। तो ये 4+1=100 इज 100 ईयर्स ऑफ लाइफ, 100 साल तक जीने का सही तरीका
0: जी।
1: तो
0: जी।
1: मैं ये फॉर्मूला अपना खुद के ऊपर भी अपना रहा हूँ। मेरा इस वक्त आप मेरा एज देख रहे हो तो 63 का हूँ, और मुझे लगता है कि और भी कुछ साल तक मैं इसे फिट रहूंगा, ऐसा मुझे लगता है, अगर यही फॉर्मूला मैं अपनाता रहूंगा।
0: बिल्कुल। अब आपने अपनी उम्र बता दी है लेकिन हमारे श्रोता आपको देख नहीं पा रहे हैं, हम उनको बता दें कि आप बिल्कुल 63 के नहीं लग रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि 33 तो बहुत कम हो जाएगा लेकिन 43 से आगे आप नहीं दिख रहे हैं, 40 के अंडर 40 दिख रहे हैं।
1: बस यही फॉर्मूला का इसका बदौलत है।
0: तो वो जो फॉर्मूला है ये तो आपने बता दिया, और इस बारे में आपने पीएचडी की, वो 5 तत्वों की जानकारी आपने दी। 5 तत्वों का समायोजन अपनी जिंदगी में कैसे करें, क्या करें कि ये सब कुछ ऐसा फिट रह सके, मतलब वो तत्व क्या है?
1: बस
0: जैसे आपने कहा वायु तत्व, और कितनी फूड लेना है, कितनी नींद लेना है, तो उसका मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी।
1: या अगर आप बोल रहे हो ना कि इंसान बहुत परेशान है, बच्चे बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बड़ों की बातें नहीं सुन रही है, और ऊपर से एडवर्टाइजमेंट्स इतना आते हैं, ललचावन एडवर्टाइजमेंट इतना सारे आते हैं, बहुत सारे जो खाने का पैकेट्स देख करके बच्चे ललचा जाते हैं, जो भी आप देखते हो तो बच्चों को लगता है कि ये मुझे खाना चाहिए, वेफर से लेकर के हर रोज चीज। और ऐसे बड़ों में भी क्या हो गया कि घर में खाना कम बनता है, पार्सल बहुत ज्यादा बाहर से आता है, और जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो एक्चुअली नहीं होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी इतना सारा हो चुका है, जो परिश्रम होना चाहिए वो है ही नहीं है, तो जो पसीना निकलना चाहिए वो नहीं निकलते, जो किसी को भी थोड़ा मेहनत परिश्रम लेकर करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ये पूरा हर एक चीज आप अगर देखते तो रोड रेजेस भी अगर होते हैं तो परेशान होकर घर से निकलते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं। और उसके अलावा भी क्या है कि जो एंगर मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं लोगों में, जल्दी गुस्सा आ जाता है
0: जी,
1: और इरिटेट हो जाते हैं। और ये पूरे चीज का मेन कारण क्या है कि नींद, ठीक से नींद नहीं करना, ठीक से पानी नहीं पीना, ठीक से श्वास नहीं लेना, और ठीक से खाना नहीं चबाना, और ठीक से परिश्रम नहीं करना, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर हम बात करेंगे तो जो भी हमारे जो श्रोतागण जो है, जो लिसनर्स जो है, वो अपना लाइफ डे टू डे में उतार सकते हैं।

0: ऐसा हो सकता है, देखिए हमारा शरीर तो कुदरत से आया, वो तो गारंटी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरीर कुदरत से आया, कुदरत में ही जाने वाला है, जहां से आया वहीं पर ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो पांच पावर कुदरत ने जो नियम दाया था, सी एक फिलोसॉफिकल बातें करता हूँ कि
1: जी
0: जब कुदरत जब हमको शरीर दे रहा था तो हमारे ऊपर एक नियम कानून था। जब ये मैं आकाशवाणी का अंदर आया तो गेट में बोला गया था कि भाई आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, परमिशन लेके आना है, पूरा एक नियम कानून है, तो नियम कानून के अंदर ही हमें रहना है। ऐसा कुदरत में जब हमको ये शरीर मिला था, कुदरत ने कंडीशन किया था, ये आपको शरीर में दे रही हूँ तो ये शरीर में आपको रहना है,
1: जी
0: रहना है 100 साल तक रहना है। तो 100 साल रहने के लिए उसके लिए मुझे रेंट चाहिए, वो
1: जी
0: रेंट में क्या चाहिए, हमें 2 किलो सोना चाहिए, 4-5 बंगलो चाहिए, या फिर यू नो इतना
1: जी
0: प्रॉपर्टीज चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए। उसको चाहिए सिर्फ पांच पावर चाहिए। वो कौन सा पांच पावर चाहिए? पानी देना है, खाना देना है, नींद देना है, श्वास देना है और लेबर देना है। इसमें परसेंटेज यूज होता है,
1: जी
0: 100% अगर हम बात करें तो परसेंटेज का 100% पानी 72% है, हमें उतना पानी देना है, सिर्फ 12% खाना देना है यानी कि न्यूट्रिशन देना है। फिर आते हैं 6% अपने को नींद देना है,
1: जी
0: 6% श्वास देना है,
1: जी
0: सिर्फ 4% हमें लेबर देना है। तो ये इतना चीज हमें शरीर को देना है, ये समझना जरूरी है। ये समझने के लिए थोड़ा सा विस्तार से हमें बात करना जरूरी है।
1: जी
0: तो पॉइंट ये बनता है कि 100% अगर हमको रहना ये दे दिया तो कुदरत खुश होकर के 100 साल के ऊपर 20 साल और हमें बोनस में मिलेगा। सो 120
1: क्या
0: साल
1: बात
0: की
1: है,
0: जिंदगी गारंटेड हो जाती है। और आजकल अर्ली एजिंग आ रहा है, लोग जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं, जब तक जिएंगे बीमारी से जिएंगे तो
1: जी
0: बहुत परेशान होकर जिएंगे पूरा। अगर आप जिंदगी का 25% 30% जो
1: बिल्कुल
0: रास्ते में बोलते हैं ना, हम लोग ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं और बाकी 25-30% झगड़े में गुजार देते हैं, बाकी 20-25% कन्फ्यूजन में गुजारते हैं, मांड मांड हम जी लेते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: जब 100 साल की जिंदगी कुदरत ने दिया है, ये पांच चीजों को समझ लेंगे ना रोड रेजेस रहेगी, ना हम ज्यादा करके गलत सिस्टम में नहीं रहेंगे और अपने आप को अच्छे से जी सकते हैं, कि रोज अच्छे से जी सकते हैं।
1: जी
0: दैट मीन्स यू शुड वी कैन लिव इन प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में बहुत सही तरीके से जी सकते हैं।
1: जी
0: तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है कि हम पानी से शुरू करते हैं
1: जी
0: कि पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, उस बेस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
1: कैसे
0: आप क्या
1: पीना
0: बोलते
1: चाहिए,
0: हो?
1: कैसे पीना चाहिए पानी और कैसे खाना
0: ओके
1: चाहिए,
0: आप
1: बताइए।
0: देखिए, मैंने बोला 72% हमारा शरीर जो है पानी में, हमारे जो टिश्यूज बोलते हैं ना, जो मांस होता है, अब आंख है, कान है, हड्डी छोड़ के बाकी पूरा पानी ही है एक्चुअली
1: जी जी
0: टिश्यूज, दैट इज अ 72%। यानी कि अगर आप अंतरिक्ष से धरती को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, 75% पानी दिखती है, 25% आपको जंगल और जमीन दिखती है। तो हमारा शरीर भी वही है, आपका जो 1/3 जिसको हम बोलते हैं, सो
1: जी
0: दैट इज हमारा पानी कैसा होना चाहिए। आपका वजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
1: जी
0: हर बच्चे से लेकर के
1: हाँ
0: बुजुर्गों तक ये मैं जो बोल रहा हूँ सुनना जरूरी है कि आपका वजन कीजिए। दाखला तरीके मेरी वजन इस वक्त 70 kg का है, अगर मैं 70 kg का हूँ तो मुझे कितना पानी पीना चाहिए? मुझे एक बात बताइए ममता जी, पानी आप कितना पीते हो दिन का?
1: हमें तो ऐसे नहीं आकलन कर सकते। हाँ, एक बोतल रहती है साथ में, एक बोतल दिन में, और मुझे लगता है रात को एक बोतल दो दो 2.5 लीटर तक मुश्किल से पानी पी
0: मतलब
1: लेते
0: कोई
1: हैं।
0: प्रॉपर कैलकुलेशन
1: प्रॉपर
0: नहीं, आप
1: कैलकुलेशन
0: एक
1: नहीं है।
0: लीटर भी पिएंगे या 3 लीटर भी पिएंगे,
1: हाँ, कभी
0: प्यास लगे तो
1: कभी,
0: कभी कभी 1 लीटर पूरा पी लिया
1: हाँ
0: एक
1: कभी
0: साथ
1: कभी
0: में,
1: बोतल यूं ही रखी रह जाती है, भूल जाते हैं
0: भूल
1: नहीं पीते
0: जाते
1: हैं।
0: हैं।
1: हाँ
0: दैट
1: जी
0: मीन्स दैट इज अ प्रॉब्लम। कुदरत ने आपको नियम बनाया था, आपको मेरा बॉडी में 72% पानी तो देना ही है,
1: जी
0: और बॉडी में पानी जो है हर आधा घंटे में कम से कम 30 ml पानी निकल जाता है। 72% पानी में अगर मान लीजिए कि 5% निकल जाएगा तो कितना बचा? उतना परसेंटेज बचा, 68-70% बचा। फिर हर आधा घंटे में पानी बाहर निकल रहा है तो हमारा पानी संतुलन 72% तो हमें रखना ही है, एनी गिवन टाइम पानी 72% से कम नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी, उससे ज्यादा पानी देंगे ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा, ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कम पानी भी नहीं होना चाहिए। अगर हर आधे घंटे में पानी, अगर इतना पानी जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को रिप्लेस करना जरूरी है, यानी कि जितना पानी गया उतना पानी आपको पीना जरूरी है। दैट मीन्स पूरा दिन में, यानी कि 8 घंटा अगर आप सोने का निकाल देते हो,
1: जी
0: 16 घंटे में आपको कम से कम 30 बार पानी पीना चाहिए। वो भी कितना पानी चाहिए? एनी गिवन टाइम कभी भी आपको आधा ग्लास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कोई बोलते कि 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास पानी पीना चाहिए, नहीं, ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा। तो हमें पानी थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए, जैसे कि घर के अंदर फूल का पौधा है तो पानी हमको छिड़कना पड़ता है, अब बाल्टी भर के पानी तो नहीं डालेंगे,
1: बिल्कुल।
0: सो दैट इज द रीजन कि हमको एक साथ में पानी उठा करके ऊपर से पानी पीते हैं, वो भी नहीं पीना चाहिए। तो पानी इज

0: मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसके
1: जी
0: लिए 72% ही आपको रखना जरूरी है। दैट मीन्स एक कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी अगर वजन 70 किलो की है, इंटू थ्री करना है मुझे 0.03%, दैट मीन्स 7 3 21, यानी कि 2 लीटर और 100 ml।

0: पानी के बारे में थी।
1: सी
0: अब मतलब आपने क्या कहा?
1: पानी जो है
0: हाँ
1: ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर
0: हाँ
1: है अपना
0: तो
1: शरीर का। लोगों को पानी पीना नहीं आता है बिकॉज वो
0: हाँ
1: पूरा बॉटल उठा के पी जाते हैं, वो
0: जी, वो
1: नहीं पीना
0: ठीक
1: चाहिए।
0: ठीक नहीं है
1: हवा
0: बिल्कुल।
1: में पीना नहीं चाहिए, होठ पे लगा के पानी को खींचना चाहिए।
0: ओके।
1: यही लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है, पानी पीना आना चाहिए इंसान को। जब पानी पीने को अच्छे से आ जाएगा, देखिए आप बच्चा दौड़ के आएगा पूरा घटा घट करके पानी पिएगा, आधा लीटर 1 लीटर पानी पी जाएगा, वो भी जल्दबाजी में पिएगा, वो कभी नहीं करना
0: वो
1: चाहिए। थोड़ा
0: नुकसान दे।
1: शांत होकर के पीना जरूरी है। और हर आधा घंटे में अगर आप पानी पी रहे हो आपको प्यास लगेगी नहीं,
0: जी जी
1: यानी कि इंसान को कभी प्यास लगना नहीं चाहिए। तो प्यास लगने से पहले पानी पी लेना चाहिए।
0: और बच्चे तो ये भी कहते हैं, अरे मुझे प्यास नहीं लग, बच्चों को अगर कहा जाए पानी पीने के लिए, वो कहते हैं मुझे तो प्यास ही नहीं लगती, क्योंकि दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, उनको प्यास महसूस
1: बस
0: नहीं
1: यही
0: होती।
1: तो लाइफ स्टाइल
0: बच्चों की
1: मैनेजमेंट
0: और एक समस्या डॉक्टर साहब, वो है मोटापा, और उनकी जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन की लत, ये भी है। तो कई बार इससे जो बेचैनी के कारण एकाग्रता की कमी होती है बच्चों में, ये आजकल समस्या बढ़ रही है। तो ऐसे में फिटनेस के लिए, बच्चों में एकाग्रता बनी रहे, उनका मोटापा कम हो, चिड़चिड़ापन कम हो, इन सब के लिए उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है और बच्चों की क्या भूमिका होती है? कैसे शुरुआत करें फिटनेस की और
1: देखिए
0: कैसे बढ़ें?
1: पेशेंस जो है वो ना माता पिता ही दे सकते हैं। ओके, बच्चों का जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रही है वो तो सोशल मीडिया की वजह से आ रही है, स्कूल पे ये तो कंपटीशन इतना ज्यादा है।
0: फिटनेस के लिए क्या करें वो
1: ओके, ये
0: शुरुआत में?
1: कंपटीशन के साथ ही फिटनेस जुड़ा हुआ है। तो आपको कंपटीशन यानी कि आपको क्या बनना चाहते हो उस लाइफ में, उसके बेस पर होता है। पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं बच्चों को, ये करना ये करना, बच्चों को एक्चुअली उनमें क्या रुचि है। उसके बाद अगर डे वन से ही बिगिनिंग से अगर आप घर के अंदर का वातावरण अगर ऐसा बना के रखेंगे, जैसे कि भाई थोड़ा सा जिम एक्टिविटीज होगा या फिर पुलअप्स का कुछ हो सकता है, या फिर जैसे कि घर का जो बातचीत में क्या होता है, क्या बनना चाहते बच्चा, वो आईपीएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, या फिर एक डिपेंड होता है बिजनेसमैन भी बनना है, तो उसके लिए फिटनेस का होना बहुत जरूरी है। घर का डिसिप्लिन यानी कि कितना बजे उठना है कितना बजे सोना है, ये सब कुछ आता है सोने पर। बच्चा कितना बजे सो रहा है, अगर वो 12-1 बजे के बाद सोता है, दूसरा दिन आप उसे कोई भी चीज को उम्मीद आप मत रखिए, बिकॉज वो चिड़चिड़ा रहने वाला है, बिकॉज बॉडी में जो रिपेयर होना था वो नहीं हो पाया। तो ये जो टॉपिक है ना, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, बिकॉज हम
0: जी
1: पानी का जो बात किया है, पानी का इंपॉर्टेंस बच्चों को समझाना जरूरी होता है कि ये बच्चा हर आधे घंटे में प्यास लगने तक वेट नहीं करना है, प्यास लगने से पहले पानी पी लेना, बिकॉज बॉडी का नीड है। बिकॉज हर आधे घंटे में पानी बाहर जा रहा है, थ्रू यूरिन से जा रहा है, आंसू से जा रहा है, पसीना से जा रहा है, और हमारे पोर से पानी बाहर जा रहा है। अगर पानी बाहर जा रहा है तो पानी अंदर आना जरूरी है। अगर पानी ठीक से नहीं पियेंगे, बॉडी उनका ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, माल फंक्शन करेगा, इसका मतलब वो चिड़चिड़ा ही रहेगा और कुछ चीज समझ में नहीं आएगा, लेथार्जी तक जाएगा, या कुछ चीज स्कूल में भी उनको नींद आने लगेगी, या फिर उनका पसीना बदबू आने लगेगी। ये पूरा सोशल इम्पैक्ट हो रहा है
0: एक
1: बच्चों में।
0: विज्ञान है, लेकिन यहाँ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो नुस्खे क्या हैं,
1: नुस्खे
0: वो फिटनेस के लिए नुस्खे कैसे उन्हें जोड़े, कि उन्हें एक्सरसाइज से जोड़े, सांस के प्रयोग से?
1: या इसके स्कूल का जो वातावरण कैसा उसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसमें हम कुछ नहीं सब बोल सकते कि स्कूल का क्या है हम नहीं जानते। अब स्कूल प्रबंधन वो तो करेगा, उनको क्या एक्टिविटी देना है क्या नहीं देना है वो बात हो जाती है। अगर स्कूल से बाहर आने के बाद की अगर हम बात करें, तो बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कुछ भी है उनका स्कूल वर्क जो है रात को 8 बजे से पहले फिनिश करवा देना चाहिए। खाना जो है उनको 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, उनके पास सिर्फ एंटरटेनमेंट थोड़ा देर के लिए होना चाहिए। दैट इज कोई भी चीज, फिजिकल हो सकता है या टीवी हो सकता है, वॉट एवर द माध्यम, मोबाइल से नहीं। उसके बाद भी वो जल्दी सो जाएंगे, सुबह अगर वो जल्दी उठ जाते हैं तो उनके पास बहुत टाइम होता है स्कूल के लिए। अगर मान लीजिए कि उनको 8 बजे जाना है, तो यहाँ पे वो लोग 7:30 बजे उठते हैं, फिर भाग दौड़ करते हैं, फिर उनके पास फिटनेस के लिए टाइम नहीं होता। अगर वो जल्दी सो जाते हैं तो उनके पास 2 घंटा एडवांसली मिलता है, उस 2 घंटे के अंदर उनका होमवर्क भी हो जाएगा और उनके पास एक एक्स्ट्रा आवर्स भी बचेगा। उस एक एक्स्ट्रा आवर्स में उनके पास अगल बगल में जिम होता है, आजकल हर सोसाइटी में जिम्नाशियम्स होती है, इसका मतलब वजन उठाना नहीं होता है, कुछ एक्टिविटी, थोड़ा वॉक पे चले गए, रनिंग पे चले गए, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, कुछ भी एक एक्टिविटी अगर कर लेंगे, उनका फिटनेस कहीं नहीं गया। एक की मतलब है कि उनके जल्दी सोने से सुबह उनको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है।
0: जी, जी.
1: लेट सोएंगे उसका कोई मतलब नहीं, वो कितना भी बड़ा होमवर्क क्यों ना हो उन्हें लेट कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बॉडी का जो अंदर का जो रिपेयरिंग जो होता है दैट हैपेंस ओनली बिटवीन रात का जो 11 से लेकर के
0: जी
1: सुबह का जो 2 बजे का जो टाइम का जो होता है, उस टाइम पर किसी को जागते नहीं रहना चाहिए। मुझे भी, आपको, बच्चों को, किसी को भी उस वक्त जागना नहीं चाहिए, उस वक्त सोना चाहिए ताकि उनका बॉडी अच्छा रहे, फिर जाकर के उनका फिटनेस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आप कुछ भी बोलो बच्चे करने लगता है।
0: जी जी
1: अगर आप बच्चा देरी से सो करके देरी से उठ के भागदौड़ करके करेगा और बोले कि आप शाम को फिटनेस करो, तो नहीं हो सकता है। बिकॉज वो उसके लिए उसका बॉडी

0: तैयार नहीं होगा, फिर हम जोर जबरदस्ती करेंगे, अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठेंगे तो अच्छे मन से सब कुछ कर पाएंगे, फिर उनमें एक ताकत आने लगती है, मुझे ये बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे ये बनना है, ये बनना है, उसमें चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, सोना बहुत जरूरी है, स्लीप पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर।
1: जी जी जी, बिल्कुल सही समय पर सोना। और आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है,
0: नहीं सोते बच्चे, मोबाइल
1: पूरी रात जग के पढ़ाई करते हैं।
0: घर में आजकल क्या हो गया, दो दो तीन तीन कमरे तो है, बच्चे अंदर डोर लॉक करके क्या कर रहे हैं नहीं मालूम।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: दिस इज व्हाट, घर के अंदर का डिसिप्लिन के ऊपर सब कुछ होता है।
1: जी जी डॉक्टर राज, आपने मार्शल आर्ट किया है, कराटे सीखा है, और देख के ये लग रहा है कि आप तो बहुत फिट हैं, लेकिन ये कहना आसान है, करना बड़ा कठिन होगा। आपने तो लंबी हमें लगता साधना की है, और बहुत सारे आपके वीडियोज देखे जिसमें आपने बहुत सारे करतब भी दिखाए हैं। हमें बताइए कि अमूमन जैसे घर में लड़कियां होती हैं तो हम कहते हैं कराटे सिखाओ, क्योंकि वो आगे चलकर अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, तो किन लोगों को ये मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, किन लोगों को नहीं सीखना चाहिए?
0: आप अगर महिलाओं की अगर बात करें, मार्शल आर्ट तो सबको सीखना चाहिए, अलग बात होता है, मार्शल आर्ट बहुत डिसिप्लिन्ड आर्ट होता है, बट बहुत मस्कुलिन एक्टिविटी औरतों को नहीं करना चाहिए। यानी कि कुदरत ने हमको दो नियम से भेजा हुआ है, एक है पुरुष प्रकृति और एक प्रकृति है, प्रकृति मतलब माता है यानी कि स्त्री है, और एक पुरुष है। सो क्या होता है कि भाई इट्स कुदरत ने बना के भेजा है मस्कुलिन एंड फेमिनाइन
1: डिफरेंस
0: वो है। तो औरतों को औरतों का ही एक्सरसाइजेस होते हैं, उनका एक वातावरण, उनका चलने का हर एक वो चीज बिल्कुल नया नाजुकता होता है, वही चीज मर्दों में कम मिलता है बिकॉज ऑफ मस्कुलिन होता है। तो इसके लिए मस्कुलिन प्रवृत्ति जो होती है, जो प्रोटेक्टर बनते हैं वो, कि भाई एक है तो उनका एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग करना, या फिर स्पोर्ट्स करना, फलाना, यानी ये पूरा एक चीज होती है। मगर आजकल वो जो 50% जो बोलता है ना, जो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, वो कानून बना दिया ऐसा, बट कुदरत ने नहीं बनाया, कुदरत ने औरत को औरत ही बनाया है, मर्दों को मर्द ही बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा औरतों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, उनका जो मसल्स, इतना कुदरत ने नहीं दिया है जितना मर्दों को दिया है,
1: ताकत भी नहीं दी है,
0: ताकत नहीं दिया, बिकॉज उनका अलग किस्म का ताकत है, मगर वो अलग तरीके का होता है। बट आजकल क्या हो गया कि बहुत ज्यादा लोग वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है, औरत 35 साल के बाद उनको वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डर ने मसल्स नहीं दिखाना है, ओके, वो चीज अलग, वो फील्ड है, वो स्पोर्टिव फील्ड होती है, वो फील्ड में जाने वाले फिर उसी में रहते हैं, वो ऐसे बन जाते हैं। एक औरत जो है, औरत का एक्टिविटी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है, उसका वो नया नाजुकता रहेगा, फिर आगे जाकर के बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा किक्स करेंगे, बहुत ज्यादा फाइट करेंगे, तो उसमें उनका चलने का चाल बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा, मेल का जो हॉर्मोन्स होता है वो उसमें आने लगते हैं। दैट मीन्स उनका देखो एक चाली उनका अलग पड़ जाती है, तो फिर वो उनका ड्रेसिंग अलग हो जाती है, फिर एक औरत से धीरे धीरे धीरे वो मर्द में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही मर्दों को औरतों का औरत जो एक्टिविटी करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है कि कुछ हार्मोन इंबैलेंस होता है। इसका मतलब वो एबनॉर्मल होते ऐसा नहीं है, रहेंगे सब कुछ ठीक ही रहेगा, बट मेरा सलाह, मैं मार्शल आर्ट अगर कर रहा हूं तो मेरे क्लासेस में मैं सेल्फ डिफेंस सिखाता हूं, उन्हें बहुत ज्यादा कराटे रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करवाता हूँ। औरतों के एक्सरसाइज जो होता है वही हम करवाते हैं, जो उनमें आगे जा करके उनमें कोई तकलीफ ना हो, उनका जो लोअर एरिया में कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनमें बॉडी का स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए, ना कि ये सबसे हम सोच समझ कर एक्सरसाइज करते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं बहुत अच्छा होना चाहिए कि वहां जाकर के सीखना जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि फिल्म देख लिया, किसी ने कुछ भी करवा दिया, कोई बहुत लेग स्प्लिट करवा दिया, और ये सब मस्कुलिन एक्टिविटी बहुत ज्यादा औरतों को नहीं करना चाहिए। बस एक बात है कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए अपना प्रोटेक्शन के लिए, मगर अच्छे तरीके से, यही मैंने वापस पानी पे आया, पानी लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, नींद लेंगे और श्वास अच्छे से लेंगे, फिर ये जो परिश्रम सिर्फ 4% से ज्यादा नहीं करेंगे तो उनको कभी भी सेल्फ डिफेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वो बहुत समझदार बन जाते हैं, वे कोई गलत रास्ते में जाएंगे ही नहीं। हो तो इसके लिए फॉर्मूला जो है ना हमारे, वो पकड़ के ही चलना है।
1: और ये बड़ी सही बात बताई कि अमूमन लड़कियों को ये बोला जाता है कि उनको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट सीख लेना चाहिए, जूडो कराटे में डाल देना चाहिए, तो ये सही बात बताई कि किन लोगों को चाहिए, जरूरत है, किन लोगों को नहीं जरूरत है। यहाँ पर एक बात जहन में आई है, वो ये कि डिप्रेशन और चिंता से परेशान हाल लोगों के लिए व्यायाम, फिटनेस के उपाय कितने कारगर होते हैं और किस तरह से?
0: देखिए, फिटनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हर एक के लिए, औरत मर्द का कोई इसमें भेद नहीं होता है। बच्चे वेलनेस मैनेजमेंट बोलते हैं कि उनका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, आजकल प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर है। हर एक को जो सोने से लेकर के उठने तक, अगर हम पानी एडजस्टमेंट कर लिया तो न्यूट्रिशनल

0: मैनेजमेंट आता है, तो न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, खाना खाने के बाद आपका नींद कैसा हो, नींद के बाद आपका ब्रेथ कैसा हो, ब्रेथ के बाद आपका परिश्रम कैसा हो। तो इसका मतलब क्या है कि फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता है।
1: जी जी
0: सिर्फ योगा ही काम नहीं आता, एरोबिक्स ही काम नहीं आता है, जुम्बा ही काम नहीं आता है। तो आपका वेलनेस मैंने आपका ब्रीथिंग, आपको पहले अपना शरीर को पहले समझो आप, आपका शरीर क्या बोलता है, इस वक्त आपका वजन क्या है। कोई कोई ऐसा है कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 100 किलो के ऊपर चले जाता है, उनका पोस्चर खराब हो जाता है, चलने में दिक्कत, घुटने में तकलीफ, ओके, फिर उसके बाद घर का जो बहुत माहौल कुछ सही नहीं होता है तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत सारे चीजों को मिला करके वहां पर तकलीफें शुरू होती है। तो इसके लिए अगर वो एक सही वेलनेस गुरु के अंडर पहुंच जाते हैं, अगर उनका सुबह अगर अच्छा हो जाती है, फिर रात तक वो सही रहेंगे, यानी कि उनका जो एक्सरसाइज में इतना कैलोरीज बर्न होना चाहिए
1: जी,
0: जितना आप कैलोरी खाते हो उतना कैलोरी आप सही तरीके से बर्न कर रहे हो, और आपका बॉडी अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हो, और आपका ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा है, आपका जो ब्रेन फंक्शन अगर सही है, आप ब्रेन को कितना ट्रेन कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स ऑल डिपेंड होता है कि आप सुबह का एक आधा एक घंटा दो घंटा आप कहाँ जाते हो, किधर आपका टाइम व्यतीत करते हो, और किसके साथ आप बैठते हो, क्या करते हो। जो आजकल गार्डन में जो एक्सरसाइज होता है, पूरा घूम के आते हैं सब, हरेक को सुबह जल्दी उठ करके एक 1.5-2 घंटा देना जरूरी होता है। फिर कुछ लोग दोपहर को एक्सरसाइज करते हैं, शाम को एक्सरसाइज करते हैं, नेसेसिटी नहीं होता है। आप सुबह का सिस्टम सेट करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, और कुछ 1.5 घंटा अपने लिए दे दो, फिर बाकी बचा 8 घंटा सोने का अगर छोड़ेंगे तो बाकी बचा 14 घंटा, 14 आवर्स आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कोई क्लेश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब सब कुछ आपका सुबह का 2 घंटे के ऊपर आधारित है।
1: तो वो 2 घंटे में कुछ टिप्स आप बता सकते हैं?
0: आपको अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर योग कर लेना चाहिए, एरोबिक्स होता है या जिम होता है, मतलब अच्छे इंस्ट्रक्टर्स होना जरूरी है, वो ट्रेंड होना जरूरी है कि आप मिलजुल के कैसे एक्सरसाइज, आप घर पे भी कर सकते हो, आजकल ऑनलाइन भी बहुत हो जाता है, हर वो चीज आपको मिल जाती है, सब कुछ है, मगर डिपेंड होता है आप कितना लेजी है। ये बोलते हैं कि नहीं आज टाइम नहीं, आज ऐसा हो रहा है, आपके पास बहाने बहुत है एक्सरसाइज नहीं करने के लिए, बहाने लाखों है।
1: जी बिल्कुल, टाइम नहीं है।
0: हाँ, टाइम नहीं होता है, बट आप टाइम निकाल सकते हैं, आपके पास कुदरत ने 24 घंटा दिया है, आप उसमें 7 से 8 घंटा सोने का निकाल देंगे, 16 घंटा आपके पास है, 16 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आप 8 घंटे से ज्यादा क्या काम करते हो, 9 घंटा 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होता है, फिर बाकी बचा 8 घंटा क्या कर रहे हो आप। तो यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हस्बैंड जल्दी जाते हैं, ओके, या फिर किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, रात को लेट आते हैं, या बच्चों का, या हर एक चीज को मैनेज करना औरत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी स्मार्टली खुद के लिए 2 घंटा निकाल के सब कुछ पॉसिबल है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं, 12-14 घंटे का काम है, तो उनके लिए बीच में भी समय होता है जहाँ पर वो छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं।
0: बहुत कुछ
1: डॉक्टर राज, हमें यहाँ बताइए कि बहुत कम उम्र की लड़कियों में आजकल PCOD की समस्या होती है, और उनकी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती, खान पान की दिक्कतें होती हैं, तो क्या फिटनेस का जो फंडा है आपका, इन जो एक्सरसाइजेज वगैरह, इन सबसे कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, किस तरह से, बताइए।
0: एक तो प्योरली रिलेटेड स्ट्रेस भी होता है, थोड़ा हेरिडिटी फैक्टर होता है उनपे, वार्षांगित जिसको बोलते हैं कि उनका मास है और उनका मास से आता है, तो ये बात तो है। पर आजकल का जो खाने पीने का जो तरीका जो है, खास करके बहनों में, औरतों में, तो ये थोड़ा सा एक गाँव की बात अलग है, बट सिटी में जो ज्यादा करके रहते हैं बाहर के खाने पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, और खास करके जो IT सेक्टर में जो महिलाएं काम करते हैं, या फिर जैसा कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम करते हैं, पूरा दिन बैठ के काम करते हैं
1: जी,
0: ओके, बैठा रहना एक इश्यू बनता है। और उसके अलावा भी अगर देखा जाएगा तो उनका जो नींद का पैटर्न सही नहीं होता है
1: जी,
0: बहुत लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं, और उसके अलावा बैठे रहते हैं और खाना कोई ढंग का नहीं खाते, ये रियलिटी है, ये एक रीजन है। और ऊपर से मोटापा, एक वेट जो उनका होना चाहिए, आपका वेट बहुत आसानी से माप सकते हैं कि 1 फुट होता है, 12 इंच होता है, तो 1 फुट का 12 किलो, ऐसा 5 फुट का है, औरत 5 और 5, 1 5 से 5, 2 5, 5, ज्यादा से ज्यादा 5-7 का हाइट के होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो एनीथिंग 55 kg to 70 kg का बीच में होना चाहिए किसी को भी, अभी आजकल 80-90 से ऊपर क्रॉस हो रहे हैं कुछ लोग, तो यही हिसाब से जब होता है तो एक ओवरवेट की वजह से फिर ये पूरा अंदर का सिस्टम बदलने लगता है। फिर भी उसका उपाय क्या होता है कि भाई सबसे पहले आप वेट कंट्रोल पर रखो, ब्रीथिंग अच्छे से करो, और खाना न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही तरीके से करो, और सही तरीके से योगा अभ्यास करेंगे, कभी भी PCOD का प्रॉब्लम नहीं आता है। ये रियलिटी है। और मेरे पास काफी

0: लोग ऐसे आते हैं तो उनका विद इन एक महीना डेढ़ महीने के अंदर अंदर उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बिकॉज सही तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं और सही उनको परीक्षण मिल जाता है। उनको मालूम है कि कितना पानी पीना चाहिए, कैसा श्वास लेना चाहिए, कितना नींद होना चाहिए, ये हर एक चीज उनको आइडिया होता है।
1: जी
0: सो दिस इज व्हाट इज, ये मैंने बोला ना कि 4+1=100 फॉर्मूला अगर सही तरीके से समझ जाएंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं है।
1: जी
0: तो हमने हमने पहले तो समझा था पानी का, समझ लेना। अब न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होता है, दैट इज अ भू तत्व, जल तत्व हो गया तो भू तत्व हो गया, और हमारे पास अभी भी 4 पॉइंट बाकी है, दैट इज अ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में देखना है, फिर आता है नींद का मैनेजमेंट देखना है, फिर ब्रेथ मैनेजमेंट देखना है, फिर लेबर मैनेजमेंट देखना है।
1: जी
0: तो दिस इज व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट इश्यू।
1: जी
0: तो अगर आप कोई भी आप प्रॉब्लम लो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये फॉर्मूला के अंदर है।
1: जी,
0: तो आप कुछ भी पूछो, आप फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप नींद कितना घंटा करते हो, तो नींद आप भले 8 घंटा करते होंगे लेकिन कब सोते हो? अब बोलते हैं कि रात को मैं 12-1 बजे सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, बाकी बचा नींद मैं दोपहर को कर लेती हूँ। नो, ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। रेस्ट ले सकते हो, नींद जो लेना है आपको 24 घंटे में एक ही बार लेना है, 24 आवर्स में एक ही बार आपको नींद करना है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इश्यू। तो नींद इज क्या है कि भाई 8 घंटे का नींद, 7 घंटा मिनिमम सोना है, 8 घंटा मैक्सिमम सोना है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं। उससे ऊपर मतलब क्या हो जाएगा कि आपसे नुकसान शुरू हो जाएगा। कम नींद भी तकलीफ देता है, ज्यादा नींद भी तकलीफ देता है।
1: जी,
0: सो मैटर इज वेरी सिंपल। तो आपका 4+1=100 में ये पांचों चीजों को मिलाना बहुत जरूरी है, वो परसेंटेज वाइज मिलाना जरूरी है। मैंने बोला 72%, 12%, 6%, 6% और 4%।
1: जी,
0: तब जाकर के 100% हम जी सकते हैं।
1: जी, तो आपने 5 तत्वों की बात की डॉक्टर साहब, आपने पानी का बोला कि वजन के हिसाब से इतना कैलकुलेट करना है, बाकी को कैसे कैलकुलेट?
0: मैंने बोला कि उसके बाद का बात आती है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट।
1: वो
0: पानी का बिल्कुल बगल में क्या है, देखिए 5 उंगली अगर आप देखते हो, किसी किसी का 6 उंगली होती है, अलग बात है, लेकिन कॉमनली 5 उंगली होती है। 5 उंगली अगर हथेली देखेंगे, सबसे अगर आप देखो तो छोटा उंगली आती है, छोटा उंगली दैट इज जल तत्व है, 5 तत्व का। सेकेंड आता है भू तत्व है, दैट इज भू तत्व इन द सेंस के लैंड रिलेटेड होता है, दैट मीन्स जंगल है, लैंड है, पूरा हो गया, यानी कि अर्थ, अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं उसको। उसके हिसाब से देखा जाओ, हमें सिर्फ 12% हमारे बॉडी में सिर्फ 12% खाना देना है, दैट मीन्स न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। हमारा शरीर के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, करीबन करीबन 70 न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है डेली की, रोज का, क्योंकि हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हाथ पांव हिलाते, मसल्स एक्टिविटी करते, वजन उठाते, इधर उधर घूमते हैं, हर एक के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ये जो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, खाना खाने से मिलती है। सनलाइट इज वन न्यूट्रिशन, पानी एक न्यूट्रिशन है, हवा भी एक न्यूट्रिशन है, उसके अलावा भी हमको 67 न्यूट्रिशन और देना है हमें। जिंक आता है, गोल्ड आता है, ठीक है, ये हर एक आयन आता है, प्रोटीन्स आते हैं, हर वो चीज, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के हर वो चीज हमको देना होता है। ये पूरा न्यूट्रिशन हम खाने में हमको मिलता है। वो खाना कैसे होना चाहिए, रॉ खाना होता है, कुकड होता है, फ्राइड होता है, इन चीजों में। तो पानी तो हम पी लिया है, सनलाइट तो हमको मिल लिया, बाकी जो चीजों को उसको डिवाइड करके हमें खाना, ये खाने का पद्धति हमको समझ में आना चाहिए। ये खाना हम सब एक साथ में मिलकर खा लेते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाके थाली ऑर्डर देते हो, उसके अंदर रॉ भी आता है, फ्राइड भी आता है, कुकड भी आता है,
1: जी,
0: सब
1: जी।
0: कुछ आ जाता, हम पूरा मिला देते। एक्चुअली खाना खाने का तरीका क्या है, आपको 3 खाना साथ में नहीं खाना चाहिए।
1: जी जी,
0: 3 खाना कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। कौन सा 3 खाना नहीं साथ में खाना चाहिए? कुकड, फ्राइड,
1: अच्छा,
0: और रॉ, यानी कि कच्चा, पका हुआ और फ्राई किया हुआ। ये तीनों को एक साथ में नहीं खाना चाहिए।
1: अच्छा,
0: ये अलग अलग खाना चाहिए। से आप जो भी रॉ खाते हो, वो रॉ जो होता है पेट में जाने के बाद वो 20-25 मिनट रहता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। आपका 20 मिनट में पेट खाली हो जाता है। बोलते ना पेट खाली है, तो पेट, अभी डॉक्टर बोलते ना कि ये दवाई लेने का, खाली पेट लेने का, या दवाई लेने का, यानी कि खाना खाने के बाद खाने का, पेट यहाँ पर होता है, पूरा पेट नहीं होता है। स्टमक तो इतना ही छोटा हमारा, एक मुट्ठी के बराबर स्टमक होता है, उसके अंदर एसिड्स होते हैं, जूसेस होते हैं। तो हम जो रॉ खाते हैं वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है। इसके लिए पहले आपको सैलड्स या फ्रूट्स या जो भी है, रॉ जो होता है, आप खाने के बाद फिर आधा घंटे के बाद आप कुक्ड या फ्राइड खा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: सो फ्राइड अगर आप खाते हैं तो उसका गुण अलग हो जाता है, और कुक्ड यानी कि बॉइल्ड जो खाते हैं उसका न्यूट्रिशन अलग हो जाता है। कुक्ड जो होता है उसका न्यूट्रिशन, और फ्राइड नेगेटिव न्यूट्रिशन, और रॉ जो ऑलरेडी वहां पे पड़ा है वो अभी वो काम कर रहा है, उससे पहले हमने सब तीनों मिला देंगे तो उसमें से जो हमको जो पॉजिटिव न्यूट्रिशन शरीर को चाहिए था वो हमें नहीं मिला वो।

0: कचरे में चले जाता है, गोडाउन में चले जाता है।
1: ओहो
0: ये गोडाउन की तरह हमारे शरीर में, दुनिया भर बहुत सारे गोडाउन है हमारे शरीर में। तो जो जाना चाहिए था, आंख के लिए जाना चाहिए था, नाक के लिए, कान के लिए, मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए, पूरा न्यूट्रिशन हमें दिया था जरूर, मगर पहुंचा गलत जगह पर, बिकॉज हमने सही तरीके से नहीं आया। यानी कि चिट्ठी तो लिखा हमने, मगर एड्रेस ही नहीं लिखा। तो क्या हो गया, इतना मेहनत करके चिट्ठी लिखा मगर आपने एड्रेस ठीक से नहीं
1: पहुंचा
0: लिया,
1: नहीं
0: तो पहुंचा ही नहीं। तो ये
1: बिल्कुल।
0: जो खाना जो हमको खाना है, सही तरीके से खाना है। और दूसरी बात है कि चबा के खाना है, खाना आधा घंटे तक खाना है आराम से। कोई भी चीज को आपको 15-20 बार चबाना जरूरी है, मुंह के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स होकर के अंदर जाएगा, तब जाकर के पूरा बॉडी काम करने लगेगा। नहीं तो आपको न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा नहीं है, तो माल फंक्शन करेगा बॉडी। जब माल फंक्शन बॉडी करेगा तो नेचुरली इरिटेटेड रहेंगे, गुस्सा करेंगे और लेथार्जिक रहेंगे, काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। काम तो किया
1: बिल्कुल
0: आपने, मगर वो मन से काम नहीं किया, उसको जो
1: जी
0: मार्क मिलना चाहिए था नहीं मिला। आपने पूरा मेहनत किया था, 99% आना जरूरी था, मगर मुश्किल में 72%, 50% आता है, क्योंकि आपको पूरे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, बिकॉज आपका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही नहीं था।
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: खाना आपको सही तरीके से खाना है, चबा के खाना है, सलाइवा के साथ मिक्स करके आपको खाना है। दैट मीन्स मैं दो चीज बोलता हूं कि आपको प्यास नहीं लगना चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए और नींद नहीं आना चाहिए। ये तीन चीज आपको नहीं आना चाहिए, अगर आता है दैट मीन्स आप बीमार है। तो एक मेरा जो आंसर आपको अटपटा लगा, नहीं
1: नहीं
0: लगा
1: नहीं
0: आपको?
1: अगर आपने नींद पूरी है तो नींद क्यों आएगी,
0: देखिए
1: लेकिन
0: बस यही तो बात है,
1: ये
0: आपको अगर
1: हाँ
0: आपको
1: भूख
0: नींद आ
1: वाली
0: रहा है,
1: बात।
0: आपको अगर भूख लग रही है, दैट
1: हाँ
0: मीन्स आपको खाना खाना जरूरी था, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट।
1: हाँ हाँ
0: आपको हर 3-4 घंटे में कुत्ते को तो एनर्जी देना था,
1: जी
0: आपने 3-4-5 घंटे तक कुछ खाए नहीं, तो नेचुरल आपको भूख लगेगी, फिर
1: बिल्कुल।
0: जाकर के आप हॉकिंग करेंगे, यानी कि ज्यादा खाएंगे और उल्टा सीधा खाएंगे, जो कुछ भी मिलता हो खा जाएंगे। अगर आपने कैलकुलेटेड तरीके से खाना खा लिया तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, बिकॉज आपको खाना देना जरूरी है। आप सोचेंगे मुझे भूख नहीं लगती इसके लिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, वो गलत होगा। शरीर मांग रहा है लेकिन कुछ कारणवश आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी भूख तो आपको लगेगा, शरीर को लग रहा है, मगर आपको ब्रेन में वो सिग्नल नहीं मिल रहा
1: जी जी
0: है,
1: जी
0: वो न्यूट्रिशन तो
1: तो
0: मांग रहा है वो तो। लेकिन इसके लिए बोलता भूख आपको नहीं लगना चाहिए, आपको खाना देना जरूरी है, प्यास नहीं लगना चाहिए, आपको हर आधा घंटे में पानी पीना जरूरी है,
1: बिल्कुल।
0: नींद नहीं आना चाहिए मगर आपको सोना जरूरी है। आप सो जाएंगे तो नींद नहीं आएगी आपको, नींद आना मतलब बीमारी है, क्योंकि आपको आंख जल रही है फिर भी ड्राइव कर रहे हो, आपको नींद आ रही है फिर भी आप पिक्चर देख रहे हो, नींद आ रही है आप फिर भी काम कर रहे हो, तो वो काम में एनर्जी नहीं रहेगी, वो 100% तो नहीं दे पाएंगे,
1: क्वालिटी नहीं
0: नहीं
1: मिलेगी
0: मिलेगी। इसके लिए आपको
1: बिल्कुल।
0: सोना जरूरी है, वो 8 घंटे अगर आपने सो लिया ना, पूरे दिन में नींद आपको आएगी नहीं। फिर आपने पूरा बाकी फॉर्मूला पूरा कर लिया तो आपको 8-9 बजे तो नींद, आप सो ही जाएंगे, नींद आना ही नहीं
1: जी
0: चाहिए आपको। तो ये हो गया आपका खाना, हो गया आपका नींद, 8 घंटा सोना जरूरी है। फिर आता है ब्रेथ लेने का तरीका होता है, श्वास आप कैसा लेते हो?
1: जी
0: ओके
1: गुण उसका
0: नाक,
1: बताइए
0: या
1: डॉक्टर
0: दैट
1: साहब।
0: इज
1: हाँ
0: व्हाट,
1: जी
0: श्वास लेने को आजकल हम श्वास लेते ही नहीं ठीक से, कुछ लोग श्वास लेने भूल जाते, उनको आइडिया नहीं कि वो श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, नहीं मालूम है। बिना श्वास का इंसान 1 मिनट भी जीना मुश्किल हो जाता है, आप पानी के बिना 2 महीना जी सकते हो।
1: तो कैसे फोकस करें
0: तो
1: कि
0: ये जो
1: सांस
0: श्वास
1: लेना।
0: लेने का फोकस कैसा होता है कि ये तो आपको बहुत सिंपल, जब हम पैदा होते हैं बच्चे को कोई सिखाया नहीं जाता है, बच्चा सही तरीके से श्वास लेता है जब पेट से बच्चा बाहर आता है, आप देखो तो उसका जब श्वास लेता है तो उसका पेट ऊपर आता है, आगे जा करके हमारा पेट श्वास लेता है तो पेट अंदर चले जाता है, हम पेट अंदर लेते हैं छाती को बाहर निकालते हैं श्वास लेने के लिए, पेट अंदर चले जाता है श्वास लेते हो, तो एक्चुअली गलत होता है। श्वास लेने का वो छोटा बच्चा आपको सिखाएगा, पेट से बाहर आया बच्चा है ना, वो सिखा देगा, उसको आप ऑब्जर्व करो, वो
1: जी
0: श्वास ले रहा है तो पेट उसका ऊपर हो रहा है।
1: खुलता है।
0: हाँ, तो हमको डीप ब्रीथिंग करना जरूरी, एक बार श्वास लेना शुरू करेंगे तो पूरा दुनिया समझ जाएगा इंसान। वो कैसा होता है कि श्वास जब लेते हो तो नाक से जाता है तो क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, आप एक एक क्वेश्चन मार्क हम छोटा सा लिखते हैं तो छोटा सा लिखते हैं ऐसा, वही चीज आप 1 फुट का क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो कैसा लिखते हो, एक ऐसा लिख कर एक क्वेश्चन मार्क हम ले लेते हैं। ऐसे हमको श्वास लेना है, 1 फुट का श्वास लेना है,
1: ओ
0: नाक से श्वास गया मस्तिष्क होकर के वो सीधा लंग्स तक पहुंचाना जरूरी है, ये हर श्वास यहां तक पहुंचना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, श्वास आधा इंच का लेते, 1 इंच का लेते, 2 इंच का लेते, हमको 12 इंच तक का श्वास खींचना है।
1: जी
0: हाँ, तब जाकर के हमको दुनिया समझ में आती है। अगर हम आधा श्वास लेते हैं तो हमको दुनिया या सामने के लोग या हम बच्चे भी समझ में नहीं आएंगे, हमारा माँ बाप भी हमको समझ में नहीं आएंगे, हमारा गुरु भी समझ में नहीं आएंगे
1: जी
0: और हमारा बॉस भी समझ में नहीं आएंगे और हमारा काम भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? हम श्वास अच्छे से नहीं लेते। आप अच्छे से श्वास लेके देखिए तो आपको हर वो चीज समझ में आ जाएगा, आप भी हैप्पी रहेंगे, अचानक आप में एक एनर्जी आने लगती है कि हाँ यार मुझे ये भी आता है, हाँ मुझे वो भी आता है, ये तो मैं बहुत और भी अच्छा कर सकता था। इसके लिए जो ट्रेनिंग में श्वास का क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
1: जी

0: श्वास लेना है और पूरा श्वास छोड़ना है। जितना आप इनहेल ले करते हो और उतना आपका ऑक्सीजन इंटेक होता है, उतना आपका ब्लड सेल्स एक्टिवेट होते हैं। जितना
1: जी
0: ब्लड सेल्स एक्टिवेट होता है उतना हमारा शरीर चुस्त रहेगा और मस्त रहेगा, कभी भी कोई बीमारी आपको आसपास में नहीं भटकेगा। इसके लिए बोलते हैं कि श्वास लेना क्रिया बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना चाहिए। सो द ब्रीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और श्वास को कुछ लोग रोकते हैं, श्वास को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, आप कुछ कंपटीशन कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, उस वक्त श्वास लेकर के 5 सेकंड रुक करके फिर श्वास छोड़ना होता है। आप कुछ काम कर रहे हो उस वक्त श्वास नाक से लेना है, नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है। जैसे हम
1: अच्छा
0: फूंक मारते हैं, जो नाक और मुंह से श्वास, थके हुए हैं तो नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है,
1: जी
0: लेना है सिर्फ नाक से और आराम से लेना है, ये कभी नहीं करना है।
1: अच्छा,
0: हाँ, जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं वो नहीं करना
1: वो तो
0: चाहिए,
1: बहुत सारे लोग ऐसे
0: नहीं करना चाहिए
1: उसमें
0: वो।
1: कर रहे
0: हाँ,
1: हैं।
0: परीक्षण जैसे कपालभाति हम करते हैं,
1: हाँ,
0: जो अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं, वो नोस्ट्रल क्लीन करने के लिए ठीक है,
1: लेकिन अमूमन नहीं
0: नहीं
1: लेना।
0: करना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग करना चाहिए। जानवर को कभी आपने देखे नहीं हो, वो भी हमारे साथ ही पैदा हुए, वो भी हमारे साथ ही जाएंगे, तो वो तो कभी अनुलोम विलोम नहीं करते, वो तो कभी कपालभाति नहीं करते, वो तो कभी योगा नहीं करते, फिर भी अच्छा जी लेते। तो मैटर ये बनता है, हम यानी ह्यूमंस थोड़ा एडवांस्ड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बट योगिक क्रिया इज अलग है। जब योग परीक्षक जो होते हैं वो सिखाते हैं, वो अलग चीज होते हैं, बिकॉज आपका सिस्टम और एनहांस कर देते हैं उसके अंदर, और आपको अच्छे से जीने का कला आ जाता है। इसके लिए अच्छे से इंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप सीखेंगे, आपको पूरा जिसके पास नॉलेज है उनके अंडर में सीखना जरूरी होता है, कुछ भी करना नहीं होता है। सो ब्रीथिंग इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, श्वास अच्छे से अंदर लेना है, श्वास अच्छे से आपको बाहर छोड़ना जरूरी है। तब जा करके 4 पॉइंट होता है, यानी कि आपको पानी पीने के लिए आना चाहिए, खाना खाना आना चाहिए, नींद सही तरीके से आना चाहिए,
1: सांस।
0: सांस अच्छे से लेने आना चाहिए, तो 4 हो गया, प्लस 1 परिश्रम, वो इज इक्वल टू करेंगे तो 100 साल की जिंदगी आपका सही है। और
1: अच्छा।
0: कोई चीज तो है ही नहीं है, कुदरत ने तो एक ही चीज बोला कि भाई आपको ये शरीर मैं दे रहा हूं एज ए बाड़े के तौर पर, मुझे इतना देना है आपको रिटर्न में। रिटर्न में क्या देना है? पानी, खाना, नींद, हवा और मेहनत। अब मेहनत कैसा करना है? मेहनत मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत परिश्रम, जो सिर्फ 4% देना है, 4% मेहनत देना है। तो 4% में क्या क्या आएगा? आप थोड़ा सा झुकेंगे, आपका जो कोणी, जो एल्बो जो होते हैं ना, ये कान से ऊपर जाना चाहिए कम से
1: अच्छा।
0: कम दिन में 100 बार, कोई भी हालत में। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई डब्बा ऊपर रख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे
1: सही।
0: हो, कहीं थोड़ा एक बार ऐसा कर लिया, एक बार ऐसा कर लिया,
1: ओ
0: हो गया, दो हो गया, फिर घर में
1: हाँ
0: थोड़ा अंगड़ाई लिया 2-3 बार,
1: हाँ
0: 5-6 काउंट में हो गया कभी हाथ, कोई भी कारण आपको उठाते रहना चाहिए, तो भी आपका शोल्डर अच्छा हो जाएगा। थोड़ा नेक को मोमेंटम देना है अच्छे से, एक बजे वो बजे देखना, ये बजे देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है,
1: जी
0: आपका C1 C2 या पर सर्वाइकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा इधर से कुछ गिरा उठा लिया, इधर से गिरा कुछ उठा लिया, या अगर जैसे झाड़ू पोछा कटका लगाते हैं हम घर में, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाता है। कुछ वजन उठा करके ऊपर रख दिया, कुछ ऊपर से लेके नीचे रख दिया, या आप थोड़ा सा चल लिए, हम 1 ही घंटा चलते हैं। सिर्फ चलना एक्सरसाइज नहीं, चलना तो एक इंग्रेडिएंट है। आप एक पाव भाजी बना रहे हैं, उसके अंदर 50 मसाला डाल रहे हैं, तो वॉक एक मसाला है, अभी भी 25 मसाला बाकी रहता है। तो उसमें एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग्स, उठक बैठक, वजन उठाना रखना, ये पूरा करना जरूरी है। इसके लिए कैलकुलेटेड एक्सरसाइज प्रोग्राम वेलनेस मैनेजमेंट में आता है कि कितना वजन उठाना चाहिए, कितना वजन रखना चाहिए, कैसा उठाना चाहिए, कैसा स्ट्रेचिंग करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, ये पूरा थोड़ा बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। कुछ माहौल बनता है, एरिया बनता है, इसके लिए एक जगह जाकर के सीखने से अच्छा लगता है। आप
1: बिल्कुल।
0: घर में भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, यानी कि 4% आपको मेहनत तो करना है, जैसे कुएं से पानी निकालना, पेड़ चढ़ना, ओके, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नारियल पानी पीना है तो फिर आप पेड़ भी चढ़ना जरूरी होता है,
1: क्या बात
0: ओके, नहीं
1: है।
0: तो आप पानी पीने के लायक ही नहीं है, क्योंकि
1: जी
0: कुदरत ये बोलता है। लेकिन
1: हाँ।
0: ऐसा नहीं कि हर कोई पेड़ तो नहीं चढ़ सकते हैं, टेक्निक तो हम तो आता नहीं है, फिर भी नारियल पानी तो पीना है, पीना है तो ठीक है, आप 1 किलो चल के आकर के फिर पानी पियो। आप गाड़ी पे आए, गाड़ी से नीचे उतरेंगे नहीं, बैठे बैठे अपना नारियल पिया और निकल गया, तो वो कोई काम का नहीं हो, तो वो अंदर जाकर के गैस ही करेगा। तो इसका मतलब आप आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर साइकिलिंग करके आए, चल के आए, क्या एक नारियल पानी पीते हो, वो उसका काम करेगा।
1: फायदा है
0: दैट मीन्स
1: बिल्कुल।
0: क्या है कि मेहनत के सामने आपको उसका रिजल्ट आता है।
1: जी
0: आप
1: जी
0: मेहनत नहीं करेंगे फिर भी आप खाते जाएंगे, पीते जाएंगे, तो फिर आपको रिजल्ट आने वाला नहीं। इसके लिए मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 4 + 1 = 100, 100 साल की जिंदगी पूरा होता है। सो
1: जी
0: दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये अगर इंसान समझ गया तो कभी भी उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब 100 साल की जिंदगी की बात कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि वृद्धावस्था में भी युवा रहा जा सकता है, वो क्या नुस्खा है जरा बताइए, क्योंकि अभी तो कॉम्पिटिशन सा बना हुआ है कि हम कैसे लंबे समय तक युवा बने रहें। और देखने में तो सभी को लगता है कि आज तो सेल्फी का जमाना है, तो सभी चाहते हैं कि युवा बने, सेल्फी लें, तो बताइए ये जरा नुस्खे बताइए हमारे।
0: एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आपने मेरा तो एज तो आपने देख लिया। मैं ट्रेन में भी अगर आता हूँ तो मुझे सीनियर सिटीजन का दर्जा है
1: जी।
0: फिर भी मुझे अगर वो जगह मुझे मिली है तो 40-50 साल के जो होते हैं, जो वृद्धावस्था में दिखते हैं, वो हमारी तरफ देख करके गुस्सा करते हैं, आप इतने यंग है तो आप सीनियर सिटीजन में कैसे बैठे,
1: झूठ बोल रहे हैं।
0: ये हमने बहुत फेस किया हुआ है। तो रियलिटी है कि भाई आपको यंग एट हार्ट, एज इज जस्ट अ नंबर, वो एक नंबर होता है। आप इतने साल के हो, इतना साल पैदा होकर के मेरे इतना साल हो गया, मगर वो दिखना जरूरी नहीं। बुढ़ापा ए बीमारी बोलते हैं हम इसको, बुढ़ापा नहीं चाहिए हमें। उम्र भले उनका 90 साल क्यों ना हो, अब यू शुड लुक एंड यू शुड लिव यंग। वो कैसा पॉसिबल है, यही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसा है, आपको हर आधे घंटे में पानी पीना है। देखिए कितना भी आप मेरे को क्वेश्चन करेंगे, हम घूम फिर के वहीं पर ही आते हैं। तो अल्टीमेटली ये एक बात होती है कि पानी हर आधे घंटे में इंसान को पीना है
1: जी,
0: प्यास लगे या नहीं लगे, हर आधे घंटे में पानी पीना चाहिए। और खाना 3 साथ में नहीं खाना चाहिए, कौन सा, रॉ, कुक्ड और फ्राइड, ये तीनों एक साथ में नहीं खाना चाहिए। फिर आता है नींद, 24 घंटे में एक ही बार सोना चाहिए, रात को 9-10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो उसके बाद आपका पास 2-3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम होता है, उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही दुनिया का रिच इंसान बन जाएंगे आप हेल्थ वाइज और फाइनेंस वाइज, बिकॉज आपके पास एडवांस टाइम रहता है। मैं तो लेट उठ के भाग दौड़ करते हैं, उसके बाद पूरा दिन उनका बहुत खराब जाता है। इसके लिए जल्दी सोना का अगर प्रैक्टिस कर लिया, आप दिया तो 24 घंटा ही है, आप 12 बजे सोते हैं फिर लेट उठते, वो नहीं, आप वही चीज को जल्दी जल्दी करो, 2 घंटा एडवांस रहो, तो आपका वो सर्कल आप अच्छे से, यानी कि अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। नींद है आपका बेस है, पूंजी बोलते हैं उसको, FD बोलते हैं हम अपना भाषा में, नींद आपका FD है, उससे इंटरेस्ट मिलती है, उससे इंटरेस्ट से आपका 16 घंटा चलता है। अगर आपने अपना FD तोड़ दिया
1: जी,
0: मान लीजिए कि आपका नींद 1 लाख रुपया का है, तो आपका FD है, आपने उसमें से 50,000 खर्चा कर लिया, आपने उसका इंटरेस्ट जो आता है कम आता है, आपका 16 घंटा नहीं चलेगा, आप समझे ना। तो क्या होता है कि भाई FD को तोड़ना नहीं है, FD को फिक्स रखो आप, उसको और अच्छे से उसको एनहांस करो, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे हमें जीना है। तो हमको FD को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, तो ये जो स्लीप को ज्यादा छेड़ना नहीं हमें। 16 घंटा का हमारा जो पिरामिड बनता है, 8 घंटा हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस हेल्थ एंड उसका जो होता है ना, दैट इज अ स्लीप बनता है। वो जो 8 घंटे का स्लीप के ऊपर आपका पिरामिड बना हुआ है, दैट मीन्स 8 आवर्स का 16 घंटा डिवाइड होता है, जो वो जो 16 घंटा जो बैठा है आपका 8 घंटे का नींद पर। सो वो नींद आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये पिरामिड बहुत अच्छा बन जाता है। हेल्थ, हैप्पीनेस और होप बोलते हैं। आप सुबह उठेंगे, वो फुली उठेंगे, आप जैसे उठते हो तो आप कुदरत को शुक्रिया अदा बोलो उठाने के लिए। और 16 घंटा अगर आपका अच्छा गया है तो रात को वापस थैंक यू बोल के सो जाओ कि आज का दिन मेरा 16 घंटा बहुत अच्छे से गया। यानी कि इंसान को जीना है सिर्फ 16 घंटा, 8 घंटा आपको नींद पे निकालना है। तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है अपने को।
1: बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। और डॉक्टर राज, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी बातों से बहुत सारे लोग इस समय प्रेरित हो रहे होंगे, तो आपने कौन सी डिग्री हासिल की है? अगर हमारे श्रोता भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने को फिट फाट रखना चाहते हैं, तो क्या पढ़ाई करें और किस तरह से आए?
0: देखिए पढ़ाई तो नॉर्मल रूटीन में होता है कि कोई अनपढ़ भी होना जो भी वो फिटनेस एक्सपर्ट बन सकता है, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काम आता है।
1: लेकिन आपने PhD?
0: मैंने PhD किया अल्टरनेटिव मेडिसिन में, और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैंने वेलनेस में किया हुआ है, जो अपोलो हॉस्पिटल होता है वो ऑर्गेनाइज करता है। उसके अलावा भी हमने बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे जो कैंप्स होते हैं, जो 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, जो छोटे छोटे जो होते हैं, जो एक्सपर्ट से अंडर शारीरिक तौर पर किसी और का काम करते हैं, तो आपके पास वो आवड़त जिसको बोलते हैं ना, जो आपका वो आना जरूरी है, यू हैव टू बी एक्सपर्ट। तो इसके लिए हमको आयर जो हमसे ज्यादा नॉलेज वाले से आपको सीखना जरूरी होता है। फिर भी इसका डिग्रीज होते हैं, आपको जब वेलनेस होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, उनके उसके अलावा योग परीक्षण केंद्र होता है बहुत जगह पर है, जैसे बेंगलुरु में विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत जगह पर कॉलेजेस पूरा खुली हुई है, नेट में बहुत सारा मिल जाता है, इंटरनेशनल वेलनेस भी होता है
1: जी।
0: बहुत जगह पर वेलनेस में ट्रेनिंग में आना चाहते हो तो मिलता है आपको, यूनिवर्सिटी उसका डिग्रीज देती है, योगा डिग्री भी होता है
1: जी,
0: तो कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील
1: जी,
0: बट पैशन होना जरूरी है।
1: हाँ,
0: सिर्फ डिग्री होने से कुछ नहीं होता है, आपको पैशन होना जरूरी है। इसके लिए मैं अगर इस फील्ड में हूं तो

0: बचपन से हूँ, मैं 12 साल का था, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। तो आज
1: अच्छा।
0: मेरा 63 ईयर्स हूँ, आज की तारीख में भी मैं क्लासेस लेता हूँ। मेरा सूरत में क्लासेस चलती है, आयु फिटनेस वेलनेस मैनेजमेंट करके मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, WAYU। तो इसमें हमारा डेली रूटीन चलता है, उसके अलावा भी ऑनलाइन में भी मैं परीक्षण करता हूँ, तो हम एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये बात भी है।
1: जी तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो जुड़ना चाहेंगे आपसे जुड़ भी सकते हैं और ऐसी कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं। अब छोटे छोटे, बहुत संक्षेप में आप बताइए, कुछ छोटे सवाल छोटे जवाब।
0: जी,
1: तो हम सब तो आवास की दुनिया में काम करते हैं, तो जो आवास की दुनिया में काम करते हैं उनके लिए पानी कितना और कैसे पीना चाहिए, बहुत संक्षेप में
0: यह
1: बताइए।
0: जी, एक तो पहली बात, तो माइक्रोफोन जो होता है ये आपका मॉइस्चर को खींचता है, ये जो माइक्रोफोन, ओके। तो फिर नेचुरली आपके पास तो पानी होना जरूरी है, और पानी को डायरेक्ट नहीं पीना है, पानी मुंह में रखना है। रखने के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड रखने के बाद वो पानी को टिप्पा टिप्पा निकलना है, एक साथ
1: अच्छा।
0: में गल्प नहीं करना है,
1: ओ
0: और पॉइंट वाइज आपको निकलना है, यानी कि गला मॉइस्चर रखना है ऑल द टाइम। ये तो मॉइस्चर रखना है। दूसरा क्या होता है कि गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं हल्दी, और थोड़ा सा प्योर घी अथवा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा डाल के आपको गले में रखना है। रखने के बाद
1: ये
0: उसको पानी
1: पानी में या दूध में?
0: में,
1: ओके।
0: सिर्फ पानी में उसको रख के थोड़ा सा आप अंदर डालेंगे, तो क्या होता है कि आपका ये गला मॉइस्चर रहेगा, और वहां पे जो थोड़ा बहुत डैमेज होगा वो हील हो जाएगा। और उसके अलावा भी छोटी छोटी काम, और जैसे कि आकार का बोलना जरूरी होता है, दैट इज अ नॉर्मल रूटीन। आकार उकार मकार में आकार जो होता है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: अच्छा।
0: गल्प करते रहना चाहिए, बार बार आपको मुंह में सलाइवा लाना है, ऐसा टंग से मुंह में रोल करने के बाद मुंह में सलाइवा आता है,
1: ओके।
0: सलाइवा को गल्प करना चाहिए। गल्प करो, ये बिल्कुल मॉइस्चर हो जाएगा, वापस फ्री हो जाएगा आपका गला।
1: क्या बात है भाई। तो जो लोग वॉइसिंग डबिंग में काम करते
0: उनके लिए
1: हैं
0: बहुत
1: उनके
0: इंपॉर्टेंट
1: लिए ये
0: चीज
1: बड़ी
0: है
1: कारगर बात बताई।
0: जी।
1: तो ये आपने बताया कि अकार, तो अकार कितने सेकंड करना चाहिए और मकार क्या है, वो क्या
0: वो
1: बताया?
0: अकार उकार मकार से ओमकार बनी हुई है। ओमकार इज नॉट ओ एम, इट इज आ ओ मा, ये यू एम। अकार उकार मकार होता है, तो वो बोलने का तरीका होता है जब आप मकार डालते हो तो आपका जो टंग जो है ना ऊपर पैलेट पर टच होना चाहिए, बाकी कुदरत ने दिया हुआ साउंड है। आप अगर अंतरिक्ष का साउंड देखेंगे तो ओमकार ही आता है,
1: जी
0: बट
1: जी
0: वो ओम ओम नहीं है, वो यम नहीं, वो आ वो मा। आप बराबर कान डाल के सुनेंगे तो यही आवाज करेगा, यानी कि मुंह खुला उकार पे आ गया, मुंह बंद किया टंग ऊपर गया तो वो मकार पे आ जाता है।
1: जी
0: तो ये मकार इस कुंभक होता है।
1: अभी हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि बिना किसी महंगे उपकरण के जिम जाने के अलावा घर पे बैठे बैठे वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं हमारे
0: देखिए
1: श्रोता, बहुत संक्षेप में बताइए।
0: देखिए बहुत सिंपल है। कोई भी मिनरल वाटर बॉटल होता है, वो एक एक लीटर का दो, या उसमें पानी खाली करके उसके अंदर सैंड भर देने का होता है, 2 किलो का हो जाता है।
1: जी जी
0: अब सैंड भर देंगे, ऐसा 5-6 बॉटल रख देने का, 2 किलो का एक रखने का, 1 किलो का एक, आधा किलो का एक रखने का, कुछ नहीं, खाली उसको उठा करके नीचे रखना होता है,
1: उससे हाथ की एक्सरसाइज हो गई।
0: एक्सरसाइज हो जाती है।
1: जी
0: ओके, आप वो लेकर के उठक बैठक कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम ऐसा है, आप कोई भी यूट्यूब में या फिर कोई भी डाल दो तो आपको आप 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का एक्सरसाइज तो दिखाई देता है। फिर भी हर एक को पुशअप्स आना चाहिए, स्क्वाट करना आना चाहिए, अपराइजिंग यानी कि दोनों हाथ को सर के ऊपर लेकर के आसमान की तरफ अपने आप को खींचना चाहिए। दिन में
1: जी
0: 25-50 बार ऐसा करते रहेंगे, सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और रही शॉवर लेने की, लोगों को बहुत आदत है, शॉवर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप बैठ के नहाना चाहिए, बाल्टी से
1: बाल्टी
0: पानी
1: से।
0: लेकर के नहाना सबसे अच्छा होता है। खड़े खड़े जो नहाते हैं ना वो सही नहीं होता है, और रोज साबुन लगाने की जरूरत नहीं होती है।
1: जी जी
0: साबुन आपको वीक में एक या दो ही बार लगाना होता है, और सिर्फ हाथ में हथेली। लोग बहुत साबुन लगाते हैं, बहुत शैम्पू लगाते हैं, बहुत कंडीशनर लगाते हैं, नेसेसिटी नहीं होती है। स्किन का मॉइस्चर भी निकल जाता है उससे।
1: जी
0: बहुत ज्यादा क्रीम्स वगैरह जो लगाते हैं वो भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि वो खून चूस लेता है, यानी कि अंदर चले जाता है।
1: जी
0: तो जो कुछ भी हम खा सकते हैं, जो हम खाते हैं वो हमको स्किन में लगाना है। आप जो चीज नहीं खाते हैं वो स्किन में लगाएंगे, वो क्या होगा, वो सीधा पोर्स के अंदर जाकर के ब्लड के साथ अंदर जाकर इंटरफेयर करता है। तो
1: जी
0: ये पर छोटी छोटी बातें याद रखना जरूरी है।
1: और फिटनेस के जरिए क्या दर्द में भी राहत मिल सकती है? बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती
0: जी,
1: है
0: नी
1: तो।
0: का इश्यूज है बहुत लोगों को, एंकल का इश्यूज है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है। रिहेबिलिटेशन हम करते हैं जिनको, जो तकलीफ है, स्लीप एपनिया होता है या फिर अल्जाइमर होता है, या बहुत सारे ऐसे जो तकलीफ से ये करते हैं कि उनके लिए वो आते हैं तो एक्सरसाइज उनके हिसाब से होता है। सो बैठे बैठे पाँव को थोड़ा सा लंबा करना
1: जी
0: या फिर यू नो नेक का एक्सरसाइज करना, इन चीज़ों से बहुत उनको इजाज़त मिल जाती है। यानी
1: जी
0: कि सही तरीके से वेलनेस मैनेजमेंट में आते हैं, सीखते हैं, तो उनको 100% रिजल्ट मिलता है। मेरे पास दिन में 100 जन आते हैं।
1: जी

0: और सभी बाहर गांव से भी आते हैं, वो बहुत अच्छे होके जाते हैं। दो तीन चार दिन का उनका रूटीन होता है, एक दिन का रूटीन होता है, वही 2-3 घंटे भी आके सीख के जाते हैं, तो उनको रिजल्ट मिलता मिलता मिलता ही है।
1: जी
0: जी
1: बढ़िया बात, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, और बस एक लाइन में हमें जवाब दीजिए, वो ये कि 5 तत्व की आपने बात की, जहाँ वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, तो ये 5 तत्वों के माध्यम से आज की आधुनिक जीवन शैली में इनका कितना महत्व है और क्या संभव है ये?
0: नहीं, आधुनिक बोलिए या कोई भी एंशंट, यानी कि हम माँ तो माँ ही होती है, माँ का गर्भ से अगर आए तो इसमें आधुनिक भी नहीं चलता है या
1: जी
0: फिर ये भी नहीं चलता, माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही
1: बिल्कुल,
0: होते हैं। तो माँ तो ये बनता है कि आप कितना भी बड़े क्यों ना हो, आप 100 साल से ज्यादा नहीं जी सकते, ओके, आप उससे नीचे ही रहेंगे। बट हमें कुदरत ने हमको दिया है, तो एज ए चैलेंज आप उसको करके जाओ, नहीं तो हमको वापस आना पड़ेगा, ओके। फिर हमको अच्छा शरीर नहीं मिलेगा,
1: जी
0: कितना योनि पसार होने के बाद हमको ये शरीर मिला, अच्छा शरीर मिला है तो उसे अच्छे से जी के जाना है, अपने को दुनिया को कुछ दे के जाना है,
1: जी
0: समझा के जाना है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना है।
1: जी
0: हर दिन आप अच्छे से जी लो तो आपके पास सब कुछ मिल जाता है। तो रियलिटी ये है कि भाई आधुनिक या युग हो, कोई भी युग में आपको अच्छे जीने के लिए 5 तत्वों से अगर आए हैं, तो आपको 5 तत्वों का जो नियम है, कानून है, वो कानून के हिसाब से जीना पड़ेगा।
1: जी
0: दैट मीन्स हर आधे घंटे में पानी पीना है, हर 3-4 घंटे में खाना खाना है, 8 घंटे का नींद करना है,
1: जी
0: और 1 मिनट में 10 से 15 बार श्वास अंदर बाहर लेना है, और दिन में कम से कम आपको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक परिश्रम करना है, जिसमें आपको थोड़ा कैलोरी बर्न हो, दिन में 2-3 हजार कैलोरी बर्न हो जाए, उतना नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, कम से कम 800-900 कैलोरी बर्न करने की कोशिश करना चाहिए, जिंदगी अच्छे से निभा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर राज, आपने पूरे प्रोग्राम के दौरान इतनी बार पानी पीने के लिए कहा है और इतने सही तरीके से नींद प्रॉपर लेने के लिए कहा है, जो कि कम हो रही है नींद आजकल, और न्यूट्रिशन की ओर इतनी बार इशारा किया है, ध्यान देने को बोला है, तो हमारे श्रोता जरूर आज से सजग हो जाएंगे इस ओर। अब
0: थैंक
1: चलते
0: यू
1: चलते बताइए कि
0: जी
1: इसी में हम गाने को भी शामिल कर लेते,
0: जी
1: संगीत भी एक माध्यम है जिससे सुकून मिलता है, कौन सा गाना आपकी ओर से हम नजर करें अपने श्रोताओं
0: देखिए,
1: को?
0: इस वक्त मुझे क्या आ रहा है, तो मैं बोला अच्छा जिंदगी जीना है, तो फिर एक गाना जो मेरा फेवरेट है, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात गम छोड़ के, गाने में बहुत एनर्जी है, और आई थिंक ये हेलन जी उसमें डांस किया,
1: मस्ती से
0: कोई
1: जीने की बात
0: जीने की
1: कही
0: बात है, तो वो गाना मेरा फेवरेट है ऑल द टाइम, सो आई थिंक श्रोता भी बहुत एंजॉय करेंगे इसे।
1: जी, सुनते हैं।

0: तो डॉक्टर राज, बहुत सारी जानकारी दी आपने, आपका तहे दिल से शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
1: थैंक यू वेरी
0: नमस्कार।
1: मच कॉलिंग मी हियर एंड आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब अच्छे रहिए, ठीक रहिए एंड खुश रहिए, 100 साल जिंदगी पूरा कीजिए खुशी
0: क्या बात,
1: खुशी। थैंक
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: यू,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: ये थी वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ये विविध भारती।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच श्री नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा

0: व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकालेखां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान फिल्मकार गुरुदत्त को और महान गजल सम्राट जगजीत सिंह को।

0: ये आवाजें थी गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था आर पार। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर।
1: मेरी दुनिया, मेरी दुनिया।

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन ओपी नैयर की थी।

हेमंत कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कागज के फूल, फिल्म का गाना। गीतकार थे कैफी आजमी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

0: मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: और अब रवि का संगीत राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम भरोसा।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत श्री रामचंद्र का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बहू रानी।

फिल्म बहुरानी का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले की आवाज में, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम। इसे शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन हेमंत कुमार की है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एप से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल में अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, और ये फिल्म है अर्थ।

0: लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। यह ट्रांसफर उन्हीं विदेशी ताकतों की एक गहरी साजिश है। दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार ये इंडस्ट्रियलिस्ट
1: बेवकूफ पागल गधे, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊटपटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा।
2: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
0: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर। गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
1: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता है ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाल।
2: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
0: I'm sorry डैडी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था। मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
1: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली है।
2: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ। अब जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
1: करना क्या है, क्या हो सकता है? ओनी बड़ी बलवान है लाजो, और इंसान बहुत कमजोर।
0: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। आपको कुछ करना चाहिए।
2: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
1: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
0: कल से स्ट्राइक?
1: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
3: उसी रोज यानी 17 जून की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी, और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
1: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है। ये पहरावा कम है, दिखावा ज्यादा।
3: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही
4: मामी मामी।
2: पिताजी आप? बाप रे,
1: कौन?
2: मैं कोई नहीं।
1: कौन? लाजवंती? अरे उषा ही है क्या?
2: उषा? हाँ। नहीं
1: तो कौन घुसा है अभी घर में?
2: उषा।
1: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है, ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
2: ओ, ओ, किसे कोस रहे हैं?
1: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहरावा है?
2: ओ, ओ, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
1: बुलाओ उसे।
2: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
1: ओह हे भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता। विनय लौट आया कॉलेज से?
2: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
1: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
2: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
1: हौसला रखो लाजवंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा। विनय।
5: जी पिताजी।
1: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
5: इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
1: कैसा सवाल?
5: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
1: विनय,
5: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
1: खबर आज ही आई है।
5: आज ऑर्डर आए हैं, आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
1: तुम्हारा मतलब क्या है?
5: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
1: ऑर्डर? ऑर्डर? ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये कोई मेरे हाथ की बात है?
5: पिताजी आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
1: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
5: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगे हुई है? सब कहेंगे आगे के पागलखाने में जा रहे हैं।
1: तू तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
5: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बताई देता हूं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
1: तुम
0: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
5: कैसे जा सकता हूँ, यहाँ मेरा करियर है।

0: एक अपना सोशल सर्कल है।
1: तुम्हारा सोशल सर्कल?
0: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क ही नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहाँ हॉस्टल में रह लूंगा।
1: क्या तू यहाँ हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा, खर्चा कौन देगा?
0: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
1: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूँ?
0: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
1: और मेरे इस घर बार के साथ इसके साथ नहीं रहोगे?
0: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगरे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वेलू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहां से वहां, वहां से यहां शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहां बर्बाद करते रहेंगे पिताजी?
1: मेरे साथ अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है।
2: हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूं? मेरी औलाद मुझे इस तरह, मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से।
3: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
0: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं? अम्मा मैं क्या बताऊं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा।
1: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहां से, जहां तुझे रहना रह ले। बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जहां रह सकता है रह ले।
3: ओहो, आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? आए राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बार उजड़ जाएगा।
0: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं न जाने क्या क्या कह गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
2: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूं? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूं और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूं।
0: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
2: हाँ, कर रहा हूं। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
4: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
5: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी जी, ये चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, एक कैश जमा करवाना है।
6: लंच के बाद आना।
5: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है?
6: तो फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
5: लेकिन जनाब, वक्त तो अभी भी है।
6: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
7: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए, चलो भाई, बड़े बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
6: हाँ, चलो, चलो, चलो।
5: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
6: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
7: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती
6: है। चलो चलो चलो चलो,
8: आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ, आओ भाई आओ।
7: नमस्कार बड़े बाबू जी।
6: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
9: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
8: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
7: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
6: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
8: कुछ ना कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
10: कितने चाय?
8: यही 4-5, और 4-5 प्लेट बढ़ेगी।
10: और पैसे?
9: ये ले, मैं देता हूँ।
6: अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता।
9: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, नहीं, एक ही बात है भैया, एक ही बात है। एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
6: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
7: चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
9: ले ले, ये ले 10 का नोट और लपक के ले आ जा।
8: मेरी राय में तो बड़े बाबू, सबसे पहले आपको कर्माकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाइयों?
7: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
9: मगर वो क्या कर सकता है?
7: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाइयों?
6: सही बात,
7: सही, सही, सही है,
6: सही, सही, सही, सही, सही, सही, सही।
9: अच्छा, तो फिर पहले मैं कर्माकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
8: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है कर्माकर साहब के लिए।
9: हाँ सो तो है,
6: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर। क्यों भाई?
7: बिल्कुल
8: सही बात,
6: बिल्कुल सही बात,
9: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
8: आज ही मिल लीजिए,
9: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
8: बिल्कुल ही, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत? अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचे उसके पास। क्यों भाई?
6: बिल्कुल ठीक बात है।
9: तो ठीक है, मैं आज ही कर्माकर साहब से मिल लेता हूँ।
4: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना कर्माकर साहब के पास।
11: मे आई कम इन सर?

0: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे आया?
1: सर आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
0: हाँ हाँ बोलो।
1: सर वो बात ये थी कि
2: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब के लिए,
3: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब के लिए।
4: सर आपको याद होगा जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
0: हाँ याद है।
4: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था सर।
0: याद है बरोबर।
4: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
0: बरोबर।
4: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
0: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। You have done a lot for me.
4: आपको सब कुछ याद है?
0: Of course.
4: अगर सचमुच अपने सारे कैरियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
0: बोलो बोलो क्या काम है?
4: सर आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
0: मालूम जरूर है पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाय गॉड ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
4: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
0: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
4: बेशक सर बेशक, आप रुकवा सकते हैं।
0: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
4: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर बच्चे तबाह हो जाएंगे। सर मैं
0: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
4: सर मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलो मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
4: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
0: क्यों,
4: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हुकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे हैं, और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ।
0: अच्छा।
4: जरा सोचिए करमारकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी सर।
0: ओ आई सी।
4: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए अब इस उम्र में कहां परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा सर।
0: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है। अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
4: आपकी नाल न गड़ी होगी ना सर वहाँ पर। फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
0: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल गड़ी वाली बात समझ नहीं आई।
4: नाल सर, वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड।
0: अच्छा, कभी देखा नहीं।
4: सर आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल वो जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में।
0: ओ आई सी।
4: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर।
0: कहाँ?
4: वो घर के आंगन में सर।
0: लोधी रोड के क्वार्टर में?
4: नो सर, पुरानी दिल्ली में।
0: ओ वो तो 10-12 मील होगा।
4: यस सर।
0: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हो?
4: ओह आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
0: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
4: सर है तो दिल्ली ना।
0: यस यू आर राइट।
4: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
0: हम रुकवा सकते हैं?
4: यस सर आप रुकवा सकते हैं।
0: ओके हम रुकवा देंगे।
4: थैंक यू सर।
0: नो नो नो नो, व्हाई थैंक मी, इट इज माय ड्यूटी।
4: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैं अब चलता हूँ।
0: ओके
4: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: मिस्टर शर्मा।
4: यस सर।
0: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा।
4: बस सर आप एक डीओ लिख दीजिए, ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए।
0: इज दैट ऑल?
4: यस सर।
0: ओके हम लिख देंगे।
4: थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ सर।
0: अच्छा बट लिसन।
4: यस सर।
0: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। यू नो भाई ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं।
4: सर आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है, शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीज नहीं किया जा सकता।
0: हाँ हाँ ये ठीक है।
4: थैंक यू सर।
0: अच्छा अच्छा,
4: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: पर मिस्टर शर्मा।
4: यस सर।
0: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं, भाई स्टाफ टैंक वही रहेगी ना।
4: सर आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना।
0: सुनो नालगढ़।

0: मेंशन कर दें?
1: नो नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर।
0: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
0: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा।
1: वो तो सर
0: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा। भाई तुम तो जानते ही हो, हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है। जैसे ऊपर का ऑर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा।
1: ओके सर,
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर,
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू।
2: प्लास्टिक की घास। श्रोताओं, आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीना नाथ। आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है जब फिल्मी पर्दे पर हम किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को किसी किरदार में ढलते देखते हैं तो हमारे मुंह से बरबस ही निकलता है कि ये किरदार इनके अलावा तो कोई निभा ही नहीं सकता था। लेकिन कोई किरदार किसी अभिनेता अभिनेत्री पर कैसा लगेगा या कहें कि किसी खास किरदार में कौन सा एक्टर ढल सकता है, ये पहचानना भी एक कला है और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्ट्रेस का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
2: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ आप?
3: नहीं, मैं बम्बई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
2: जी।
3: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उससे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
2: जी।
3: तो क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीजन से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बेलगाम में, वहाँ रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी, मणिरत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे, VCR पे। पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म देखने वाले से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वही फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहां से आई थिंक वो सीड हो गई थी। और वो फिर मैंने कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की, फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं तो अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी मैं जूनियर रेसिडेंट था।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था MGM हॉस्पिटल में, और मैं सोचता था कि मैं घर कब पहुंचूंगा, और फिर चलता रहा 1.5 साल। बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे नहीं करना है, तो मैंने आके मेरे मम्मी और पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, मुझे फिल्म्स में कुछ करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन। तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज्ड कि हाँ इसने 1.5 साल अपने दिए, एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है, तो फिर रहने दो।
2: तो गौतम जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया आप?
3: मेरी

0: कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
1: जी
0: और फिर मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है। तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं,
1: जी
0: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में,
1: हाँ
0: कोई पहचान नहीं थी। मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था। आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था, शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था। तो VT में जेवियर्स में जाता था और वहाँ अच्छा एक ग्रुप बन गया, हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए। वहाँ से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला। मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक पे भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहाँ से मेरी जर्नी, वहाँ फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा अभी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की, तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे।
1: अच्छा
0: हाँ, तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा, 1.5 साल मैंने काम किया उधर और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ, रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है। और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने 5 करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके। उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के
1: जी
0: बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
1: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगने, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप
0: मतलब
1: उनके पीछे
0: मेरा
1: लगे?
0: लक तब था, ये तो 2001-2002 की बात है, तब DVD हुआ करती थी, तो एक DVD लाइब्रेरी थी, बम्बई के एक इलाका है बांद्रा, और वहाँ का जो ओनर था DVD लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे, छगन भाई, तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था। तो मैंने बोला कि यार छगन भाई, जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहां और वो आए और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया। और वहां से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूं जो असिस्ट करना चाहता हूं, तो वो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर हो के तुम असिस्ट करना चाहते हो।
1: जी
0: बोला हाँ, अब मैंने छोड़ दिया मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके, वहां से शुरुआत हुई।
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर
0: हाँ
1: जाना, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया
0: हाँ
1: और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से
0: नहीं,
1: शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर का?
0: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता,
1: जी
0: जो बड़े डायरेक्टर है, रेड 1, रेड 2, आमिर, नो वन किल जैसे का
1: जी
0: के, वो एसोसिएट थे अनुराग के। और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख, कि तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि 4 या 5 6 AD होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा, ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है,
1: जी
0: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि 4-5 AD सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम मैं कंटिन्यूटी लिखता था
1: जी
0: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था, बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूं। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है।
1: जी
0: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है, तब मुझे समझा अच्छा देर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को। तो

0: अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई।
1: जी, तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे।
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भैया आप शुरू कर लो काम।
1: जी
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है,
1: जी
0: जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर, NSD, FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है। तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते हैं, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए, उसमें जो हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं, वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो। उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और
1: जी
0: लोगों को ऑडिशन करते हैं, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि
0: हाँ
1: कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट
0: हाँ
1: बैठेगा, और देन आप आगे लेके जाते हैं।
0: या
1: गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी
1: चलिए
0: बहुत पसंद है।
1: जी, सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकेंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं।
0: जी
1: कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और
1: हाँ
0: डायरेक्टर्स का अपना एक
1: डायरेक्टर्स,
0: नजरिया है।
1: हाँ। बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, ये विशाल भारद्वाज के
0: जी
1: साथ, हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा,
0: जी
1: वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल मौके भी
1: ऐसे
0: आते
1: भी
0: हैं।
1: कभी कभी होता है।
0: जी
1: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द फोर कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये चार जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
0: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट, आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा नाम आने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
1: देखो एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम

0: और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजिशन। एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
1: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं ये
0: हाँ,
1: तो प्रोसेस
0: ऐसे
1: ही है?
0: भी थे एक्टर्स। एक एक्टर है, 2-4 साल पहले मैंने उसके साथ 3-4 बार काम किया है, उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई मैंने फिल्म में असिस्ट किया
1: हाँ
0: और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए।
1: हाँ
0: तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
1: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
0: हाँ
1: एक अगर
0: बिल्कुल।
1: हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत
0: नहीं,
1: कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
0: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट, अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी, और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्की का पार्ट है
1: जी
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी, और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट
1: हाँ
0: 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए। तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये ट्राई भी नहीं करना है करके। बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्ढा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विथ कल्की।
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार के,
0: हाँ
1: हम जैसा
0: हाँ
1: कह रहे थे
0: हाँ
1: ऐसा लगता है वो ही उस किरदार को बहुत अच्छी
0: हाँ
1: तरह से निभा सकती हैं।
0: हाँ
1: तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी
0: बिल्कुल।
1: सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का,
1: हाँ,
0: साली खुशी आई थिंक।
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा, और उसने मना कर दिया, मान लीजिए उस एक्टर ने। फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम।
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है।

0: जी
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा, और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के।
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था। हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 months कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए। वो मैं, अनमोल आहूजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं, हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो। लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहां। आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया।
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम, आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे। बट वो था कि हम, बिकॉज शूट दिल्ली में था, तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड, राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे। काफी, मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो।
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे
1: हाँ,
0: हैं, और
1: और
0: पूरी
1: टाइम बहुत कम था।
0: जी। अगर सीक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये, अगर मुझे सही जानकारी है, तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है
1: मैंने सीजन 2 की थी, सीजन 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था।
0: जी। पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं, कुछ फर्क नहीं होता है। ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल, जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं, उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो,
0: जी
1: तो वहां अलग एक्टर्स होते हैं। जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है। कर पाते हैं इवेंचुअली, बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है। बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है।
0: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
1: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं।
0: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
1: नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है।
0: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो, तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
1: मैं
0: में फिट
1: कोशिश करता
0: बैठेगा?
1: हूं कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूं। क्या है, क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है,
0: हाँ
1: तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बिगनिंग में 1-2 बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो, या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो। बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने।
0: जी
1: तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
0: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में, तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी
1: हाँ,
0: और
1: और
0: उसके
1: फिर
0: बाद
1: एज एन
0: वो,
1: एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
0: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब
1: हाँ,
0: चीजें
1: ताकि
0: चलें।
1: जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
0: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है। फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं जिनके तीन चार सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है, वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं, तब टर्शरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो एक 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, क्राउड फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है। डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो।
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी उस तरह के लोग दिखने वाले, एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते ही हैं, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, कि अगर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है। फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता। फिर अगर एक स्ट्रांगर एक्टर ऑप्शन है, तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर,
0: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से वो,
1: हाँ, वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
0: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं, तो कहते हैं कि जब इस मीडियम में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है।
1: बट कभी कभी हो जाता है, जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं, तो वो नोटिस में आता है जो भी ज्यादा फिल्में देखते हैं। आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे, तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
0: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे थे,
1: हाँ, जान जाते हो, अरे यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
0: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
1: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर कोई असिस्ट करना

0: ना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है जो मुझे लगता है कि मेरे में थी, इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग बट देर इज एन इंस्टिंक्ट।
1: हाँ, मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा और उस तरह से आपको एक
0: हाँ,
1: अंदाजा।
0: वो होता ही है। मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके,
1: जी
0: और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
1: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिल लेते
0: हाँ,
1: हैं
0: जब
1: मिले।
0: भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है,
1: जी
0: सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे, या बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। इसीलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूं, आपके होम टाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहां ज्वाइन करो। एक्टिंग ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है, जेन्युइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है, वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉयट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, सीन दे देंगे, और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूं जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन।
1: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
0: हाँ, और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे,
1: हाँ
0: वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है बम्बई में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
1: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है, उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
0: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए, और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक कोई एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन, एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म
0: हाँ
1: से।
0: हाँ ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है, तो उस फिल्म से कोई गाना सुन लें?
0: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना।
1: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन लेते हैं।

0: ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: देखिए
0: तरह से
1: जैसे
0: आपने?
1: आप और काम करते जाते हैं, आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ, अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ। कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है, कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें, मिलके प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें। 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो, वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, या जिसके लिए भी। यही कहता हूं कि एक्टर्स को, कि अपने आप को विजिबल रखो।
0: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए।
1: कोशिश जारी रखिए, अगर आप अच्छे एक्टर हो, आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
0: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
1: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, टीआरपीज या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं, तो वो शायद उन्हें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें। उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते, उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा, जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं, वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो
0: जी
1: एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इंपॉर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर को NSD के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए,
0: जी
1: जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001 दो तीन से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब
1: तो
0: अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही अपनी
1: हाँ, वो
0: एक
1: पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूं कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा। बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट। तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूं जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए,
0: अपने रील्स या ऐसे अपना
1: हाँ
0: काम आगे
1: रील्स,
0: बढ़ाते
1: ह्यूमर,
0: रहें।
1: कुछ
0: जी
1: भी जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता, जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए। कहीं ना कहीं किसको वो

0: अफेक्ट होगा और वो आपको कांटेक्ट करेगा।
1: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा, और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
0: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा, घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे, जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली, तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में। बट मैंने ऐसे भी देखा, कोई दो तीन ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है कि वो एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
1: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं, और
0: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में, बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर, ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है।
1: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से।
0: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
1: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
0: देखो, सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
1: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है, उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
0: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं, अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है, वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
1: जी।
0: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके ऑफिस में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं।
1: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
0: चूज करते बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन।
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी वैसा नहीं
0: किया? आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कैपेबिलिटी। अगर आपको पता हो कि ये एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं बेसिकली। हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स है, इवन दो दोनों दिल्ली की हैं, बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था, बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों
1: अपने किरदार को पकड़ने के लिए, अच्छी तरह
0: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
1: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
0: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजन

0: को कास्ट करे, बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ फंडिंग इज वेरी डिफरेंट. तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेंस दिस वॉज डन.
1: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा, फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशक को कि हमें ये नहीं चाहिए?
0: एक बार हुआ था एक फिल्म में, अब मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है,
1: जी
0: मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था, और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट. लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था, वो भी कॉलेज में. और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई हैं कंपैरेटिवली, उतना साइज नहीं होता है लाइट्स का. तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन. फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया, बट नॉट टू इज एबिलिटी. फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में. लेकिन ये हुआ था, उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
1: जी
0: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी. ऐसे रॉक लो मत, या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है. बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
1: कोई बिना ट्रेनिंग के वो
0: बिना.
1: आए और
0: दो बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहां के दो बच्चे कास्ट किए थे. उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता.
1: तो वो आप कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड है
0: हाँ
1: उसी
0: वो
1: की।
0: गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो.
1: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
0: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है बट जहां जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता.
1: बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
0: हाँ मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है. अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए.
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे
0: नहीं,
1: बाद के लिए
0: पहले
1: छोड़?
0: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा.
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने
0: ये मैंने
1: डायरेक्शन तो आपने कहा।
0: हाँ वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी
1: अच्छा
0: तो घनचक्कर थी, 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था. फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई. फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की. मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा.
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
0: जिंदगी कैसी है बहेली,
1: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं, आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्ट्रेस के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, फिल्मों की किताब पढ़िए, फिल्म मेकिंग की किताब पढ़िए, एक्टिंग की किताब पढ़िए, कास्टिंग डायरेक्टर जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस, आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए, दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए आप।
2: हाँ, अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
2: जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत, संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब दीजिए इजाजत।

0: सुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
4: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
3: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
4: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
3: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला पुलिस कर्मियों से कथित बदसलूकी और जेएनयू मामले को लेकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। दूसरी ओर मतदाता सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस ने काला दिवस मनाते हुए भाजपा पर पलटवार किया है। रांची के बिरसा मुंडा

हवाई अड्डे पर 17 सितंबर से चला 24 दिवसीय विशेष यात्री सेवा अभियान आज संपन्न हो गया। विमानपत्तन निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सेवाएं देना था। हाल ही में यहां सस्ते खान पान, बच्चों के लिए किड्स जोन और स्थानीय कला के लिए अवसर आउटलेट शुरू किए गए हैं। सरायकेला खरसावां के चांडल थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया। 7-8 नकाबपोश अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान के मालिक सुरेश चौधरी के परिवार को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी लूट लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोहरदगा सदर अस्पताल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिनव सहाय ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी का इलाज संभव है और मनोचिकित्सक से परामर्श लेना पागलपन नहीं है। अस्पताल में यह परामर्श सेवा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। हजारीबाग उत्पाद विभाग और गया की संयुक्त टीम ने बिहार झारखंड सीमा पर दनवा ग्राम में वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और बियर जब्त की है। आगामी त्योहारों को देखते हुए हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सत्ती के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। सिमडेगा में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग का आज भव्य स्वागत किया गया। उपायुक्त कंचन सिंह ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना करते हुए हर संभव सुविधा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

की मासूम चाहतों में क्या कुछ किए जाते हैं हम, लिखते हैं तेरा नाम कभी कभी छुपाते हैं हम। दिल की बातों को कह पाना कहाँ आसान रहा, लिखने लगूं तो शब्द भी पड़ते हैं कम। जो कहना था तुमसे मिलकर हमें, वो जज्बात कागज में कहाँ समाएंगे। कभी मिलो जो ख्वाबों में तुम, हर वो बात तुम्हें बताएंगे।

मिली जो प्यार की पहली पाती, हुए मेरे पैर हवा अब। कभी उड़ती हूँ यहाँ, कभी उड़ती हूँ वहाँ, कदमों ने मेरे छू लिया जैसे आसमां। न होश खुद का न खबर जमाने की, कहने लगी सखियां मेरी हुई तो उस दीवाने की। इश्क मोहब्बत प्रेम की पींगे खेलने लगी हैं दिल से, अब राज ये छुपाना मुश्किल हुआ है इस दिल से।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। भेज तो दिया दिल का पैगाम उन्हें, न जाने क्या लिखा इस दिले नादान ने। अब घबराते हैं अरमान, डरते हैं खुदा जान उन्हें। प्रेम में नाराजगी न मिले कहीं अंजाम हमें। ये प्रेम की पाती लिखना कहाँ आसान रहा, जब तक न मिले जवाब उनका दिल रहे परेशान मेरा।

आया है खत तो देंगे जवाब भी हम, कैसे कह दें किसी अनजान से अपने दिल की ये बात हम। कहनी तो थी उनसे लाखों बातें दिल की, मगर किसी और से कहते वो बातें झुकती हैं शर्म से नजर। लिखा था मेरे सांवरिया ने, जानते हैं वो मेरे दिल की हर बात, लिखा सलाम छुपाए हैं उसमें ही दिल के सारे जज्बात।

हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हुए हैं। अब आइए शामिल होते हैं अपनी सायंकालीन सभा में।

आइए आज अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले अपने खास खास कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। शाम 5:30 बजे हमारे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी। कार्यक्रम के अंतर्गत रश्मि पांडे की वार्ता भी प्रसारित की जाएगी। विषय होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुनर के साथ बदलता भारत। शाम 6:30 बजे कृषक भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा खेतीबाड़ी, जिसके अंतर्गत समसामयिक विषय कृषि कार्य जो है उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही

वैज्ञानिक तकनीक से धान फसल का कीटों एवं रोगों से सुरक्षा विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार से की गई बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। शाम 7:15 बजे गीत गजलों का कार्यक्रम होगा स्वरांजलि। 7:45 बजे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा विज्ञान जगत, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से शाम 8 बजे से। विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा इंद्रधनुष 8:30 बजे से।

फिल्मी गीतों का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे रात्रि 10 बजे से। कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 10:30 से एक ही फिल्म के नगमे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम एक रंग के अंतर्गत। इस प्रकार हमारी सभा की समाप्ति होगी रोजाना की तरह रात्रि के 11:10 पर। यह थी रूपरेखा। आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले अपने खास खास कार्यक्रमों की।

अब आइए अनुप्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों एवं समाचारों की रूपरेखा हम आपको बता दें। शाम 6 बजे मुख्य प्रादेशिक समाचार, 7 बजे प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल हमारे श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हिंदी में समाचार 7:45, अंग्रेजी में समाचार 8:45, उर्दू में समाचार 9:15, हिंदी में समाचार 11:00, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और रोजाना की तरह एक बार फिर हम आपको विविध भारती के कार्यक्रमों की सेवा देंगे रात्रि 9:30 से। यह थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों एवं समाचारों की। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युवा वाणी।

0: युवानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जो हाँ श्रोताओं, आज के इस युवानी कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य, और इसी कार्यक्रम के कड़ी में हम आपको सुनाएंगे मिशन लाइफ कार्यक्रम का उद्देश्य, और सुप्रिया पांडे से लगी वार्ता भी हम आपको सुनाएंगे। विषय है सीखो और कमाओ योजना। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं सीखो और कमाओ योजना पर ली गई वार्ता। वार्ताकार हैं सुप्रिया पांडे।
1: हो और कमाओ, अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल सीखो और कमाओ योजना भारत सरकार की योजना है। इस योजना के माध्यम से परंपरागत व्यवसाय के क्षेत्र में अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि नई पीढ़ी परंपरागत व्यवसाय के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सके। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। यह योजना 23 सितंबर 2013 को अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

रोजगार एक प्रशिक्षण महानिदेशालय की रिपोर्टों के अनुसार भारत के अधिकांश श्रम बल में विपणन योग्य कौशल नहीं है जो समुचित रोजगार प्राप्त करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक बाधा है। हालांकि भारत में युवाओं की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन 10% भारतीय श्रमिक बलों, 8% अनौपचारिक तौर पर तथा 2% औपचारिक तौर पर ही व्यावसायिक कौशल प्राप्त किया है। लगभग 63% स्कूली छात्र कक्षा 10 तक आते आते विभिन्न चरणों पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। देश में लगभग 3.1 मिलियन व्यावसायिक प्रशिक्षण सीटें ही उपलब्ध हैं, जबकि 12.8 मिलियन व्यक्ति हर साल श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि इन प्रशिक्षण स्थलों के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले कुछ ही बच्चे उपलब्ध हो पाते हैं। इससे पता चलता है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले की एक बड़ी संख्या एक और अपनी रोजगार परखता में सुधार लाने के लिए कौशल तक पहुंच नहीं रखती है। वहीं 12.8 मिलियन नौकरियां उपलब्ध होती हैं। 2011 के आकलनों के अनुसार भारत में 21 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 244 मिलियन का कौशल अंतर है। सचेतर समिति की सिफारिशों के अनुसार देश उच्च विकास की अवस्था से गुजर रहा है। यह समय अल्प सुविधा प्राप्त लोगों को कौशल विकास एवं शिक्षा के माध्यम से नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करने का है। मुस्लिम समुदाय का विशाल तबका स्वरोजगार के क्रियाकलापों में लगा हुआ है। इसके अलावा एक उल्लेखनीय अनुपात विशेषकर महिलाएं वास्तव में गृह आधारित कार्य में लगी हुई हैं, जबकि इनमें से कुछ कार्मिक उन क्षेत्रों में लगे हुए हैं जिनमें विकास हुआ है। वही बहुत लोग उन व्यवसायों में लगे हुए हैं जिनका विकास स्थिर है। विकासोन्मुख क्षेत्रों में कामगारों की मदद करने के लिए एक नीति की जरूरत है, ताकि वे उस क्षेत्र में कार्य कर रही बाजारोन्मुख फर्मों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन सके। इसके लिए भारत को अपने कार्मिकों को ज्ञानी कार्मिक बनाने की जरूरत है जो बहुकौशल प्राप्त हों। इसके लिए अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के संबंध में कर्म समूह की सिफारिशों के मद्देनज़र अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का वित्त वर्ष 2013-14 से अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु एक नई 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना सीखो और कमाओ क्रियान्वित किया गया योजना है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के बेरोजगारी दर को कम करना, अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशलों का संरक्षण करना एवं उनका उन्नयन करना तथा उन्हें बाजार के साथ जोड़ना, मौजूदा कार्मिकों को रोजगार परकता के लिए बेहतर तथा उनका प्लेसमेंट सुनिश्चित करना और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना, हाशिया पर रह रहे अल्पसंख्यक के लिए आजीविका का बेहतर साधन पैदा करना तथा उन्हें मुख्य धारा में लाना, देश के लिए सशक्त मानव संसाधन तैयार करना। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आधुनिक परंपरागत व्यवसायों के अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का उनकी शैक्षणिक अर्हता, वर्तमान आर्थिक सम्मान एवं बाजार की संभाव्यता के आधार पर उन्नयन करना होगा, जिससे उन्हें एक उपयुक्त रोजगार मिल सके। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशलों हेतु विकास कार्यक्रम की शुरुआत करता है। NCBT द्वारा अनुमोदित इस पाठ्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अपनाए जा रहे बहुत से पारंपरिक कौशलों जैसे कढ़ाई, चिकनकारी, गरदोजी, पैचवर्क, रत्न एवं आभूषण, काष्ठ कार्य, चमड़े की वस्तुएं, कांस्य धातु कार्य, कांच के बर्तन, कालीन आदि शामिल हैं। इनके अलावा विशिष्टकर राज्य अथवा क्षेत्र में मांग एवं स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर शुरू किए जा सकते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन PIA के माध्यम से किया जाता है। कोई भी प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त पंजीकृत व्यावसायिक संस्थान जो कम से कम 3 वर्षों में कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन करता हो और जो स्थापित बाजार से संबंध हो तथा प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकार का कोई भी संस्थान, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान भी इसे क्रियान्वित कर सकती है। वैसा NGO जो विशेषकर अल्पसंख्यकों के सामाजिक कल्याण में संचालन एवं
संवर्धन में लगी हो। पात्रता, प्रशिक्षणार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी की आयु 14 से 35 वर्ष होनी चाहिए। इनकी न्यूनतम शिक्षा कम से कम 5वीं कक्षा तक होनी चाहिए। इस योजना के अधीन विहित अनुसार आरक्षित श्रेणियों के रिक्त रहने की स्थिति में ये रिक्त सीटें अनारक्षित समझी जाएंगी। यह योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत अधिसूचित 5 अल्पसंख्यक समुदायों तथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी के लाभ के लिए क्रियान्वित की गई है। इस कार्यक्रम में 33% सीटें बालिकाओं, महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। इस योजना के 2 संघटक हैं। पहला, आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण, और दूसरा, पारंपरिक व्यापार, शिल्पों, कला व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण। आधुनिक ट्रेडों के लिए 3 माह का प्रशिक्षण होगा। इस कार्यक्रम में सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण, बेसिक आईटी प्रशिक्षण तथा बेसिक अंग्रेजी प्रशिक्षण शामिल हैं। इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु यह है कि प्रशिक्षण से युवाओं को लाभकारी और सतत किस्म का रोजगार मिले। प्रशिक्षुकों को आधार, यूआईडी संस्था अथवा अल्प किसी सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान से जोड़ना होगा। इस प्रशिक्षण में बाहरी प्रशिक्षणार्थी को आवासीय सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक समुदाय के निरक्तों के लिए 2.5% आरक्षण की सुविधा है। वित्त पोषण का स्वरूप, यह 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा पैनल में शामिल किए गए पात्र संगठनों के माध्यम से सीधे मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं की संपूर्ण लागत का वहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। परियोजना लागत का 5% प्रोत्साहन राशि उन PIE को देय होगी जो परियोजना को सफलतापूर्वक ससमय पूरा करते हों तथा प्लेसमेंट सहित सारी शर्तों को पूरा करते हैं। प्लेसमेंट से जुड़े संबंधित कौशल प्रशिक्षणार्थी जो बाह्य स्थान से आते हैं उन्हें 3 महीनों के लिए योजना आवास पर 1500 प्रति लाभुक तथा 750 वजीफा देने का प्रावधान है। गैर आवासियों के लिए स्थानीय 1500 वजीफा का प्रावधान है। पारंपरिक ट्रेडों के लिए गैर आवासीय 10,000 रुपये प्रतिमाह एवं आवासियों के लिए 13,000 रुपये प्रतिमाह लागत दी जाती है। परियोजना अनुमोदन पर विधियां 3 किस्तों में विमुक्त की जाती हैं, जिसका अनुपात 40:40:20 प्लस प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संगठन संस्थान को परियोजना में शामिल करने हेतु सरकारी वेबसाइट के माध्यम से पैनल हेतु विज्ञापन जारी करती है। विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरीदाता समिति द्वारा विचार किया जाता है। इस समिति में मंत्रालय से संबंधित समुचित योजना आयोग का प्रतिनिधि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार का प्रतिनिधि, मंत्रालय के निदेशन एवं योजना से संबंधित निदेशक होते हैं। प्लेसमेंट और प्लेसमेंट के पश्चात सहायता, चूँकि इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु सार्थक रोजगार प्रदान करना है इसलिए PIE को 75% अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट तथा कम से कम 50% का संगठित क्षेत्र में किया जाना चाहिए। PIA द्वारा रोजगार के प्रारंभिक महीनों में उन्हें स्थापित करने एवं उनका देख रेख करने में सहायता करनी पड़ती है। सीखो और कमाओ योजना संबंधी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। लाभार्थी द्वारा अनुदान का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। वह संस्थान जो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहती है उनको पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। प्रतिवर्ष संस्थान को लिखित जानकारी देनी होगी। इस योजना के अंतर्गत सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। संस्थान को राष्ट्रपति के पक्ष में 20 रुपये का नम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह जानकारी प्रदान करनी होगी कि इस योजना का दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है एवं अनुदान की राशि योजना के कार्यान्वयन में खर्च की जा रही है। यदि ऐसा नहीं है तो अनुदान की राशि सरकार को वापस करनी होगी। मंत्रालय परियोजना को चलाने के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया गया किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का भुगतान करने का जिम्मेवार नहीं होगा। अनुदान को किए जाने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित सभी खिंडों का निपटारा दिल्ली न्यायालय का होगा। संगठन द्वारा किसी भी धार्मिक, सांप्रदायिक, रूढ़िवादी या विभाजन सिद्धांतों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। संगठन द्वारा लाभार्थियों से किसी भी प्रकार का फीस नहीं लिया जाएगा।
अंततः हम यह कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो देश के सुसंगठित क्षेत्र के युवाओं का भविष्य निर्माण में महती भूमिका निभा सकता है।

सोच के साथ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को इस कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की गई, जिसमें ग्रामीण और शहरी दो भागों में इसे विभाजित कर इसकी शुरुआत की गई। इसका जो मुख्य क्षेत्र और उसके जो प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य है उस पर भी मैं आपको बता दें। श्रोता हूँ, सर्वप्रथम शौचालय निर्माण और ODF। जी हाँ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना, देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना और इस स्थिति को निरंतर बनाए रखना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ साथ कचरा प्रबंधन की हम बात कर ले तो इसमें नगर पालिका और ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन और पुनः चक्रण करना है। स्रोतों पर गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने को बढ़ावा देना है। स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर संबंधों के प्रति लोगों को जागरूक करना, न गंदगी करेंगे न करने देंगे की भावना के साथ नागरिकों की मानसिकता और आदतों में सकारात्मक सुधार लाना इस योजना की, इस मिशन की प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ हाथ में मैला उठाने की प्रथा का पूरी तरह उन्मूलन।

स्पष्ट है कि साफ सफाई को बढ़ावा देना और कचरा का प्रबंधन करना। तो श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि आप भी न गंदगी करें और न गंदगी करने दें, इस भावना के साथ अपनी आदतों में सुधार लाएं और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाएं। और अब आइए सुनते हैं इसी बात के साथ एक प्यारा सा गीत।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची सदर अस्पताल में 8 नमोजीवन रक्षक बाइक एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह एम्बुलेंस मरीजों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में मदद करेगी। फिलहाल रांची सदर अस्पताल को 7 और नागरमल मोदी सेवा सदन को 1 बाइक दी गई है। झारखंड सीआईडी ने राज्य से लापता 8 लोगों की देशव्यापी तलाश के लिए हु एंड क्राई नोटिस जारी की है। सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक द्वारा जारी इस आदेश के तहत लापता लोगों की तस्वीरें और विवरण दूसरे राज्यों की पुलिस को भेजे गए हैं। इनमें पाकुड़ के 6 दिन का नवजात बच्चा और वर्ष 2022 से 26 के बीच गायब हुए लोग शामिल हैं। रांची में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला पुलिसकर्मियों से कथित बदसलूकी

0: जेएनयू मामले को लेकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सरायकेला खरसावां के चांडल थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया। 7-8 नकाबपोश अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान के मालिक सुरेश चौधरी के परिवार को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी लूट लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुमला जिला में जल जीवन मिशन के तहत विलंब से चल रही पेयजलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के पदाधिकारी, अभियंता और संवेदक शामिल हुए। उप विकास आयुक्त ने दिसंबर 2026 तक सभी लंबित योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जय जवान जय किसान।
1: किसान माने कार्यक्रम सुनो या सब भाई और बहन मन कर और मन कर रेडियो संगे मनोज और
0: संध्या बटले
1: जोहार। और ये कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: तो मनोज भाई का हाल चाल है?
1: एकदम बढ़िया है संध्या बहन, हमारे कर खेती बाड़ी बढ़िया चलत है, और हम तो सरकार देने से बहुत सारे योजना मन के लिए ही उकर हमारे मन फायदा उठाती। रोरे कर का हाल चाल है?
0: हमरो हाल चाल एकदम नगद है मनोज भाई, और हमारे मन आसरा करेला कि सब किसान भाई बहन मन कर हाल चाल हो नगद हुई है। नहीं
1: सही बात है, और हमारे के बढ़िया रहे चाहिए, हमारे कर बड़ी जी सुवांग में बेस रहे तब नहीं हमारे मन बढ़िया से खेती बाड़ी करब।
0: खेती बाड़ी कर काम काज तो आजकल सालों भर हो वेला है। नहीं
1: तो संध्या बहन, हमारे मन के सरकारी योजना मन कर लाभ उठाए चाहिए, किसन का कहा थे?
0: हाँ भाई रौरे बेस बात कहली, सरकार बटले किसान भाई बहन मन लगीन कोनो कोनो योजना चलाल जायला, इसने एगो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इकर शुरुआत अगस्त 1998 में होए रहे। ई योजना कर उद्देश्य किसान भाई बहन मन के खेती पशुपालन और मछली पालन लगीन बेरा से और किफायती ऋण उपलब्ध करवाए है। ई योजना कर लाभ ई होवेला कि जे किसान भाई बहन मन समय से ऋण के चुकाए देवे ना, उ मन के 4% हर बरिस कर प्रभावी ब्याज दर में ऋण भेटायला। यानी कहब कि 2% ब्याज सब्सिडी और 3% जल्दी ऋण चुकाए के लगिन प्रोत्साहन कर संगे। योजना में अब ऋण सीमा के 5,00,000 तक बढ़ाए देवल जाए है।
1: सही बात कहलिए संध्या बहन, और देखो हमरे की योजना के बारे में जानकारी लेवे चाहिए, और योजना का जानकारी लेवे के लिए हमरे मन नजदीक के ब्लॉक स्तर पर चाहे बैंक शाखा में जाए के भी हमरे मन संपर्क करके योजना के बारे में लाभ ले सकेले और दूसर के बता सकेले है कि नहीं?
0: सही कहा थी रोरे जानीला, ई योजना में नी किसान मन के 2,00,000 तक कर ऋण बगैर कोनो जमानत कर भेटायला, और कोनो कोनो प्रावधान कर तहत इकर सीमा 3,00,000 रुपया हो है। और सबसे बेस्ट बात किसान क्रेडिट कार्ड जे मन ठीना है नी, उ मन के दुर्घटना बीमा तो भेंटाबे करेला,

0: मृत्यु या स्थायी विकलांगता उपरे 50,000 और दोसर कोनो जोखिम उपरे 25,000 रुपया भेटाय के प्रावधान है।
1: और संध्या भाई नेहो बता दू कि कर्म जे मूल रूप से जे कागजात हमने मन देवी लाए कर्म का का शामिल रहे ला
0: इके लेख लगिन मनोज भाई जरूरी दस्तावेज मन ई तरी है बेस तरी भरल आवेदन फार्म दुगो पासपोर्ट साइज फोटो जमीन मालिक हुए कर प्रमाण खेती कर विवरण तले पहचान और निवास प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड
1: तो इस सब लेके और हमरे की सब योजना का लाभ लेवे के चाहिए।
0: तो मनोज भाई अब हमरे मन कार्यक्रम के आगे बढ़े ला जानी ला आज हमरे मन का जानकारी कर है नी
1: तो सबसे पहले आज हमरे मन जानम रबी कर मौसम में दलहन और तिलहन फसल कर उन्नत प्रभेद कर चुनाव कर बारे में और हमरे के बतावे डॉक्टर नेहा राजन उकर बाद कृषि विकास गीत में सुनब वासुदेव महतो और संगीत कर और गीत खोटा भाषा में और नवा उम्र का नवा फसल में आज कर किसान है अंतर्यामी प्रधान जे की जैविक खेती करे न
0: सब में दलहन और तिलहन फसल कर उन्नत प्रभेद कर चुनाव हमरे का लिखे करब और उकर का स्रोत है नी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नेहा राजन और इनकर से गोठियात हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों नमस्कार, अभी रबी का मौसम आ रहा है और रबी के मौसम में हमारे किसान भाई दलहन और तिलहन की खेती लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि रबी मौसम में दलहन व तिलहन फसलों के उन्नत प्रभेदों का चुनाव कैसे करें और उनके क्या क्या स्रोत हैं इनके बारे में और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे प्रजनन कृषि विज्ञान केंद्र रांची डॉक्टर नेहा आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आप हमारे किसान भाइयों हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि झारखंड राज्य में कौन कौन सी प्रमुख दलहनी फसलों की खेती होती है।
3: अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अब जो समय आ गया है रबी सीजन चल रहा है रबी मौसम आने वाला है और इसकी बुआई का जो समय होता है सही समय की बात करें तो 15 अक्टूबर से इसकी बुआई शुरू हो जाती है और 30 नवंबर तक लगभग यहाँ पे हम लोग रबी फसलों की बुआई करते हैं और दलहनी और तिलहनी फसलों की बात की जाए तो झारखंड राज्य में बहुत अच्छी संभावनाएँ हैं इसको लेकर। अभी दलहन मिशन भी चल रहा है तो जो अगर झारखंड राज्य की बात करें तो लगभग 8 लाख हेक्टेयर जो जमीन है वहाँ पे दलहनी फसल की खेती की जाती है और उत्पादकता भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे दलहनी फसलों की 1069 kg पर हेक्टेयर उत्पादकता बोलते हैं यहाँ पे जो कि जो पूरे भारतवर्ष में उत्पादकता है उससे यहाँ की उत्पादकता अधिक है। और कौन कौन सी फसल ली जाए इसके लिए अभी जो मुख्य फसल है वो रबी की वो चना है मसूर है। इसके अलावा कुछ भागों में लोग दाल वाली मटर भी लगाते हैं खेसारी भी कुछ लगाते हैं। तो अगर तिलहनी फसल की बात की जाए तो जो मुख्य फसल है वो सरसों है और कहीं कहीं कुछ एरिया में तीसी भी लेते हैं लोग। तो ये कुछ मुख्य फसलें हैं जिनकी खेती की अच्छी संभावनाएं हैं यहाँ पे। और जो कुछ किसान ऐसे हैं जो लोग धान काटने के बाद इन फसलों को लगाते हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जो ताड़ जमीन जो खाली रह जाते हैं खरीफ में उनमें ये फसल लगाते हैं। तो दोनों समय के लिए किसान भाइयों को ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी किस्म का चयन करें। और जैसे जहाँ तक हम लोग बात करते हैं उन्नत किस्मों की तो उन्नत किस्म अधिक उपजशील वाली किस्में होती हैं अधिक उत्पादन देती हैं। तो ऐसे में या तो उन्नत किस्में या संकर किस्में दो तरह की किस्में आती हैं। लेकिन दलहनी फसल की अगर हम लोग बात करते हैं तो चना मसूर इसमें उस तरह की संकर किस्में अभी व्यावसायिक रूप से नहीं तैयार की जा रही हैं और सरसों में संकर और उन्नत दोनों तरह की किस्में आती हैं। तो उन्नत किस्में उस तरह की किस्में होती हैं जो अधिक उत्पादन भी देती हैं प्रतिरोधक क्षमता जिसमें अधिक होती है साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियां जैसे कि बाढ़ सूखा इस तरह से लड़ने की जो क्षमता होती है इन किस्मों में ज़्यादा होती हैं। तो किसान भाइयों से ये आग्रह होगा कि उन्नत प्रभेदों का और जो यहाँ इस राज्य के लिए अनुशंसित किस्में हैं उनका वो उपयोग करें तो उन्हें अच्छी उपज प्राप्त हो पाएगी।
2: जी आपने बताया चना के बारे में भी तो चना के उन्नत प्रभेद क्या हैं, इसको विस्तार से बताएं।

0: एवं कृषक बंधु इन किस्मों के प्रभेद कहाँ से क्रय कर सकते हैं?
1: जैसा कि अभी हमने बताया कि चना यहाँ की मुख्य दलहनी फसल है रबी सीजन में
0: जी।
1: तो चना की जो किस्में अभी लगाई जा रही हैं बहुत ही पॉपुलर किस्में हैं। अभी स्वर्ण लक्ष्मी एक वेराइटी है जो पटना ICR सेंटर से रिलीज हुई है 2023 में। ये काफ़ी अच्छी वेराइटी है और आजकल जैव संवर्धित किस्मों का प्रचलन बढ़ा हुआ है जिसमें जिंक और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। ये बहुत अच्छी किस्म है। इसका अगर स्रोत का बात करें तो ये कृषि विज्ञान केंद्र रांची या फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या फिर जो भारतीय बीज निगम है वहाँ पर उपलब्ध होगा और इसका उत्पादन क्षमता 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ ही ये 118 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा जो किस्में हैं पूसा 30-43 ये भी एक अच्छी किस्म है। बिरसा चना 3 ये भी बहुत अच्छी किस्म है। KPG 59 एक पुरानी किस्म है लेकिन बहुत अच्छी उत्पादन देती है। और इसके अलावा GNG 2207 ये कुछ पॉपुलर किस्में हैं। अब इसमें ये बताना चाहूँगी किसान भाइयों को कि कुछ किस्में ऐसी हैं जो अगेती हैं जल्दी तैयार होती हैं, कुछ किस्में ऐसी हैं जो विलंब से बुआई के लिए भी उपयुक्त होती हैं। जैसे स्वर्ण लक्ष्मी की जो हमने बात की और KPG 59 ये दो ऐसी किस्में हैं जो विलंब से बुआई यानी कि धान काटने के बाद आप दो नंबर दोन में इसकी खेती कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और बिरसा चना 3 हो गया या पूसा 30-43 हो गया इन किस्मों की खेती आप अभी जब बुआई करें अक्टूबर नवंबर माह में तो उस समय इनकी बुआई करें तो ये अच्छा उत्पादन देंगी। और साथ ही ये बताना चाहूँगी किसान भाइयों को कि अगर हम लोग चने की खेती जल्दी लगाते हैं मतलब कि नवंबर माह में लगा लेते हैं तो बीमारियों से इनकी आप जैसे उकठा बीमारी बहुत इसमें ज़्यादा आती है तो उससे आप जो फसलें हैं उससे सुरक्षा मिलेगी जल्दी लगाने से। अगर लेट लगाएंगे विलंब से लगाएंगे तो उकठा बीमारी का प्रकोप बढ़ता है साथ में फली छेदक का प्रकोप बढ़ता है तो सही समय पर बुआई हो ये ज़्यादा मायने रखता है
0: जी। तो हमारे राज्य में रबी मौसम में तिलहनी फसलों की खेती की कितनी संभावना है?
1: तिलहनी फसल देखिए रबी मौसम में यहाँ पे चूंकि सिंचाई की कमी हो जाती है तो कुछ ऐसी फसलें ली जाएं जिसमें सिंचाई कम हो। वैसे में सरसों लगाना काफी यहाँ पे लाभकर हो जाता है और धान कटने के बाद लगाएं दो नंबर में या फिर जो दो तीन नंबर बोलते हैं उसमें भी आप उसकी खेती कर सकते हैं। तो तिलहनी फसल में सरसों या तीसी ये दोनों ही फसल आप ले सकते हैं। और सरसों में भी ये चीजें हैं कि अगेती किस्में कम अवधि की किस्में का चयन करें किसान भाई तो उन्हें ज्यादा बेनिफिट होगा और जैसे जैसे बुआई इसकी विलंब होगी वैसे वैसे इसके उत्पादन में कमी आएगी। तो कोशिश करें किसान भाई कि नवंबर माह के लास्ट तक करें तो बहुत अच्छी किस्म अभी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से निकली है बिरसा भाभा सरसों 1 ये बहुत अच्छी किस्म है 2020-2021 में इसकी निर्गत हुई है ये किस्म और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 18-20 क्विंटल है। अवधि बात की जाए तो 120 दिन की अवधि है और इसमें तेल की भी मात्रा अच्छी है 39% से लेकर 40% तक इसमें तेल की मात्रा है। साथ में अगर इसके अलावा किस्मों की बात करते हैं तो NRC HB 101 ये भी अच्छी किस्म है जो हमारे राज्य के लिए अनुशंसित है या पूसा 30 पूसा मस्टर्ड 30 ये बोलते हैं जो जीरो मस्टर्ड वेराइटी है इसमें जो ग्लाइकोसिनोलेट्स होता है जो काफ़ी नुकसान करता है हमारे हृदय को अगर तेल वैसे तेल खाते हैं तो ये उसमें मात्रा तो 2% से कम इरोसिक एसिड और ग्लाइकोसिनोलेट्स की मात्रा है तो पूसा मस्टर्ड 30 ले सकते हैं। साथ में अभी DRMR 150-35 ये एक अच्छी किस्म निर्गत हुई है तो इन किस्मों का चयन किसान भाई कर सकते हैं। और बीज का अगर इसका स्रोत का बात करें तो या कृषि आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं साथ में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में से ये बीज ले सकते हैं भारतीय बीज निगम से ये बीज ले सकते हैं और कुछ ऐसे दुकान जो कि लाइसेंस प्राप्त हों जिनके पास और अच्छी नोटिफाइड कंपनियों के बीज वो बेचते हों वैसे दुकान से भी आप ये बीज खरीद सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोग जब भी सरसों या दलहनी कोई भी बीज खरीदें तो कोशिश कीजिए कि प्रमाणित बीज ही खरीदें। प्रमाणित बीज रजिस्टर्ड सीड होता है तो इसकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी होगी साथ में गुणवत्ता अच्छी होगी तो किसान भाई अच्छे स्रोत से विश्वसनीय स्रोत से प्रमाणित बीज ही खरीदें
0: जी। अब आप बताएं तीसी के लिए अधिक उपज वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं और इनके विश्वसनीय स्रोत कौन कौन से हैं?
1: तीसी की बहुत अच्छी किस्म बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई है कुछ साल पहले, लगभग 2-3 साल पहले। तो दिव्या और एक प्रजाति आई है प्रियम। दिव्या एक ऐसी प्रजाति है जो सिंचित अवस्था में लगाई जाती है और जो बुआई का समय होगा वो अक्टूबर नवंबर का ही समय होगा। ये 125 दिन में लगभग तैयार हो जाती है और इसकी जो तेल की मात्रा है वो वही 40 से 42%

0: जिसका नाम हम लेना चाहेंगे वो है रुचि। ये कुछ किस्में हैं जिसका कि किसान भाई चयन कर सकते हैं और इसमें तेल की मात्रा अधिक होती है, साथ ही आपका उत्पादन क्षमता भी अच्छी होती है।
1: जी, तो दाल वाली मटर के उन्नत प्रभेद व उसके विश्वसनीय स्रोत के संबंध में हमारे किसान भाइयों को बता दें।
0: बहुत कम एरिया में दाल वाली मटर फसल यहाँ पे लगाई जाती है, ज़्यादातर किसान सब्जी मटर की खेती करते हैं, लेकिन जो भी किसान भाई दाल मटर की खेती करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी किस्म है दांतीवाड़ा मटर 1 VL42 और पूसा प्रभात। ये कुछ अच्छी किस्में हैं। स्वर्ण तृप्ति है, IPF 4-9, ये कुछ किस्में हैं। इनमें से जो जल्दी तैयार होने वाली किस्म है वो पूसा प्रभात है या दांतीवाड़ा मटर 1 बोल सकते हैं। ये किस्में जल्दी तैयार होती हैं, साथ ही ये किस्में चूर्णिल आसिता रोग से प्रतिरोधी किस्में होती हैं, अधिक उपजशील है, जिसमें 17-18 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता आप ले सकते हैं। और जहाँ पे सिंचाई की कमी है वहाँ एक दो सिंचाई जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ पे इन किस्मों को मटर की खेती या दाल वाली मटर हुई या फिर कोई भी दलहनी फसल आप ले सकते हैं जहाँ पे सिंचाई की सुविधा कम है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा राजन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को दलहन एवं तिलहन फसलों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: तो भाई बहन मैंने खन हमरे सुन ली कि रबी कर मौसम में हमरे के दलहन और तिलहन कर फसल कर जो उन्नत प्रभेद है इकर चुनाव हमरे मन के किसान करेक चाहिए। और सही बात है, किसान मन कौन चीज कर चुनाव करेक से पहले हमरे मन के जानकारी लेक चाहिए और जानकारी ले कर बाद ही हमरे मन के खेती बाड़ी मन करेक चाहिए। और संध्या बहन देखो हमरे मन तो गोठियाते रहो इकर बाद एकाठ हो और गीत मन सुनती तो बेस रह तलक।
3: हाँ सही कहते भाई, काले की जानकारी कर संगे संगे रिझरंग करे जरूरी है। और देखो कोनो काम काज करते करते गीत सुन लेनी थकान कर पते नहीं चले ला है नी। तो चलो सुनब हमरे मन एगो कृषि गीत खोरठा में वसुदेव महतो और संगी मन कर गावल।

0: तो भाई बहन ने खन हमारे गीत सुन ली वासुदेव महतो से, और गीत कर माध्यम से हमारे मन के संदेश भी भेटाते हैं, थाकल मन के हमारे मन के दूर भी कर लक है कि नहीं। और संध्या बहन आजकल हमारे मन जैविक खेती देने ध्यान देव थी और नवा नवा तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी, तो उसने आज एक ठो किसान से भेंट मुलाकात करवा थी और जे कि जैविक खेती करे ना और खेती कर माध्यम से बहुत नाम भी कमाते हैं।
1: हाँ भाई,
0: किसान है।
1: हाँ भाई, तो किसान भाई है अंतर्यामी प्रधान और इनकर से गोठियाए हैं मनोज कुमार भाई।
2: आज एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनका अधिकतर उत्पादन विदेशों में जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिनका 16 सदस्यीय संयुक्त परिवार है और पीढ़ियों से जैविक खेती कर रहे हैं। आज तक कभी भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया। इनके परिवार में सभी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं और सभी लोग मिलजुल कर जैविक खेती करते हैं। इनके और इनके परिवार को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। पारंपरिक और आधुनिक का मिश्रण करते हुए प्राकृतिक कीटनाशक और खाद तैयार करते हैं। खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन भी करते हैं, जो कि देसी रहता है। तो चले मिलते हैं एक सफल किसान से।
3: नमस्कार, मैं अंतर्यामी प्रधान, ग्राम मिलारावा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। परिक तरीके से और हमारे 5 पीढ़ी से वही खेती करते आ रहे हैं। आज तक हम लोग कोई रासायनिक खाद या दवाई का प्रयोग नहीं किए हैं खेती में, और रासायनिक खेती के साथ साथ हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। उसमें कुछ गाय पाले हैं, मुर्गा पाले हैं, बतख पाले हैं, और साथ साथ हम लोग ये हॉर्टिकल्चर में आम का पौधा भी लगाए हैं। और मेरे ख्याल से इसमें हमको जैविक खेती का बहुत ज्यादा प्रोग्रेस, लोग बाग प्रोग्रेसिव किसान बोलते रहते हैं, हम लोग कोई प्रोग्रेसिव किसान नहीं है, हम लोग परंपरागत खेती वाले पुराने किसान है,
0: पुराने जमाने के
3: किसान है। हम लोग कोई नया ऐसा नहीं किए हैं, पुराने खेती को जीवित रखे हैं। और उसका मेन कारण है कि हम लोग जैसे ही 1970 के बाद रासायनिक फील्ड में लोग उतरे तो हम लोग नहीं उतर पाए, मतलब हमारे दादाजी वगैरह लोग सब विरोध किए, इसमें जाना नहीं है, नहीं है, तो नहीं गए। तो उसके बाद हमारे पिताजी लोग भी नहीं गए, हम लोग भी नहीं गए, तो वही गौ पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन करके पूरा आजीविका चला रहे हैं। बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है और उसमें हम लोग भी साथ देते हैं, हमारे महिला वर्ग भी सब उसी में जुड़े हैं सारे जी। और मेरे ख्याल से हमको बढ़िया सा इनकम हो जाता है और खर्चा वर्चा काट कर हमको 1 एकड़ में 1,00,000 रुपए बच जाता है।
0: तो कितना जमीन होगा आपका?
3: हम लोग तो बहुत बड़ा परिवार है लेकिन 65 एकड़ में ऑर्गेनिक करते हैं। उसमें सारी चीजें हैं व्यवस्थित रूप से। अगर बंटवारा करते हैं तो 5-5, 7-7 एकड़ आता, लेकिन हम लोग अभी भी संयुक्त परिवार हैं। हम लोग संयुक्त परिवार का मेडल भी ले चुके हैं। किसी के पास 5 एकड़ भी जमीन है और वो इंटीग्रेटेड सिस्टम से जैविक खेती करे तो उसको कहीं पर जाने के लिए, रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो। और हमारे लड़के लोग, मेरे लड़के लोग सब जो पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, सभी खेती में जुड़े हैं।
0: खेती बाड़ी करते हुए भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं?
3: व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, सब खेती बाड़ी में जुड़ गए हैं। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन सब देखे कि इस ये खेती बाड़ी में सबसे बढ़िया माहौल मिल रहा है तो सब इसी में जुड़ गए हैं। तो मेरे जो लड़के लोग, मेरे भाई के लड़के लोग सब पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर भी है आपका ये,
0: लेकिन सब खेतीबाड़ी कर रहे हैं,
3: सब खेतीबाड़ी में जुड़ गए हैं और सिस्टम अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे सब्जी उत्पादन ये करना दुनिया। और उसके बाद हम लोग एक सिस्टम ये बनाए हैं कि किसान को कभी भी पैसे की जरूरत ना पड़े। जैसे आप सुबह उठे तो कोई भी संसार में ऐसा धंधा नहीं है कि आपको 100 रुपया या 200 या 500 रुपया दे सुबह उठेगी बिना मानसिक तनाव में, वो केवल गाय है। आप सुबह उठेंगे कि गाय सीधा आपको कैपेसिटी के अनुसार 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर देगी और उसको डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देंगे तो आपको 100 200 500 हो जाएगा जितना ज़्यादा दूध।

0: तो संसार में कोई भी ऐसा बिजनेस बताइए जो बिना टेंशन में आपको 100, 200, 500, 1000 रुपया दे। उसमें गाय एक है कि आप गाय पाले हैं तो सुबह उठते ही दूध निकालो, बाजार में बेच दो, जो 200-400 पैसा पा ये आपका खर्च निकल जाएगा। दूसरा आपका एक चीज है कि बिना खर्च में आप कैसे खेती कर सकते हैं, खर्च कम करना है आप, और खर्च कम करने के लिए आपको गोबर की जरूरत है, और गोबर डालेंगे तो जैविक खेती संभव है। और गाय जो है गोबर भी देती है, दूध भी देती है, मूत्र भी देती है, उसका मूत्र का दवाई, गोबर का खाद, ये दवाई बन जाते हैं, और गाय का जो दूध है वो तुरंत मार्केटिंग हो जाता है और ज़्यादा रेट में बिक जाता है। तो हमको जैसे ही ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, गौ और गाय का गोबर और मूत्र, तो आप उसका आराम से जैविक खेती के लिए आप आगे निकल सकते हैं। जैसे ही जैविक खेती आप करेंगे तो आपका मार्केटिंग के लिए, लोग बोलते हैं कि इसका मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
1: तो आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार सभी को भी। नमस्कार।
2: तो सही बात है, किसान भाई मन हमारे मन के जैविक खेती करे चाहिए, और जैविक खेती से करे से हमरे के बहुत फायदा है, और संगे संगे हमारे मन के जो उत्पादन भेटा ले नहीं उकर कीमत बहुत बगरा भेटा ले।
3: सही कहा थी, जैविक खेती से उपजल फसल स्वाद बहुत बेस रहे लोकर है नहीं।
2: किसान भाई बहन इकरे संग आइज कर किसान वानी कर बेरा सिरा थे।
4: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बताए देवीला कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
4: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर। तो किसान भाई बहन आई जिले बस इतने 200 दिन फिर बेटा तब तो रोड मन के रेडियो संगे मनोज और
3: संध्या के विदा देव जोहार।
5: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं और स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो चुके हैं। तो आइए सुनते हैं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है, सभी को मेरा नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज किस खेती बाड़ी कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे समसामयिक कृषि कार्य और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है वैज्ञानिक तकनीक से धान फसल का कीटों एवं रोगों से सुरक्षा। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार और आज की नसीहत में आप सुनेंगे अंतर्वर्ती खेती से लाभ और आज का मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए आइए जानते हैं समसामयिक कृषि कार्य। श्रोताओं, अच्छी पैदावार प्राप्त करना मौसम और फसल के अवस्था के अनुसार यह कृषि कार्य होता है और जब हम कृषि कार्य करते हैं तभी हम अच्छी पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ भी कृषि ही है। अक्टूबर माह में खरीफ फसल की कटाई, रबी फसलों की बुआई की तैयारी, सब्जियों की खेती के साथ साथ पशुपालन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और समय पर कृषि कार्य करने से ही उत्पादन बढ़ता है, हमारे किसान भाइयों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है। श्रोताओं, अक्टूबर माह में धान की फसल पकने लगती है, खेतों की नियमित निगरानी होनी चाहिए और जब धान की बलियां सुनहरी हो जाए तो दाने पक जाते हैं और जब कटाई

0: तभी करें जब बलिया जो है वो सुनहरी हो जाए। कटाई के पश्चात धान को अच्छे तरीके से सुखाकर सुरक्षित भंडार करें। फसल को वर्षा और नमी से बचाना आवश्यक हो जाता है। कीट एवं रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर अपने कृषि विशेषज्ञ से उचित सलाह लेकर उस पर नियंत्रण करें। बात हम करते हैं रबी फसल की, श्रोताओं, तो इसमें गेहूं, चना, मसूर, मटर और सरसों, इस प्रकार की जो प्रमुख फसलों की बुआई की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर खरपतवार को हटाना चाहिए। मिट्टी की जांच के आधार पर खाद और उर्वरक का उपयोग करना चाहिए और क्षेत्र के अनुकूल उन्नत और प्रमाणित बीजों का चयन करना आवश्यक हो जाता है। और साथ ही साथ रबी फसल में उचित समय पर बुआई करने से ही फसलों की वृद्धि और उत्पादन प्राप्त होता है। चना, मसूर, मटर और सरसों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है श्रोताओं, और इसकी बुआई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी और स्थानीय कृषि सलाह के अनुसार ही इसकी बुआई करना लाजिमी हो जाता है। दलहनी फसलों में बीजोपचार करने से बीज जनित रोगों का खतरा भी कम हो जाता है। फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है बनी रहने में काफी हद तक मदद मिल पाती है। वहीं सब्जियों की खेती की हम बात करें श्रोताओं, तो अक्टूबर माह में ही प्रायः स्थानीय जो भी जलवायु होती है उसके अनुसार आलू, फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर, मूली, पालक, धनिया जैसे सब्जियों की खेती की जा सकती है। ध्यान रखना श्रोताओं, स्थानीय जलवायु के अनुरूप ही हमें अपनी सब्जियों की बुआई करनी चाहिए। साथ ही साथ खेत में जल की जो निकासी की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, और जब भी आप बीजों का उपयोग करें तो गुणवत्तापूर्ण या गुणवत्ता युक्त ही बीजों का उपयोग करें, और जरूरत पड़ने पर सिंचाई जरूर करें। सब्जियों की नियमित रूप से देखभाल करें और समय पर इसकी तुड़ाई करें। जब श्रोताओं समय पर तुड़ाई होती है तो इससे आमदनी काफ़ी अच्छी और बेहतर प्राप्त हो जाती है। हर फसल में कीट, रोग, व्याधियां लगती ही हैं, तो इसलिए श्रोताओं इनसे बचने के लिए नियमित रूप से अपने फसलों का निरीक्षण करते रहें। खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। कीटों का प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञ से उचित सलाह लेकर उचित नियंत्रण विधि भी अपनाएं। कीटनाशकों का प्रयोग निर्धारित मात्रा में करें और आवश्यक सुरक्षा के उपाय जरूर करें। हालांकि श्रोताओं जैविक नियंत्रण विधि को अपनाने से काफी लाभ मिल पाता है। पशुपालन और जैविक खाद की हम बात करें श्रोताओं, तो इस समसामयिक कार्य में कृषि के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी जैसे कार्य भी जरूरी हो जाते हैं। पशुओं को संतुलित आहार, स्वच्छ पानी और साफ आवास देना आवश्यक है। इन सभी पशुओं का समय पर टीकाकरण भी करवाएं, और गोबर और कृषि के जो अवशेष बचे हैं श्रोताओं उनका जैविक खाद को तैयार करें और उसे खेतों में उसका छिड़काव करें, तो आप देखेंगे कि खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती चली जा रही है और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी श्रोताओं प्रायः कम होने लगता है, तो निश्चित रूप से फसल की लागत में कमी आ जाती है। वहीं श्रोताओं आधुनिक कृषि यंत्र, जल संरक्षण, ड्रिप सिंचाई और मौसम संबंधी जानकारी का भी लाभ लें। सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उसके सुविधाओं का भी लाभ लें। तो देखेंगे श्रोताओं कि इस प्रकार से जब हम अपने सभी समसामयिक कृषि कार्य को समय पर पूरा करते हैं तो फसल की उत्पादकता भी बढ़ती है, खेती की लागत भी कम करने में सहायता मिलती है, और साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से कृषि प्रणाली को अपनाने से जिसमें कि उचित फसल की प्रबंधन, पशुपालन और आधुनिक तकनीक को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आय बढ़ती है और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। तो श्रोताओं समसामयिक कृषि कार्यों को पालन करें और भरपूर फसल लें। तो श्रोताओं ये तो थी बातें समसामयिक कृषि कार्य, और आइए हम आपको सुनवाते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है वैज्ञानिक तकनीक से धान फसल का कीटों एवं रोगों से सुरक्षा। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: तो से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों कार्यक्रम के आरंभ में आज हम लोग बातें करेंगे धान में लगने वाले कीट और उसके प्रबंधन की, क्योंकि हम एक मुश्त पूंजी लगा चुके होते हैं।

0: धान के खेत में, और बहुत बार हम वैज्ञानिक तकनीकियाँ नहीं अपना पाते और कीट वगैरह का प्रबंधन नहीं करने के कारण भारी क्षति हो जाती है, लगाई गई पूंजी बर्बाद हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक तकनीकियाँ अपनाते हुए आप कीट और रोग का प्रबंधन करें, और किस प्रकार करें इससे संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए आज आपके साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय कृषि वैज्ञानिक सह कार्यालय प्रमुख डॉक्टर राजीव कुमार जी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों को बताया जाए कि अभी जो धान वगैरह जो हमारे किसान भाई लोग जो रोपा वगैरह कर रहे हैं, क्या क्या सावधानियां बरते हैं और रोग कौन कौन से उसमें लगते हैं, बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं, उसका बचाव कैसे करें।
1: हम सभी किसान भाई को यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कुछ किसान भाई तो धान का रोपाई कर लिए होंगे और कुछ का जो बिचड़ा तैयार हो गया है और वो रोपाई करने की स्थिति में है। तो जिन किसान भाई का बिचड़ा तैयार हो गया है और रोपाई नहीं किए हैं, उन किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो धान की पत्ती है, पत्ती पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और उनके पत्ती के ऊपर छोटा छोटा भूरे रंग का अगर धब्बा दिखाई देता है तो यह रोग है। और जो बीज स्थली है जहाँ पे बिचड़ा तैयार किए हैं वहाँ से वो जहाँ रोपाई कीजिएगा खेत में वहाँ तक वो चला जाएगा और धीरे धीरे जो है ना वो पत्ता को जो है वो नुकसान करता है, उससे जो है धान का बढ़वार जो है वो प्रभावित होता है। तो इसका रंग है जो भूरे रंग का होता है और जब आकार इसका जब बड़ा होता है तो लगभग गोलाकार जो है ना कई धब्बे पत्ते के ऊपर में दिखाई देंगे और पत्ता जो अंत में झुलस जाता है। तो झुलसने के बाद पौधे का बढ़वार प्रभावित होता है और अंत में उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो जो किसान भाई अगर बीज उपचार करके लगाए होंगे, जो कार्बेंडाजिम से हम लोग बीज उपचार करते हैं, अगर बीज उपचार करके लगाए होंगे उनके धान के जो पौधे हैं ना उस पर इस तरह का धब्बा दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो किसान भाई नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, तो वो जो है कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से बीज स्थली में ही उसका छिड़काव कर दें और जो रोपाई कर दिए हैं तो उस रोपे गए धान पे जो है इसका छिड़काव कर देने से जो यह रोग जो है आगे जो नहीं बढ़ेगा। दूसरा जो धान का प्रमुख रोग है वह झुलसा रोग है, जो पौधों पे जो है बाली निकलने का अवस्था में अक्सर दिखाई देता है और पत्ते पे ही नहीं, धान का बाली के नीचे का जो डंठल वाला भाग है वहाँ पर भी काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है और पत्ते के ऊपर में नाव के आकार का और यानी तो आँख के आकार का 1 सेंटीमीटर के आसपास का लंबाई का है ना धब्बा दिखाई देता है। और जब धब्बा बड़ा हो जाता है तो किनारे का भाग जो होता है भूरे रंग का दिखाई देता है और बीज का जो है वो राख के रंग का होता है। तो अगर जो बीज उपचार कर लिए हैं तो उनका जो है इससे बचाव हो जाता है, अगर नहीं किए हैं तो कार्बेंडाजिम का छिड़काव करके इस रोग का
0: निदान पा
1: प्रबंध
0: सकते हैं।
1: निदान पा सकते हैं। तीसरा जो प्रमुख रोग है जिसको आभासी कंठ हम लोग इंग्लिश में फॉल्स स्मट कहते हैं, जो धान है ना दूध के अवस्था में जब रहता है खास करके,
0: जी
1: तो वैसे अवस्था में जो छोटे छोटे शुरू में अंडाकार जो है ना धान के दाने के ऊपर में
0: जी जी
1: वो दिखाई देता है, जिसका जो शुरुआत में जो रंग होता है वो पीले रंग से संतरा के रंग का पीला दिखाई
0: अच्छा
1: देता है
0: अच्छा
1: और उसका धीरे धीरे आकार बढ़ जाता है तो गहरा हरा या जैतून हरा जिसको कह सकते हैं,
0: ऐसा हो जाएगा।
1: हाँ उस आकार में वो दिखाई देता है और धान के आकार से है ना 2 गुना से भी अधिक जो है उसका आकार बन जाता है और हवा के बहने पे ये छोटे छोटे मतलब पाउडर के रूप में दूसरे धान के ऊपर में चला जाता है और वहाँ पे भी संक्रमित कर देता है बीज को और फिर उस बीज को अगर अगले साल लगाएंगे तो पुनः यह बीमारी उसमें
0: आ
1: दिखाई
0: जाएगी।
1: देगा। तो धान जो दूध का अवस्था है वहाँ पे दाना बनने के जगह पे यह बीमारी दिखाई देगा। तो खास करके जो हाइब्रिड धान है उसका ये बहुत बड़े समस्या है। तो ऐसे में अगर उसका बचाव जो है बाली निकलने के पहले भी ये बीज उपचार करके लगाइए, बाली निकलने के

0: पहले फफूंदनाशक जो है या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 10 ग्राम 25 लीटर पानी में मिला के एक एकड़ में छिड़क सकते हैं। यानी दूसरा जो है टेबुकोनाजोल के साथ है ना ट्राइफ्लोक्साइस्ट्रोबिन आता है,
1: अच्छा
0: ये बहुत अच्छी दवा है और बहुत कारगर
1: कारगर
0: है, जो कि 4 ग्राम 10 लीटर पानी में अगर मिला करके हम लोग छिड़कते हैं
1: तो काफी
0: तो
1: कारगर
0: इस बीमारी से बहुत हद तक हम
1: निजात पा
0: निदान
1: सकते।
0: निजात पा जाते हैं। इसके अलावा वो सड़ने वाला एक बीमारी लगता है,
1: अच्छा
0: जब कल्ला निकलने का जो अवस्था होता है उस समय जो है ना इस बीमारी का प्रकोप हो जाता है, और जैसे जैसे पौधा का बढ़वार होता है तो पत्ते के ऊपर में भी है ना जिसको कि वे भी रंग का कहते हैं ऊपर नीचे तरंग टाइप का धब्बा दिखाई देता है,
1: अच्छा
0: उसका जो नीचे जो पानी से लगा हुआ भाग होता है
1: जी
0: वो सड़ जाता है। जब धान काटने का अवस्था आता है तो जब हम लोग हाथ से पकड़ते हैं
1: जी
0: तो बिना हसुआ लगाए हुए है ना वो मुट्ठी में आ जाता है,
1: ओ
0: तो उससे जो है भारी नुकसान होता है। तो उस तरह का अगर पहले आपके खेत में दिखाई दिए हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि बीज उपचार करके लगाएं, और ये जो टेबुकोनाजो और ट्राइफ्लोक्साइस्ट्रोबिन हम जो दवाई बता रहे हैं फफूंदनाशक है इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं
1: तो लाभ हो सकता है।
0: हाँ तो जो किनारे किनारे कल्ला निकलता है उसी समय से इसको स्प्रे करना होगा, 2 से 3 स्प्रे काफ़ी है, इससे जो है इसका प्रबंधन जो है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये जो 4 धान का प्रमुख रोग जो किसान भाई अपने खेत में भी देखते हैं उसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है, नहीं तो ये सीधे उत्पादन को प्रभावित करता है,
1: करता है जी।
0: उत्पादन जो है जितना
1: गिरावट
0: होना
1: लाता है।
0: चाहिए उतना नहीं हो पाता
1: जी
0: है।
1: अब बात कीट की आती है।
0: अब दूसरा जो है समस्या जो है कीट का है, तो कीट जो धान का फसल में शुरुआत से ही जब हम लोग धान लगाते हैं
1: जी
0: बिचरा तैयार करते हैं उस समय से लेके काटने का अवस्था तक में ये जो है हमको परेशान करता है। जैसे साढ़ा कीट है, किसान भाई साढ़ा कीट के नाम से ही इसको जानते भी हैं, तो धान का जो बढ़वार वाला बिंदु है उसमें ये प्रवेश कर जाता है और उसके भाग को नुकसान करता है, और उसका जो पत्ता जो गोल बीच वाला निकलता है
1: जी
0: तो प्याज के तरह
1: अच्छा
0: गोल निकलता है जो बीच में खाली रहता है,
1: अच्छा
0: ये इसका सबसे आसान
1: पहचान है।
0: तरीका है पहचानने का। और यह जब लगता है तो पूरा खेत का खेत जो है ना नुकसान कर
1: बर्बाद।
0: देता है बर्बाद कर देता है। तो किस्म का जैसे हमारे 36 का हम लोग चुनाव करते हैं, ललाट है राजेंद्र धान है, इस प्रभेद में इस कीट का प्रकोप जो है
1: कम दिखाई
0: कम
1: दे
0: देखा जाता है।
1: जी।
0: दूसरा जो किसान भाई बीज स्थली में उनका बिचरा है वो जो है फिप्रोनिल 0.3 G जो है 250 ग्राम 100 स्क्वायर मीटर में छिड़क देते हैं, उसके बाद उसको उखाड़ कर अगर खेत में रोपा भी कर देंगे तो इस कीट का जो है
1: प्रबंधन हो
0: प्रकोप
1: जाएगा
0: हो नहीं होगा।
1: जी।
0: लेकिन जो किसान भाई खेत में रोपा कर चुके हैं उनको जो है फिप्रोनिल जो दानेदार कीटनाशक है 10 किलोग्राम 1 एकड़ में उसको
1: छिड़कना ही
0: छिड़कना
1: है
0: चाहिए,
1: जी
0: तो इस कीट का जो है प्रबंधन हो जाएगा।
1: जी
0: अब किसान भाई अपना धान का स्थिति देख लें कि वो बीज स्थली में है या फिर रोपा कर चुके हैं
1: जी
0: तो उसका जो है प्रबंधन कर सकते हैं। उसी तरह से है तना छेदक है,
1: अच्छा
0: तना छेदक में जो है जो बीच का भाग है ना वो सूख जाता है, उसको अगर हम धान को ऊपर से खींचेंगे तो बाली आराम से खिंचा जाता है और धान का जो बाद बाकी पत्ता रहता है वो हरा रहता है,
1: अच्छा
0: तो ये तना छेदक का पहचान है। लेकिन अगर साढ़ा कीट के प्रबंधन के लिए जो है अगर बीज असली में अगर फिप्रोनिल का छिड़काव किए हैं या रोपाई के बाद फिप्रोनिल खेत में छिड़काव किए हैं तो इससे जो है तना छेदक का भी प्रबंधन हो जाता है, उसी
1: अच्छा
0: से
1: अच्छा
0: उसके लिए फिर अलग से देने का जरूरत नहीं
1: जरूरत नहीं
0: पड़ता
1: है
0: है।
1: जी।
0: उसके बाद जो है तीसरा जो है बकिया कीट किसान भाई जानते हैं जिसको कि बोलचाल में बाकी लगिया
1: अच्छा
0: किसान कहते हैं, जिसमें कि अक्सर पत्ता जो है ना
1: सफेद हो जाएगा
0: सफ़ेद हो जाता है,
1: जी जी
0: लगेगा कि पूरा कैंची से हम लोग पत्ता को ऊपर से काट दिए हैं।
1: अच्छा
0: ऊपर पहले जो साढ़ा कीट और तना छेदक के लिए हम लोग बताए हैं, अगर इसको हम लोग व्यवहार करते हैं तो उससे इस कीट का प्रकोप कम हो जाता है। दूसरा है कि जो देसी तरीका है ना, ये जूट का रस्सी को किरासन तेल में भिंगा करके अगर इसके ऊपर से भी पार करते हैं
1: अच्छा
0: तो जो उसके कटा हुआ पत्ता जो झूल ऊपरी भाग से
1: जो
0: चिपका
1: सफेद हो
0: हुआ
1: चुके
0: सफ़ेद हुआ है वो नीचे पानी में गिर जाएगा। और चूँकि किरासन तेल है ना, वो जब पानी में गिरेगा तो उसका पेस्ट तनाव टूट जाता है, उस पर
1: अच्छा
0: जो भी कीड़ा रहेगा वो नीचे डूब जाएगा, मर जाएगा। तो
1: अच्छा
0: ये
1: ये आपका एक नुस्खा, देसी
0: देसी
1: नुस्खा।
0: नुस्खा है जो
1: अच्छा
0: किसान भाई इसको बहुत आराम से अपना सकते हैं।
1: मतलब जूट को आप डुबा दीजिए
0: किरासन तेल
1: किरासन
0: में
1: तेल,
0: डुबा
1: ठीक है।
0: दीजिए और दो आदमी दोनों छोर को पकड़ के रस्सी को एक बार इधर से पार कीजिए,
1: अच्छा
0: एक बार
1: अच्छा
0: इधर से
1: उसको
0: पार
1: मतलब
0: कीजिए
1: टच करते हुए।
0: टच करते हुए। तो
1: अच्छा
0: उसे क्या हुआ ना
1: अच्छा
0: कि जो धागा लगेगा कि कुछ धागे से पत्ता लटका हुआ है तो उसमें कीड़ा रहता है, तो
1: अच्छा
0: वो जो है रस्सी जब उस पर अतिम आएगा तो वो नीचे पानी में गिरेगा,
1: अच्छा संपर्क में आना
0: संपर्क में
1: आएगा, गिर
0: गिरेगा
1: जाएगा
0: ही,
1: जी।
0: उसमें किरासन तेल टच करेगा, वो जब पानी में गिरेगा तो देखेंगे ना कि सात रंग में दिखाई देना लगेगा, पूरा उसका रंग जो हरा पीला लाल दिखाई
1: अच्छा
0: देगा। और उस पे जो है जब ये कीड़ा पत्ता वाला गिरता है तो डूब जाता है पानी में
1: अच्छा अच्छा
0: और फिर वो मर जाता है। तो ये
1: जी
0: देसी तरीका है, या नहीं तो जैसे ही इसका प्रकोप होता है तो इमिडाक्लोपीड है ना, जैसे शुरुआत हुआ उसका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं 1 ml 3 लीटर पानी में। और दूसरा जो देसी और उपाय है कि पंछी को बैठने के लिए खेत में देखते होंगे किसान भाई झाड़ी वगैरह
1: हाँ
0: लगा
1: लगा देते
0: देते
1: हैं
0: हैं,
1: जी।
0: तो पंछी जो है उस पे वो बैठता है और उस कीड़ा को जो है ना वो
1: खा
0: उड़ उड़
1: लेता
0: के
1: है
0: खा लेता है, तो इससे
1: अच्छा
0: भी एक प्रबंधन हो जाता है। और जब धान काटने के पहले के अवस्था में है ना किसान भाई के अपने खेत में देखते होंगे कि कहीं गोल गोल टाइप का बीच बीच में धान जो है सूख जाता है
1: अच्छा हाँ ऐसा
0: तक,
1: होता है जी।
0: हाँ और काटने का अवस्था में ही होता है, तो वो भूरा मधुआ है
1: अच्छा
0: जिसका भरवार जो है ना, जिस खेत में ज्यादा नाइट्रोजन का व्यवहार किसान
1: अच्छा
0: भाई करते हैं
1: वहीं पे
0: उसमें ज्यादा
1: ऐसा
0: होता है।
1: अच्छा
0: और इसका जो नीचे जो भाग होता है उस
1: जी।
0: पे देखेंगे तो ये कीड़ा जो है ना कभी ऊपर कभी नीचे आगे पीछे
1: करता रहेगा
0: करता रहता है। तो अगर हम आज देख रहे हैं कि थोड़ा सा पौधा को नुकसान किया है, फिर अगर हम उसको कल सुबह कर जाकर देखेंगे तो एक गोलाई में अच्छा बड़े एरिया को नुकसान कर दिया रहता है। तो इसका उपाय है कि जब लग जाए तो तुरंत धान का आप कटाई कर लीजिए।
1: अच्छा
0: दूसरा है कि जब कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो पत्ता के सिर्फ ऊपरी भाग में नहीं, नोजल को पत्ते के नीचे वाले भाग में भी ले जाइए ताकि वहाँ पे जो भी कीटनाशक है कीट है ना
1: उस पर
0: उसका
1: स्प्रे हो
0: प्रबंध
1: जाए।
0: है। तो कीटनाशक के रूप में फिप्रोनिल जो दानेदार शुरू में व्यवहार कर सकते हैं, अगर छिड़कना है तो 5 SC आता है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ये लगने के पहले का है, बचाव के रूप में हम लोग इसका कर सकते हैं। वैसे ही इमिडाक्लोपीड है 1 ml 3 लीटर पानी में व्यवहार कर सकते हैं। और
1: अच्छा
0: ये बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला कीट है, चूंकि देखते ही देखते पूरा खेत जो है ना वो लगेगा कि
1: आक्रमण कर लेता है
0: पूरा खेत है जल गया है, झुलस गया है।
1: हाँ।
0: और ऐसे स्थिति में कुछ भी जो है ना जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, उत्पादन प्रभावित होता है।
1: जी
0: कभी कभी जो है रस चूसक कीट भी है
1: अच्छा
0: जो पत्ते से, ये भी भूरा मधुआ भी रस चूसक ही है, और उसके अलावा भी रस चूसक कीट है जो पत्ते से हरे भाग से रस चूस लेता है,
1: अच्छा
0: जिससे जो उसका भोजन है चूंकि क्लोरोफिल रहता है और सूरज के प्रकाश के रोशनी में वो अपना भोजन बनाता है, तो वो भी प्रभावित होता है और किसी न किसी तरह उत्पादन को ये प्रभावित करता है।
1: इसके बचाव के लिए
0: इसके बचाव के लिए जो इमिडाक्लोपीड हम अभी दवाई बताए हैं 1 ml 3 लीटर पानी में, इसके अलावा जो है नीम का भी दवाई किसान भाई घर में भी बना सकते हैं और बाजार में भी उपलब्ध है, उसको 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के इसको छिड़कने से ये कीट का बचाव किया जा
1: आप कर
0: सकता
1: सकते
0: है।
1: हैं जी।
0: तो अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो फसल में लगने वाले कीट का और बीमारी का प्रबंधन करना अति आवश्यक हो जाता है।
1: जी हाँ किसान भाइयों, ये बातें हो रही थी धान फसल में प्रबंधन, जो मुख्य फसल है, और हमारे किसान भाई अभी इसी की खेती में मशगूल हैं, और जानकारियाँ आपके साथ साझा कर रहे थे, विस्तृत जानकारियाँ जो आपने प्राप्त की आपसे साझा कर रहे थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय कृषि वैज्ञानिक सह कार्यालय प्रधान डॉक्टर राजीव कुमार जी। सर, आप कार्यक्रम से जुड़े और धान की खेती में किस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन, कीट वगैरह के बारे में हमारे किसान भाई करें, इससे संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: जी हाँ श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे वैज्ञानिक तकनीक से धान फसल का कीटों एवं रोगों से सुरक्षा, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राजीव कुमार। और अब आइए जानते हैं आज की नसीहत में अंतर्वर्ती खेती से लाभ। जी हाँ श्रोताओ, अंतर्वर्ती खेती कृषि के काफी महत्वपूर्ण पद्धति है जिसमें एक ही खेत में मुख्य फसल के साथ साथ दो या दो से अधिक फसलें निश्चित कतारें में लगाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है भूमि, पानी, खाद और अन्य संसाधनों का उचित उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाना, जिससे कि हमारे किसान भाई की आय की बढ़ोतरी हो सके। और श्रोताओं, अंतर्वर्ती खेती में एक ही खेत में दो या अधिक फसलें उगाई जाती है, इससे खेत की खाली जगह का उपयोग होता है और प्रति इकाई भूमि से अधिक उत्पादन भी प्राप्त होता है। इस पद्धति से श्रोताओं मुख्य फसल के साथ दलहन, तिलहन या सब्जियों की खेती की जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं मक्का के साथ अरहर या सब्जी की खेती, तो एक से अधिक फसलों से आमदनी भी प्राप्त होती है। और यदि एक ही फसल का बाजार मूल्य कम हो तो दूसरी फसल से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, अंतर्वर्ती खेती भूमि, जल और पोषक तत्वों का एक बेहतर उपयोग करने वाली लाभकारी कृषि पद्धति है। इससे उत्पादन बढ़ाने, अतिरिक्त आय प्राप्त करने, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने और कृषि जोखिम को कम करने में अंतर्वर्ती

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
4: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
7: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
6: पिछले हफ्ते ही तो तुमने NSB कराई है।
7: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती।

0: चीरा नटा का मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए?
1: NSV कराने।
0: पुरुष नसबंदी यानी NSV की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देवघर में सैन्य संपर्क मेले और एम्स के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। चिकित्सा क्षेत्र में सेवा और समर्पण का किया आह्वान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में 8 अत्याधुनिक नमो जीवन रक्षक बाइक एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। मरीजों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में मिलेगी मदद। सीआईडी ने राज्य से लापता 8 लोगों की देशव्यापी तलाश के लिए जारी किया हु एंड ट्राई नोटिस। दूसरे राज्यों को भेजे गए तस्वीरें और विवरण। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कल से 13 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश, वज्रपात और आंधी की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और सिमडेगा में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। कप्तान सलीमा टेटे ने राज्य में हॉकी के बेहतर भविष्य की जताई उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज देवघर में सैन्य संपर्क मेले और एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के परिवारों के कल्याण के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता जताई। एम्स के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति ने मेडिकल छात्रों को डिग्रियां सौंपी और उनसे चिकित्सा क्षेत्र में सेवा, समर्पण और मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

0: किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची सदर अस्पताल में 8 नमो जीवन रक्षक बाइक एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह एम्बुलेंस मरीजों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में मदद करेगी। फिलहाल रांची सदर अस्पताल को 7 और नागरमल मोदी सेवा सदन को 1 बाइक दी गई। श्री सेठ ने कहा कि उनका प्रयास है कि जल्द ही हर एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सुविधा मुहैया करा दी जाए।
1: सेवा संकल्प अभियान के तहत आज ये नमो जीवन रक्षक बाइक और आज हमारी रक्षा शक्ति देश की जिसमें डीआरडीओ का बहुत बड़ा सेव, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, उसी का पाठ है ये नमो जीवन रक्षक बाइक। तो फर्स्ट फेज में सदर अस्पताल को 7 दे हैं, 1 दे हैं सेवा संकल्प।
0: महिला पुलिसकर्मियों से रांची में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला पुलिसकर्मियों से कथित बदसलूकी और जेएनयू मामले को लेकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
2: कहे या न कहे, सुरक्षा देना, जन माल की हानि न हो, ये देखना पुलिस का दायित्व बनता है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से कोई प्रदर्शन करना है, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, करना भी चाहिए, अपनी मांगे माननी भी चाहिए, लेकिन उसका तरीका है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हो रहा है।
0: दूसरी ओर मतदाता सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस ने काला दिवस मनाते हुए भाजपा पर पलटवार किया। मौके पर पार्टी नेता रमा खलखो ने आरोप लगाया कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ये हथकंडे अपना रही है।
3: भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो हैं, ये जो वोट छोड़ गद्दी छोड़कर जो देश में आज लोग निकल चुके हैं, आज आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर को आज जो तानाशाह की सरकार है पूरे तरह से बंद कर दी है, लेकिन आवाज को आप बंद नहीं कर सकते हैं। और ये ध्यान भटकाने वाली काम है कि आज हमने जो कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो, क्योंकि वो जो इस प्रकार से वोट की चोरी एसआर के माध्यम से हो रहा है उसको ये दिग्भ्रमित करने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर ये कर रहे हैं।
0: झारखंड सीआईडी ने राज्य से लापता 8 लोगों की देशव्यापी तलाश के लिए हु एंड क्राई नोटिस जारी किया है। सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक द्वारा जारी इस आदेश के तहत लापता लोगों की तस्वीरें और विवरण दूसरे राज्यों की पुलिस को भेजे गए हैं। इनमें पाकुड़ का 6 दिन का नवजात बच्चा और 2000 रामगढ़ के नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिवंगत माता रूपी सोरेन को कई गणमान्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व भूपेश बघेल, मंत्री योगेंद्र प्रसाद और सांसद पप्पू यादव समेत कई सांसदों, विधायकों और आईएएस अधिकारियों ने श्री सोरेन के पैतृक आवास पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए यह प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज की इस विशेष श्रृंखला का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से यह मानना रहा है कि स्थानीय संस्कृतियों का सम्मान ही देश की असली ताकत है।
4: भारत की एकता अखंडता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा।

0: बिना एकता हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी सशक्त नहीं कर पाएंगे।
1: प्रधानमंत्री के इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आत्मसात करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के लोग अलग अलग विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं चाईबासा से स्थानीय लोगों के अनुभव।
2: झारखंड में सरोल प्रकृति और नई शुरुआत का पर्व है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश बिल्कुल साफ है कि हम अपनी संस्कृति को बचाते हुए दूसरी संस्कृतियों से भी बहुत कुछ सीखें।
3: एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में पश्चिमी सिंहभूम की संस्कृति में सामूहिकता का बहुत महत्व है। अगर हम इस अपनी लोक कला, भाषा और परंपराओं को देश के दूसरे हिस्सों की संस्कृति से जोड़े तो हमारी स्थानीय पहचान भी मजबूत होगी और राष्ट्रीय एकता भी।
1: रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर 17 सितंबर से चला 24 दिवसीय विशेष यात्री सेवा अभियान आज संपन्न हो गया। विमानपत्तन निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सेवाएं देना था।
4: 24 दिनों का ये अभियान शुरू हुआ था 17 सितंबर से और आज उसका आखिरी पड़ाव है 10 अक्टूबर। इस 24 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम को निर्धारित किए गए थे और उस हर एक दिन के जो कि हमारे अतिथि कह लीजिए, उनको ध्यान में रखकर उनकी यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए इस 24 दिनों का कार्यक्रम रखा गया था।
1: सरायकेला खरसावा के चांडिल थाना क्षेत्र में हथियार बंद बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया। 7-8 नकाबपोश अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान के मालिक सुरेश चौधरी के परिवार को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी लूट लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कल से 13 अक्टूबर तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम की संभावित स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सिमडेगा में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन का आज भव्य स्वागत किया गया। कप्तान सलीमा टेटे ने जीत के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए राज्य में हॉकी के बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई।
5: हर एक प्लेयर को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करते हैं बट हमें और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और यही है कि हमें रूप से ही हमें कोचेज का सब कुछ का हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी स्टोर भी बन गया तो अभी हमारे प्लेयर को बस अपना जुनून दिखाना है, हमें और हॉकी खेलना है और हमें देखकर और सीख भी रहे होंगे कि हम उनके लिए मेडल ले गए।
1: मौके पर उपायुक्त कंचन सिंह ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना करते हुए हर संभव सुविधा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देवघर में सैन्य संपर्क मेले और एम्स के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। चिकित्सा क्षेत्र में सेवा और समर्पण का किया आह्वान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में 8 अत्याधुनिक नमो जीवन रक्षक बाइक एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। मरीजों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में मिलेगी मदद। सीआईडी ने राज्य से लापता 8 लोगों की देशव्यापी तलाश के लिए जारी किया हु एंड क्राई नोटिस। दूसरे राज्यों को भेजे गए तस्वीरें और विवरण। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कल से 13 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश, वज्रपात और आंधी की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और सिमडेगा में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। कप्तान सलीमा टेटे ने राज्य में हॉकी के बेहतर भविष्य की जताई उम्मीद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ना अच्छा होगा।
1: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
0: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
1: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
0: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भधारण

0: टीकाकरण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
1: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
1: जी हाँ, कानून भी यही कहता है। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
0: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
1: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
0: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
1: और लड़के की 21 वर्ष है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा से राष्ट्र सेवा तक के सफर की गिरिडीह में प्रशंसा की जा रही है। बनियाडी कोलियरी के श्रमिक नेता प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि मोदी सरकार में मजदूरों को अनेक लाभ मिले हैं।
2: जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से कोल इंडिया के मजदूरों के लिए काफी फायदा हुआ है। सर्वप्रथम पहले जो इंश्योरेंस था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, वो 40 लाख के करीब था, अब उसे बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया है। दूसरी बात है कि जो बच्चे 12 में 80-90% मार्क्स लाते हैं उस बच्चे के लिए कोचिंग की व्यवस्था, एवं अगर वो बच्चे IIT निकालते हैं, मेडिकल निकालते हैं, तो कोल इंडिया की ओर से ऐसे व्यवस्था की गई है कि उसकी सारी फीस सरकार देगी।
1: UPI में हुए बदलाव का गिरिडीह के व्यापारियों ने स्वागत किया है। व्यापारी संदीप डंगेज का कहना है कि UPI से छोटे व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं है।
3: सरकार ने ट्रांजेक्शन के लिए कुछ जो शुल्क लगाया है वो आम आदमी से कोई प्रभावित नहीं होगा, छोटे ट्रांजेक्शन पर नहीं लग रहा है, और लगभग 2000 के बाद ट्रांजेक्शन में, वो भी मर्चेंट के लिए, और इसकी भी जो दर है विश्व में और भी जो देश है उसकी तुलना में बहुत कम है, और देश हित में ये फैसला जरूरी था, इसलिए सरकार ने फैसला लिया, और आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये मर्चेंट के लिए है और ये 2000 से ज्यादा का है, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के जिंदगी में व्यापक बदलाव हुआ है। महिलाएं आवास पाकर बेहद खुश हैं और मोदी सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रही हैं।
4: सरकार दल के ताते बने लेंगे तहे बढ़िया से रहा है। सरकार के धन्यवाद देंगे कि कहा जहाँ हाले तहाँ तैयार कर देंगे।
5: हमको नाम है छठनी देवी, ये पहले माटी घर सरकार दिया ढड़ा घर, तब पंखा हो गया, बढ़िया से रहते हैं, इतनी सरकार धन्यवाद है।
1: गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भले ही शुरू नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दिवंगत मंत्री सुदीप कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा ने पीरटाड़ प्रखंड में शहीद बेदी पर माल्यार्पण कर राजनीति में अपने पैर बढ़ा दिए हैं। इधर भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहवादी, सुरेश साव, चुन्नू कांत, इंजीनियर विनय सिंह एवं विनोद सिन्हा ने टिकट की आस में क्षेत्र दौरा शुरू कर दिया है। इस बीच राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गिरिडीह में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से कहा है कि चुनाव SIR प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही कराई जाएगी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
0: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे तलत अज़ीज़ की आवाज़ में ये चंद गज़लें। इसी के साथ गीत गज़लों का कार्यक्रम स्वरांजलि अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। शीर्षक है पंचतंत्र एवं मानव, संकलन एवं वाचन प्रीति कुमारी का।
1: श्रोताओं नमस्ते, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत अपनी रेडियो दोस्त प्रीति के साथ। आज विज्ञान जगत में मैं आपको अपने शरीर से संबंधित होने वाली कुछ क्रियाओं के बारे में बताऊंगी। नहीं समझे आप, पाचन क्रिया के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारा शरीर एक रहस्य है और इस रहस्य को हमें जानना चाहिए कि कौन कौन सी आश्चर्यजनक क्रिया होती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना दोस्तों। यह क्रिया मुँह से शुरू होती है और कई स्टेप्स से गुजरती हुई उत्सर्जन तक पहुँचती है। तो चलिए आज बॉडी के छोटे से रहस्य को उजागर करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में कैसे होता है? पाचन क्रिया आहार नाल से होती हुई, आहार नाल का अगला भाग पाचन से संबंधित होता है। पिछले भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्षुद्रांत में भोजन का पाचन लगभग पूर्ण हो जाता है, अतः इसमें उपस्थित खाद्य पदार्थ अब इस रूप में आ जाते हैं कि वे आंत की अर्धपारगम्य म्यूकस झिल्ली से विस्तृत होकर रुधिर एवं लसिका कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है और इसका अंत बड़ी आंत में होता है। यह क्रिया एक बड़ी नाल के अंतर्गत होती है जो मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक फैली हुई रहती है। अब पहली प्रक्रिया होती है पाचन की, वो हमारे मुंह में होती है। तो वो कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। मुंह पाचन प्रणाली का मुख्य द्वार होता है। मुंह से ग्रसनी के आरंभ तक, यानी कि जहां हम भोजन करते हैं वहां हम मुंह में भोजन डालते हैं, उसे मुख गुहा कहते हैं। वहां पे हम भोजन जब डालते हैं तो हमारा दांत उसे चबाता है। चबाने के बाद उसमें लार को मिक्स करता है। खाना को उलट पुलट करके लार के द्वारा पाचन की क्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है और उसके बाद अंदर ढकेल दी जाती है। यानी कि मुँह खाने के बाद हमारा पेट में जब वो भोजन पहुँचता है तब वहाँ क्या होता है, तब हमारा भोजन पहुंचता है अमाशय यानी कि स्टोमेक में। स्टोमेक एक मांसल थैली के जैसा होता है जिसमें भोजन अस्थायी रूप से जमा होता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत तक चला जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होता है। अमाशय का आकार एवं आकृति इसके अंदर की वस्तुओं और इसकी भित्ति के पेशीय सक्रियता के अनुसार होती है। इसका आकार मशक के समान होता है। यह मांसल और प्रत्यास्थ होती है जिससे यह फैलकर बड़ी हो जाती है। अमाशय जो है भोजन को जमा करता है। अमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस बनाती है। यह एक अम्लीय रस होता है जिसमें 97% से लेकर 99% तक पानी और 4% से लेकर 5% तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होते हैं। अब यह भोजन कहाँ पहुँचता है धीरे धीरे करके, तो छोटी आंत में। अब छोटी आंत क्या होती है? छोटी आंत पाचन का एक मुख्य अंग होता है। छोटी आंत आमाशय के दाहिने ओर से अर्थात यानी कि पक्वाशयिका के द्वारा बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में विस्तृत होती है। क्षुद्रांत या छोटी आंत के प्रथम लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे अर्ध चंद्र के समान भाग को पक्वाशय की ग्रहणी कहते हैं। पित्त नली और अग्न्याशय नली दोनों वाटर की कलशिका पर खुलती है जो कि पायरोलस के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होती है। छोटी आंत का ऊपरी भाग जेजुनम और शेष भाग इलियम कहलाता है। अमाशय में आने वाले काइम तथा तरल भोज्य का क्षुद्र आंत में होता है और ग्रहणी का तरल क्षारीय होता है। भोजन क्षुद्र आंत्र में लगातार होने वाले पुरसरण गति के अतिरिक्त दो अन्य प्रकार की गतियां भी होती हैं जो प्रथम खंड की गति कहते हैं। गति के फलस्वरूप आंत में वलय पेशी का संकुचन आंत्र के शेष भाग तक पहुंच जाता है और पृथक हो जाता है और आंत्र के संपर्क में आता है। इसका उचित पाचन और पोषण यहीं पर होता है। और दूसरी गति को कहते हैं पेंडुलम और दोलन गति। इसके फलस्वरूप आंत के विद्यमान जो भी तरल होता है वो अच्छी तरह से मिल जाता है और ग्रहणी दो मुख्य पाचन रस में आकर के मिलती है जिसे पित्त और अग्न्याशय रस कहते हैं। अब भोजन पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत या कोलोन भी बोलते हैं इसे। बृहदान्त्र पाचन प्रणाली का अंतिम भाग होता है। यह क्षुद्रांत के नीचे वाले छोर से मलाशय तक विस्तृत होता है। क्षुद्रांत को चारों ओर से घेरे रहती है। यह उदर के दाहिने श्रेणी खोल से प्रारंभ होती है और बृहदान्त्र भोजन के पाचन तथा अवशोषण में भाग नहीं लेती है, लेकिन क्षुद्रांत को पार करते करते पोषक पदार्थों का अवशोषण पूर्ण हो चुका होता है। सीकम में केवल अवशिष्ट पदार्थ ही प्रविष्ट होती है जो तरल रूप में होती है। जैसे जैसे यह पदार्थ बड़ी आंत में अग्रसर होती है, इसका जल अंश अवशोषित होता रहता है और मलाशय में पहुंचने तक यह अर्ध ठोस हो जाता है। बृहदान्त्र में पेरिस्टेलिस की गति बहुत मंद होती है। बृहदान्त्र के कार्यों को संक्षिप्त हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जल और लवण के ग्लूकोज का अवशोषण होता है। भीतरी स्तर में स्थित जो ग्रंथियां होती है उसे म्यूसिन श्रावित होता है। सेल्यूलोज तथा अपचयित प्रोटीन को बैक्टीरिया की क्रिया के द्वारा उत्सर्जन योग्य बनाया जाता है और मल का विसर्जन होता है। लीवर का क्या काम होता है हमारे पाचन क्रिया में? तो जो लीवर होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह उदर गुहा के दाईं ओर सबसे ऊपर के भाग में डायफ्राम के नीचे होती है। इसका अधिकांश भाग पसलियों द्वारा सुरक्षित रहता है। यकृत के दो मुख्य खंड होते हैं अथवा लंबा और जो लोब होते हैं जो दायां और बायां खंड कहलाते हैं। यकृत का शरीर में मेटाबॉलिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी क्रिया विशेषतः भोजन पर होती है। इस प्रकार से यकृत शरीर का सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री है। शरीर का अधिकांश माध्यमिक मेटाबॉलिज्म इसी में होता है, अर्थात आंतों से अवशोषित तथा अन्य अंगों में एकत्रित किए गए भोजन को यकृत अन्य उत्तकों के प्रयोग के लिए उचित रूप प्रदान करता है और व्यर्थ उत्पादों को यह शरीर से बाहर निकालने की क्रिया में मदद करता है। मूत्र के उत्सर्जन के योग्य बनाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अधिकांश अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत में भोजन का पाचन लगभग पूर्ण हो जाता है, अतः इसकी उपस्थिति और खाद्य पदार्थ इस रूप में आ जाते हैं कि वे आंत के अर्धपारगम्य म्यूकस झिल्ली से विचरित होकर रुधिर और लसिका कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। खाद्य पदार्थों की विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। भोजन करने के 5 से 8 घंटे के उपरांत अधिकतर अर्धकवात्र क्षुद्रांत के बृहदान्त्र में जाते समय अवशोषित हो जाते हैं और केवल जल का अवशोषण रह जाता है, जिसका अवशोषण बृहदान्त्र में हो जाता है। क्षुद्रांत की विभिन्न रूप से अवशोषित होते हैं तथा अवशोषण

0: अवशोषण क्षमता भी विभिन्न होती है, जैसे कि छिद्रांत के ऊपरी भाग में शर्करा का अवशोषण और जल से अधिक तेजी से होता है और निचले भाग में जल का अवशोषण शर्करा की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। तो ये है ना पाचन की क्रिया जो हमारे शरीर में होती है, वो आप सोच सकते हैं कि कितना जटिल है। फिर भी हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिसको पचाने में हमारा शरीर बहुत ही कष्टदायी उस समय स्थिति होती है उसकी पचाने में। तो आप हो सके तो फास्ट फूड से दूर रहिए, क्योंकि उसे पचाने में जो हमारी पाचन क्रिया होती है, जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो है ना ये बहुत ही रहस्यमय बात जो हमारे शरीर के अंदर होती है। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं कि हमारे जो दांतों में वो कैविटी कैसे होती है? जब हम शर्करा प्रक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, तब क्या होता है, इनेमल मृदु हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बनाते हैं। प्लाक दांतों को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजनोपरांत दांतों को ब्रश करके से हम उसे प्लाक को हटा देते हैं। यदि अनुपचरित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर जाते हैं तथा जिससे हमें जलन व संक्रमण हो सकते हैं। तो समझे दोस्तों, अगर अपने दांतों को कैविटी से बचाना है तो सुबह और रात में खाने के बाद ब्रश करें और ब्रश करने की आदत डालें, तभी आप दांतों को कैविटी से बचा सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम यानी विज्ञान जगत अच्छा लगा होगा। अगले शनिवार को हम फिर कुछ रोचक तथ्यों और आवश्यक जानकारियों के साथ आपके बीच होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना शीर्षक पंचतंत्र एवं मानव पर और संकलन एवं वाचन था प्रीति कुमारी का। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। हमारा अगला प्रोग्राम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं अवतार फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है नरेंद्र चंचल, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगला गाना हमने लिया है रईस फिल्म से, आवाज़ें सुखविंदर सिंह, भूमि त्रिवेदी और करसन सागतिया की है। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है राम संपत ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं देवदास फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है कविता कृष्ण मूर्ति और श्रेया घोषाल ने। गीत के बोल नुसरत बद्र के हैं, संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने।

कविता सुब्रमण्यम और श्रेया घोषाल के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष।

इसी गीत के साथ विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने

0: के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
4: स्वाभाविक है, लोकतंत्र होना भी चाहिए,
3: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
5: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
6: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे, और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
5: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
7: मेरा नाम मुकेश भाई नाइका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
5: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
8: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
1: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमेरिकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोग मारे गए। और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: राजधानी में सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था। दिल्ली पुलिस के अफसरों और अहलकारों के साथ साथ नीम फौजी अमले के अहलकारों को भी तैनात किया गया ताकि अमन कानून की किसी भी तरह की खिलाफवर्जी को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में अमन कानून की मौजूदा सूरतहाल और इम्तनाई अहकाम का हवाला देते हुए मुजाहरे की इजाजत नहीं दी थी। अमन कानून शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस अवाम के साथ सरगर्म राबता कायम किए हुए है और उनसे जोर देकर कहा है कि वो किसी तरह के गैर कानूनी एहतजाज में शामिल न हों। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के एहतजाज में लोगों का शामिल होना भी गैर कानूनी होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अमन कानून बरकरार रखने की खातिर मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और पड़ोसी रियासतों की पुलिस फोर्सेज समेत सभी एजेंसियों के साथ तालमेल कायम किए हुए है। जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि मजमूई एतबार से हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर हरमीत सिंह कालका ने गुरुद्वारा बंगला साहिब के अहाते में मुजाहिरीन के दाखिल होने के बाद वहां पुलिस को दाखिल होने की इजाजत देने के मामले पर आम आदमी पार्टी के कुछ रहनुमाओं की जानिब से सियासत करने की मजम्मत की है। जनाब कालका ने कहा कि ये मुजाहिरीन तख्तियों के साथ गुरुद्वारे के हॉल में जबरन दाखिल हो गए थे और उन्होंने वहां नारेबाजी की। जनाब कालका ने कहा कि गुरुद्वारे के अहाते में किसी भी तरह के एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सूरत हाल को देखते हुए गुरुद्वारा कमेटी ने इन मुजाहिरीन को वहां से बाहर निकालने के लिए पुलिस को तलब किया था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने मुत्तला किया है कि कल रात 9 बजे से जिन 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था, सिक्योरिटी वजूहात के सबब वो आज रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। DMRC ने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से सूरतहाल का दोबारा मजीद जायजा लिया जाएगा और उसी के मुताबिक जरूरी मालूमात फराहम की जाएंगी। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्ट को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह दावा किया गया था कि हुक्काम ने एहतजाज को रोकने के लिए दिल्ली में दानिस्ता तौर पर कूड़ा कचरा फैला दिया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के हकायक का पता लगाने वाले यूनिट ने यह वजाहत की है कि यह दावा फर्जी है। उसने कहा है कि यह वीडियो हरियाणा में पानीपत का अगस्त महीने का वीडियो है। उस वक्त सफाई कारकुन अपनी मुलाजमत की मांगों के सिलसिले में हड़ताल पर थे। बीजेपी ने कहा है कि हालिया जिमनी चुनाव में उसकी कामयाबी से यह साबित हो गया है कि जमहूरियत ने उन अनासिर की कोशिशों को नाकाम बना दिया है जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी पुरअमन एहतजाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां इंतखाबात में अपनी शिकस्त की तलाफी के लिए सड़कों पर एहतजाज का सहारा ले रही हैं। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर यह इल्जाम भी लगाया कि उन्होंने अपने एहतजाज से गुज़िश्ता 3-4 दिन से दिल्ली के लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रखी हैं। जनाब रविशंकर प्रसाद ने मजीद कहा कि मुल्क जमहूरियत और उन अरकान की जवाबदेही के जरिए चलाया जाएगा जो पार्लियामेंट के लिए हुए हैं। उन्होंने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर आईनी इदारों की छवि खराब करने नाम करने का इल्जाम भी लगाया।
1: अराजकता को प्रोत्साहित करने की कोशिश को भारत के लोकतंत्र ने ध्वस्त किया है। एक और संदेश गया है कि देश संसद से चलेगा, सड़क से नहीं। कल रिजल्ट आए, आसाम में भाजपा जीती, नंदीग्राम में जीती और एक क्षेत्र तो 70% अल्पसंख्यक मतदाता प्रभावित है, वहां भी बीजेपी 70,000 प्लस से जीती। पांडिचेरी में NDA जीता।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने दयालपुर इलाके में शुमाल मशरकी दिल्ली में 2020 के फसादात से वाबस्ता एक केस में आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन को फसाद को शह देने का कसूरवार ठहराया है। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने IPC के मुतल्लिका दफात के तहत ताहिर हुसैन को कसूरवार करार दिया है। अदालत ने हुसैन के खिलाफ सजा की नौइयत के बारे में दलाइल की समाअत के लिए 16 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। इससे कबल जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने शुमाल मशरकी दिल्ली में 2020 के फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा की हलाकत से वाबस्ता केस में ताहिर हुसैन और 4 दीगर अफराद को कसूर

रूस की फौजी कार्रवाई शुरू होने के बाद से रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई को 4.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से रोजाना 99% जरूरी कैश रिजर्व रेशो बरकरार रखने की जरूरत होगी, जो इस वक्त 90% है। बैंकिंग निजाम में मौजूदा नकद रकम की दस्तियाबी की सूरत हाल के जायजे के बाद यह फैसला किया गया है और इससे बैंकिंग निजाम में नकद रकम की दस्तियाबी में कमी में मदद मिलेगी, जो 8 अक्टूबर को तकरीबन 3,88,000 करोड़ रुपए फाजिल थी। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक्वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल की असलाहत नेज भारत और अफ्रीका के लिए और ज्यादा नुमाइंदगी पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने फलाई दुबई के हवाई जहाज में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की तहकीकात के लिए केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज के मकाम पर जाने की कोशिश करने वाले कई अफराद को हिरासत में लिया। बीजेपी ने कहा है कि जिमनी चुनाव में उसकी कामयाबी से जमहूरियत में एतमाद को तकवीत मिली है। पार्टी ने अपोजिशन पर एहतजाज के जरिए आवाम की जिंदगी में खलल डालने का इल्जाम लगाया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनो, अरे सुनो सुनो मेरे भाई और बहनों, अरे मदन भाई सज्जन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ डोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझे भी सुनो पापे।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात ही कुछ ऐसी है जिसका हम ढोल डुग्गी नगाड़ा पीट पीट कर ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में अमरकांत के साथ आप सुनेंगे जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रेखा के फनकारी के किस्से कारनामे।
2: अरे वाह, क्या कटु थे मेरी, जरा बताओ तो।

0: रेखा, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी का चर्चा सारी दुनिया करती है। रेखा को अभिनय प्रतिभा विरासत में मिली। 1966 में एक दक्षिण भारतीय फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया और हिंदी फिल्मों में भी उन्हें बहुत ही कम उम्र में ब्रेक मिल गया। जी हाँ, 1970 में बनी फिल्म थी सावन भादो।
1: हाय हाय,

0: काटी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: इस फिल्म के संगीत ने जहां एक तरफ बहुत धूम मचाई वहीं रेखा को भी चर्चा के घेरे में ला खड़ा किया। चर्चा उनकी बेबाक अदाकारी की हुई और दूसरी तरफ फिल्मी पंडितों ने रेखा को देखकर यहां तक कह डाला ये क्या चलेगी। लेकिन दोस्तों रेखा ने आने वाले वक्त में अपनी मेहनत और लगन से अपने आलोचकों को ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्हें भी कहना पड़ा।

शर्मा जाएं। रेखा की बेहतरीन अदाकारी तो आप कई फिल्मों में देख ही चुके हैं, उनकी अदाकारी का एक और अलग रंग हमारे सामने आया जब हमने देखी उमराव जान।

0: हाँ, मस्तानों और अफसानों से घिरी रेखा हमेशा मीडिया के लिए एक हॉट केक की तरह ही रही। विषय चाहे उनका फिजिकल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक्टिंग हो या किस्सा किसी रोमांस का, मीडिया ने हमेशा उन्हें अपनी पत्रिकाओं के फ्रंट पेज पर ही रखा।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

यूं तो रेखा ने तकरीबन सभी नायकों के साथ काम किया है, लेकिन रेखा की फिल्मी जोड़ियां रहीं जितेंद्र, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना और शशि कपूर जैसे कलाकारों के साथ। पर उनकी जो सबसे सफल जोड़ी बनी वो थी अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा कई सफल फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, दो अनजाने, मिस्टर नटवरलाल सिलसिला, सुहाग, राम बलराम और खून पसीना।

रेखा की फिल्में तो हिट रही ही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के गाने भी एक से बढ़कर एक रहे हैं। और ऐसी शानदार अदाकारा के विषय में बातें करने के लिए ये समय हमें बहुत कम सा लगता है।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। डीजी पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं जानी दुश्मन। इस फिल्म के गीत से आवाज़ लता मंगेशकर की है, बर्मा मल्लिक के गीत हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्ताना फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं कर्तव्य। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में काफिल अजहर की बोल है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मैं तुलसी तेरे आंगन की। आइए इस फिल्म का ये गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत की बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं श्रीहरि के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज़ें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की है। फिल्म का नाम है सिलसिला।

किशोर कुमार लता मंगेशकर और साथियों के गए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है एक ही फिल्म, आज हम सुनेंगे एक रंग कार्यक्रम में। तो लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग, और इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ही फिल्म के कुछ गीतों को। फिल्म का नाम हम आपको बता दें दोस्तों, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। लेकिन इससे पहले स्वीकार कीजिए परिणीता का नमस्कार। दोस्तों इस फिल्म के जो प्रसाद प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म है ये, और गीतकार इसमें आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, और आवाज़ें की बात करें तो गायक और गायिका का नाम तो हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनूप जलोटा ने इसे गाया है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं इस गीत के साथ।

0: सकती।
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं थे एक ही फिल्म एक दूजे के लिए से कुछ गीतों को। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस